फाज लगे है तो करज मामा खटक होई बेकरी फाज लगे है तो करज मामा खटक होई बेकरी नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी सही कथई कथई सही सही झाक झिनक दिन झाक सिनक दिन झाक सिनक दिन झाक सिनक दिन झाक आँख मिल जाई है सजनिया से।

0: है सगनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बज है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी, झांझ बज है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो करी।
1: नैना जब बनी है तो भैया मन में कसक आई गई।

0: के देखे काटो न मार के मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डाल के
1: मन ले गई रे धोबनिया।

0: कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

0: 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अब हमने खुद को पहचान लिया, उस परमात्मा से भी जान पहचान हो गई, एक रिश्ता कायम हो गया, परम धाम के दर्शन भी कराए, उसके साथ रोज की बातचीत है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं और उन्हीं सवालों को एक बार फिर तलाशते हैं इसी कार्यक्रम में। और हर बार की तरह हमारे साथ इस सफर की हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी। बात वही आ जाती है कि जब मैं वहां इतनी खुश थी या वो परम धाम मेरा है तो मैं नीचे क्यों आई, क्यों मैं वही नहीं रह सकती थी।
2: जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर उस पौधे में क्या फल लगेगा, क्या फूल लगेगा, सारी नॉलेज है एक जड़ सीड के अंदर। लेकिन जब तक वो सीड बोया नहीं जाता है, उसमें से वो वृक्ष नहीं निकलता, फल फूल पत्ते इतना खूबसूरत जो सारा बन जाता है, हाँ, वो उसमें से निकलता है लेकिन उसको बोने के बाद। इसी तरह मैं आत्मा, मेरे अंदर ये सारा कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, लेकिन जब तक मैं कॉस्ट्यूम नहीं लेती हूँ तब तक मैं वो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। हम हरेक आत्मा के अंदर, एवरी सोल हैज थ्री थिंग्स इन कॉमन। वन इज अवेयरनेस, यू नो, लाइक व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टाइम, जागृता, अवेयरनेस ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। एंड वंस आई हैव दैट अवेयरनेस देन देर इज रिलेशनशिप्स। और संबंधों में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये सारा दिन हमारा चल रहा है, लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है क्रिएटिविटी। एवरी सोल इज वेरी क्रिएटिव। वाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स। ये हमारी रचना है, हम अपने संकल्पों को रचते हैं। तो ये तीनों चीजें, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट हमें भी बहुत सारे यूथ ईमेल लिखते हैं कि आई डोंट नो माई पर्पज ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन का कोई, यू नो, एंड दे एक्चुअली आस्क कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। सो वी आर लीडिंग अ लाइफ वेयर वी आर फाइंडिंग द नीड टू आस्क समवन एल्स that you know what is the purpose of my life,
1: because even I don't understand. मेरे पास भी सवाल है कि मेरा लक्ष्य क्या करने आई हूँ मैं।
2: You know, goals अलग है कि हम अपने जीवन के goals बना सकते हैं, short term, long term,

0: साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, दोज आर गोल्स ऑफ लाइफ, या उनको हम कह सकते हैं एम्बिशन इन लाइफ कि मुझे क्या करना है मटीरियलिस्टिकली, प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पर. लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ, इट्स टू लिव लाइफ. पर्पज ऑफ लाइफ इज नथिंग बट टू कम डाउन हियर एंड टू लिव दिस लाइफ. बट हाउ टू लिव दिस लाइफ? विद दैट अवेयरनेस. And if you really want to find that purpose, purposeless क्यों लगने लगती है जीवन जब हम उन तीन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, awareness, relationships और creativity. हम जो करना चाहते हैं हम जीवन में वही करें जो बनना चाहते हैं, लेकिन वो purposeful तब लगने लगेगा when we are doing all that with awareness. So who am I? So I'll experience all those values while I'm doing it. दूसरा creativity. तो सारा जो मेरे अंदर पोटेंशियल है आई कैन एक्सप्रेस दैट एंड देन आई कैन एक्सपीरियंस दैट टू माई हाइएस्ट पोटेंशियल. हर एक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अब हम उसको कितना यूज करते हैं. एंड तीसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि व्हाइल आई एम ऑन दिस जर्नी आई शुड हैव दैट एक्सचेंज ऑफ प्योर लव विद एवरी सोल दैट आई कम इन कॉन्टेक्ट. अगर मैं ये तीन चीजों पर ध्यान दूं तो मेरी लाइफ बहुत पर्पजफुल हो जाएगी. तो मुझे आत्मा के अंदर ये जो एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है वो हम ऊपर बैठकर नहीं कर सकते हैं.
1: That's why we need to come.
0: It's dormant, no? वो सुषुप्त अवस्था है. लेकिन to express myself, I need to come down. मुझे एक costume चाहिए और मुझे एक stage चाहिए. And वो मुझे इस सृष्टि पर मिलता है, इस स्थूल वतन में आके मिलता है. सबसे पहले मैं आत्मा शरीर लेती हूँ और फिर मुझे ये रंगमंच मिलता है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके साथ इंटरैक्ट करके फिर मैं अपना वो फुल पोटेंशियल, आई कैन एक्सप्रेस, आई कैन मूव, आई कैन वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग,
1: आई कैन गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस.
0: एब्सोल्युटली. नाउ इट्स ईच वन टू देयर ओन. लेकिन वो ही अपना बेस्ट पोटेंशियल लाने के लिए बाहर, आई नीड टू नो द पोटेंशियल. यू नो, हमें बाहर का सब ज्ञान है लेकिन मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है वो ही नहीं पता, तो फिर उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे?
1: लेकिन वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी एक्टर अगर मिले, बिकॉज मेरा थिएटर बैकग्राउंड अगर है तो थिएटर में जब भी हम स्टेज पे होते हैं हर एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, देना चाहता है,
0: देना चाहता है,
1: देता है या नहीं दैट्स सेकेंडरी, देना चाहता है. कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा आज की दुनिया में जो ये कहे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा.
0: ऑर्डिनरी,
1: आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट.
0: राइट.
1: तो मैं जब ये कैरेक्टर मुझे, मैं इस अवेयरनेस के साथ आई हूँ यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो फिर मैं गलतियां कैसे करती हूँ?
0: मैं गलतियां करना नहीं चाहती हूँ. यू नो दैट इज फॉर श्योर कि जो हम अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ईच वन वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट. सही और गलत इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए ये कई बार क्वेश्चन बीच में आकर रुक जाता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही या गलत.
1: कौन तय करेगा?
0: कौन तय करेगा? That's a big question, right? Who will now decide for me what is right and what is wrong? आज फिजिकल रूप से अगर देखें तो लॉज बने हुए हैं एंड पूरा डिपार्टमेंट्स है, सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है, पुलिस फोर्स है. फॉर वॉट? फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. व्हाई आर वी नीडिंग सो मेनी पीपल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि वी आर सेल्फ आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट. तो कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर वो मेंटेन करता है, कोई और चाहिए जो हमारे ऊपर रूल इम्पोज कर रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. और वो तब होता है जब मनुष्य आत्मा खुद ये शायद भूल चुकी है या उस पे चलने की उसके अंदर शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमारे ऊपर वो रूल इम्पोज किया जाता है. शायद जब ये सृष्टि पर आत्मा सबसे पहले आई होगी, व्हेन इट वाज प्योर, इट हैड द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड इट ऑलवेज परफॉर्म्ड राइट. एंड दैट्स व्हाई देयर मस्ट हैव बीन नोबडी देयर टू इम्पोज द रूल के व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. बट टुडे वी नीड अदर पीपल to impose rules on us. So I think each one of us knows what is right and wrong. जब हम कुछ गलत कर भी रहे होते हैं शायद अंदर कोई एक इनर वॉइस जिसको कहते हैं.
1: यहाँ पर अब एक और बात जो कहीं बहुत ज्यादा कही जाती है कि what is right for you may not be right for me.
0: Right.
1: You know, like एक आज का एक बहुत relative term है सही और गलत.
0: Right.
1: कि आपके लिए जो सही है हो सकता है वो मेरे लिए गलत हो या मेरे लिए सही ना हो. लेकिन क्या ये संभव है? जो सही है वो सही ही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा.
0: आई थिंक सो, यस. बिकॉज बट अगेन यू नो वी कैन नॉट इम्पोज दिस ऑन एनीबडी एल्स. बट ये हमें अपने आप से पूछना होगा. लेकिन आई थिंक कि जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से एक थॉट या जिसको एक इनर वॉइस कहे वो हमें बताने के लिए है कि क्या सही

0: ये है क्या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दबा देते हैं, झूठ बोलने लगे हैं किसी बात से बचने के लिए। तो ऐसे थोड़ी है कि अंदर नहीं पता है, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, बट उस टाइम ऐसे लगता है झूठ बोल दो जल्दी से काम हो जाएगा, सच बोलेंगे अभी तो डांट पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, इतने सारे आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे। तो हम समझ कर भी गलत वाला कर्म चूज करते हैं, बट इट्स नॉट दैट वी डिडंट नो, नाउ नोबडी नीड्स टू टेल मी राइट देन कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई नो इट। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट अंदर फिर बैठना शुरू हो जाता है। अब हमारे ऊपर है कि क्या हम उस आवाज को सुनकर अपने को परिवर्तन की तरफ लेकर चलते हैं, या कहीं हम उसको दबा देते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बार बार उस आवाज को दबा दिया, तो फिर वो आवाज भी शायद जो कहते हैं ना, स्किल हिज कॉन्शियस,
1: वो जो हम संस्कार की बात कर रहे थे कि एक हैबिट बन जाती
0: बुद्धि, हाँ, तो
1: वो बुद्धि को बीच में आने नहीं देते,
0: एब्सोल्युटली वो आने नहीं देते। लेकिन सही या गलत हम सबको पता है, एंड उसी का तो ये सारा खेल है। एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग द होल डे इट्स एक्शन, वी परफॉर्मिंग सो मेनी एक्शंस, देन वी आर रिएक्टिंग टू सो मेनी एक्शंस। One is I perform my actions, second is you perform some action, I react to your action, and third is we come into interaction. ये सारा दिन चल रहा है, एंड इसी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। एंड इसी, अब ये एक्शन और रिएक्शन किस नियम अनुसार चल रहा है, हाउ इज इट गवर्न्ड, कि वॉट आई एम एक्टिंग और वॉट आई एम प्रोजेक्टिंग आउटसाइड और वॉट आई एम एक्सप्रेसिंग, वॉट रिटर्न विल आई गेट टू इट, ये शायद हमें नहीं पता है। और इसलिए फिर बहुत सारे सही और गलत और ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो वी डोंट नो द लॉज और वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज, और मे बी वी अवेयर बट वी डोंट कीप इट इन आवर कॉन्शियसनेस।
1: यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब हमने बात ये की कि हमें इस सृष्टि पे हमें उतरना जरूरी था, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि हम स्टिल नहीं रह सकते, बहुत क्लियर ये बात होती है, तो परफॉर्म करने अवेयरनेस के साथ हम परफॉर्म करने अपनी क्रिएटिविटी के लिए हम यहाँ आए। लेकिन जो ये पूरी सृष्टि है उसके कुछ लॉ ऑफ नेचर की बात जो होती है, हु हैज क्रिएटेड दिस होल नेचर ऑल्सो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव।
0: थ्री थिंग्स आर इटर्नल, सोल, गॉड एंड दिस ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, दीज आर इटर्नल हियर। Nobody creates these three things. These three things are eternal, and that's why they are not created. They are not destroyed. नहीं तो अगर इनको कोई create कर सकता है फिर से, तो ये destroy भी हो सकती है। तो ये तीन चीजें eternal हैं, लेकिन ये तीन चीजें work कैसे करती हैं? And हम सब souls जब एक दूसरे के साथ कर्म में आते हैं, तब कौन से rules apply करते हैं? जैसे आपने कहा law of nature तो है, and then one is the spiritual laws. All our actions and reactions and interactions, they are working according to certain laws. And if we know the law, तो फिर law के अनुसार अगर हम चलेंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगी।
1: तो हमें वो law कौन बताएगा?
0: That is, इसको जैसे हम सब लोग इसको जानते भी हैं, this is what is called the law of karma, karmic philosophy, कि कर्म के जो नियम है वो बहुत क्लियर है, ये हमें सब पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है कि ये कर्म मेरी वजह से हुआ है। हम अपने कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं, और कुछ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं,
1: क्योंकि अगेन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। मे बी वी हम उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देखना नहीं चाहते, या हम देखना नहीं चाहते कि हम क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन अगेन अगर हम देखें सचा शिवानी, तो बहुत सा कन्फ्यूजन भी है, बहुत सी धारणाएं हमें डाली गई हैं बचपन से, ये सही ये गलत, ये है लॉ, ये कह रहा है लॉ, या कार्मिक लॉ ये है, कार्मिक डेथ्स ये है, कार्मिक थ्योरी ये है, जो कभी भी क्लैरिटी के साथ अभी तक नहीं आ रही थी। तो एक उम्मीद कि कहीं एक क्लैरिटी दिखेगी।
0: फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कि हर कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना।
1: यहाँ एक सवाल जो बहुत सारे हम सबके साथ आता है जिंदगी में, कि आपने कहा कि अपने कर्म की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने तो जिंदगी में अच्छा ही किया है, मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया। नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गलत किया नहीं कभी किसी के साथ, और किया होगा तो अनजाने में किया होगा, मैं जानती ही नहीं, तब मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई हैव नेवर बीन बैड, इट्स नॉट मी हू सेइंग इट।

0: And I have
1: most
0: also
1: of
0: said
1: us.
0: It.
1: Yeah.
0: I've also said it. I also say it. कि मैंने जानते बूझते कभी गलत नहीं किया हुआ हो और ये कहा जाता है कि अगर आपने जानबूझ के गलती नहीं की तो वो मानी नहीं जाती है. ये भी एक बिलीफ लेके हम चलते हैं.
1: इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इंडिया में आप ड्राइव करते हैं तो कौन सी साइड पे ड्राइव करते हैं?
0: राइट साइड.
1: राइट साइड पे. अब आप यूएस जाएंगे तो वहां पे ड्राइव करेंगे
0: लेफ्ट.
1: लेफ्ट. वहां जाकर अगर आप राइट पे ड्राइव करें तो वो क्या आपको फाइन नहीं करेंगे? आप कहेंगे बट आई एम सॉरी आई डिडंट नो दैट दिस इज द लॉ. We're sorry, but you're still going to be fined for it. You know, so ignorance of law is not taken as an excuse. कि आपको पता ही नहीं है कि ये नियम है.
0: वो माफी वाला नियम नहीं चलता है.
1: नहीं, हमें अपनी सब गलतियों के अकाउंट सेटल तो करने ही पड़ेंगे. You will still be fined for it. तो हम ये कहें कि मुझे पता ही नहीं था कि ये नियम है एंड इस तरह से इट वर्क्स तो मुझे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए. That will not happen. गलती गलती है. लॉ को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी पनिशमेंट तो हमें मिलनी ही मिलनी.
0: कहा जाता है कि माफी मांग ली जाए या इफ वी से सॉरी. सी आई जस्ट वांट
1: टू
0: निगेट ऑल दोस थिंग्स. यू नो मैं जानना चाहती हूँ.
1: नो नो इट्स ट्रू. सी इट्स अ लॉ. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है कि जो चीज है वो नीचे की तरफ ही आने वाली है. अब एक बच्चा सुपरमैन की मूवी देखता है और जाकर टेरेस पे जाकर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. ही इज ट्राइंग टू ब्रेक अ लॉ. राइट. तो शायद वो एक सेकंड के लिए ऊपर की तरफ जा भी जाए लेकिन उसके बाद ही कैन नॉट ब्रेक अ लॉ. तो जहां भी हम लॉ तोड़ने की कोशिश करेंगे पहली बात तो लॉ तोड़ नहीं सकते हम. वी ट्राई टू ब्रेक अ लॉ वी विल एक्सपीरियंस पेन बिकॉज वी गेट पनिश्ड फॉर इट. सो इट्स नॉट रियली पनिशमेंट कि हमें कोई और पनिश करता है लेकिन जहां भी हम लॉ ब्रेक करेंगे हमें दर्द होता है. इसी तरह ये भी लॉज बने हुए हैं. ये तो साइंटिफिक लॉज है या नेचुरल लॉज है. स्पिरिचुअल लॉज कि जो हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलना ही है. इसके अगेंस्ट अगर हम जाने की कोशिश करें तो भी हमें दर्द होगा ही. वी ट्राई टू ब्रेक द लॉ कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा इवन इफ आई डू रॉन्ग टू पीपल. इट विल नॉट हैपन एंड एवरीथिंग इज वेरी एक्यूरेट. जैसे चल रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. जब हमें वो समझ में आने लग जाता है कि हाउ द लॉ वर्क्स. सी द लॉ ऑफ ग्रेविटी. Once we came to know how it works, we could use it to do so many things.
0: कितना कुछ build on it, you know.
1: कितना कुछ सिर्फ वो एक लॉ पता लगने से. लॉ पहले भी एग्जिस्टिंग था लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी उस लॉ की तो हमने उसको यूज नहीं कर
0: और हमें कितना पनिश किया खुद को भी. कितने सारे हमारे साथ एक्सीडेंट्स हुए. कितना कुछ हुआ.
1: एब्सोल्युटली. अब इसी तरह ये कार्मिक लॉ है. इसकी जब अवेयरनेस होगी और हम इसको हर कर्म करते समय ध्यान में रखकर चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू वंडर्स. एंड अगर इसको हम भूल जाते हैं जैसे आपने कहा हमें तो पता ही नहीं था तो पनिशमेंट फिर भी मिलेगी. वो तो मिलनी है. वी कैन नॉट एस्केप दैट. सो वी विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी first of every action. And jaise humne kaha life is responses, lot of responses. Ab hum kaisa response dete hain kisi situation ko ya kisi vyakti ko, that means energy that I am giving out. The law says as you sow so shall you reap. Aap jaisa karma ka beej boenge wohi aapko return mein milne wala hai. To jo response hum denge तो वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी हैव गिवन आउट द सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी आई विल गेट बैक. ये लॉ है. इसको हम तोड़ नहीं सकते. अब इसको हम समझ के चलना शुरू कर सकते हैं. अगर हम इसको समझ कर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखो सारी चीजें चेंज होने लगेंगी. हमारे कर्मों के ऊपर जो हमारा अटेंशन है वो आने लगेगा. आई अंडरस्टैंड द एनर्जी व्हिच आई गिव आउट. एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स words, actions, anything. कई बार जैसे हम आपने कहा ना हमने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया. क्या हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा?
0: सोचा
1: सोचा लेकिन हमने सोचा ये नहीं काउंट होगा.
0: हमने सोचा कि शब्द या कर्म ही काउंट होगा. थॉट भी कर्म है. एक्चुअली
1: थॉट भी तो एक एनर्जी है. सी इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लॉ. तो इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कि आप जो एनर्जी बाहर देंगे वही एनर्जी आपके पास वापस आने वाली है. तो वो जरूरी नहीं है शब्दों द्वारा हो या कर्म द्वारा हो. कर्म स्टार्ट्स हियर. माई क्रिएटिंग अ थॉट इज ऑल्सो अ कर्म एंड देन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन.

0: लेकिन अगर मैं यहाँ बैठकर सोच रही हूँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल खराब है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाले हैं, ये है, दिस इज नॉट एनर्जी. एंड आई मे बी टॉकिंग वेरी नाइसली टू यू बट हाउ मच नेगेटिव एनर्जी, और ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ भेजे कहाँ जाएगी? आपको हिट करेगी, आपके अंदर वो सारी थॉट्स पहले क्रिएट करेगी और फिर वो उतनी ही इंटेंसिटी से वापस आएगी. अब जब वो वापस आती है मेरे पास तो मुझे लगता है ये सारा मेरे पास कहाँ से आ रहा है. यू नो यू हैव पीपल थ्रोइंग ऑल देयर नेगेटिव एनर्जी एट यू एंड यू वंडर व्हाट हैव आई डन टू दिस पीपल. यू नो ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? यू नो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. That's when the awareness of the law helps. That jo aapke paas wapas aa raha hai, it's only a reflection of what you have sent out. To sabse pehle karam ki responsibility le le ki ye meri zimmewari hai. Jo bhi main kar rahi hu is time wo meri zimmewari hai aur jo mere sath ho raha hai wo bhi meri zimmewari hai. Things will become very simplified. Aur sabse simple cheez jo ho jayegi, questions khatam ho jayenge. ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, क्या, कैसे, कब? एवरीथिंग विल फिनिश बिकॉज द सारी जो टेंशन है ना, दीज आर दिस क्वेश्चंस. व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? व्हाट हैव आई डन? यू नो किसी के साथ कुछ हो जाता है, कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. तो ये क्वेश्चंस सारे समझ खत्म हो जाते हैं एंड उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स. यू नो कैसे ये सारा सिनारियो क्रिएट हुआ, कैसे आज मैं जिस स्थिति में हूं या जिस परिस्थिति में हूं, ये मेरी जिम्मेवारी किस तरह से बनती है, ये हमें सोल कॉन्शियसनेस से समझ में आता है. कि आत्मा मीन्स माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, MIS. यू नो जैसे IT में हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. तो दिस इज अ वेरी नाइस MIS दैट वी हैव हियर, बट वी नीड टू रिमेम्बर दैट सिस्टम एवरी टाइम. तो वी सॉ दैट आई क्रिएट अ थॉट, थॉट पे डिसीशन लेते हैं इंटेलेक्ट एंड वो एक्शन में आता है. जैसे ही एक्शन में आया दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द संस्कार. अब जो संस्कार पे इम्प्रेशन क्रिएट हुआ उससे ही नेक्स्ट थॉट क्रिएट करते हैं, फिर वो एक्शन में आता है. सो इट इज कंटिन्यूसली अ साइकिल. तो हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास्ट संस्कार रिकॉर्डेड है उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उस संस्कार के आधार पे अगला संकल्प क्रिएट हो रहा है, फिर वो बाहर एक्शन में आ रहा है. तो एट एवरी स्टेप आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट आई हैव स्टोर्ड इनसाइड एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सेट ऑफ थॉट, डिसीशन एंड संस्कार. इट बिकम्स अ कंटिन्यूस साइकिल.
1: इन क्वाइट अ लॉट एक्चुअली. कितने संस्कार हम स्टोर कर सकते हैं या हम निकालते
0: हैं? हर क्षण चल रहा है ना, ये हर क्षण चल रहा है. तो यू इमेजिन कि ये जो स्टोर हाउस है कितना डीप होगा और क्या क्या नहीं इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ. अब अगर हमें समझ में आ जाए कि हर क्षण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो जो पास्ट स्टोर किया हुआ है उसके आधार से मेरा प्रेजेंट बन रहा है, और जो मैं अभी प्रेजेंट बना रही हूँ उसके आधार से मेरा फ्यूचर बनने वाला है. सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो किसके हाथ में है?
1: मेरे अपने हाथ में.
0: सो डेस्टिनी
1: इज इन माई हैंड.
0: डेस्टिनी इज इन माई हैंड्स. एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. सो एवरी एक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ माई थॉट, डिसीशन, एक्शन. दिस इज कम, इट्स माई थिंग, इट्स माई पास्ट. पास्ट इम्प्रेशन से वो आज एक्शन में आया एंड एवरी रिजल्ट दैट इज हैपनिंग इज अ फ्रूट ऑफ दैट एक्शन.
1: एक्चुअली येस, यू नो अभी जो हुआ है मेरे साथ होता ये है कि मैं वो रिजेंटमेंट लेके बैठी रहती हूँ. कुछ भी हुआ हो,
0: राइट,
1: आई हैव दिस रिजेंटमेंट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
0: राइट.
1: और उसी से आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है,
0: राइट,
1: दिस रिजेंटमेंट, दिस एंगर, मे बी नॉट ऑन अ पर्सन बट मे बी यू नो
0: इट कैन बी फॉर एनीथिंग. जैसे आपने एंगर कहा, राइट, लेट्स से मैंने एक थॉट क्रिएट किया गुस्से का किस आपके प्रति. लेट्स से एक थॉट क्रिएट किया गुस्से का, जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया वो डिसीशन और वो वर्ड या एक्शन में आ जाएगा. एक्शन में आने के बाद वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा, संस्कार बनेगा. संस्कार में क्या स्टोर हुआ? द इमोशन दैट आई फील राइट नाउ एंड जो मैंने एक्सप्रेस किया था ना एंगर अभी आपको, उसका पूरा इम्प्रेशन एक ये अंदर बन जाएगा. तो द संस्कार ऑफ एंगर

0: Order has just got stored inside this storehouse. Mm. Up next time, when I meet you again.
1: Mm. Or your situation same.
0: Yeah. Situation ya vyakti. Jab wo same aate hain, to aap jaise mujhe dikhoge, aap trigger karoge us cheez ko. Aap karan nahi bante ho. Jo hum log kehte hain na, unki wajah se mujhe gussa aaya. Nahi. Wo trigger zarur bante hain ki aap agar nahi aao mere samne, to wo sanskar
1: daba
0: hai, wo daba rahega. Lekin jaise aapko dekha maine. तो जैसे ही आपको देखा, आपसे मिले, तो वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्डेड हुआ था, वो ट्रिगर हो जाएगा. अब वो थॉट में भी अगर क्रिएट हुआ कि आई थिंक एंग्रीली अबाउट यू, दैट थिंकिंग
1: विल रिजर्व
0: रीचेज आउट दैट एनर्जी अगेन कम्स बैक अगेन अनदर इम्प्रेशन. तो जो पहले वाला इम्प्रेशन था वो फिर से और रीइन्फोर्स हो गया. राइट. तो माई संस्कार आफ्टर मीटिंग यू इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. अब मैं इस बार आपको मिली, आज पहली बार शायद वो संस्कार बना, लेकिन वो इमेज में अपने अंदर कैरी कर रही हूं. नेक्स्ट टाइम आप मिले, आप फिर से ट्रिगर किया. अब लेट्स से चेंज द कॉस्ट्यूम. आई लीव दिस बॉडी, यू लीव द बॉडी, एंड वी टेक टू डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स एंड देन वी मीट अगेन. ठीक है. मे बी इन टू डिफरेंट roles altogether, two different costumes altogether, but वो संस्कार तो यहाँ पे merged है ना. वो impression तो बना ही हुआ है कि इस soul के प्रति मेरा क्या impression है. एक negative image है जो मेरी बनी हुई है. अब जैसे ही आप मेरे सामने फिर से आएंगे,
1: मैं पहचान लूंगी.
0: हाँ, आप पहचानते नहीं है कि ये वही वाली soul है, लेकिन वो energy exchange किस level का है कि वो soul जैसे ही मेरे सामने आती है वो वापस वही वाला trigger कर देगी. तो वापस आपको देखते ही, देखते मतलब आत्मा level पर, जैसे ही आप आत्मा मेरे सामने फिर आते हैं एक अलग नाम रूप में सारा कुछ, आप मेरे अंदर वो ही गुस्से वाला संस्कार ट्रिगर करते हैं. और तब हम कहते हैं पता नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इनसे मिलकर हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ,
1: इस जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली. अगर देखा
0: वी नॉट फाइंडिंग द रीजन, देन वी से पता नहीं यही ऐसे. एंड आई कन्वीनियंटली पुट द ब्लेम ऑफ हाउ आई एम फीलिंग ऑन टू यू.
1: You know, she is like that.
0: You know, so I get very irritated when I meet her every time. It can happen the opposite. I feel very nice every time I meet you. That's because I've stored a very positive sanskar. So wo har image jo store hoti gayi hai, wo reinforce hoti jati hai.
1: Aur ye life, the life chalta ja raha hai. Okay, this is what karmic account.
0: This is karmic account. Aur isliye kai baar kaiyon se milke bahut acha lagta hai aur kaiyon se milke hum thoda sa repel ho jate hain ki main inke sath comfortable nahi hu.
1: Acha, ye humne ek पहले लॉ की तरफ, या एक लॉ हमने जो समझा है कि जैसा कि हम जैसा बोएंगे, तो ये हम बात सुनते सदियों से आ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम कर्म की डेफिनेशन पे देखते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हम दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वही हमें वापस मिलेगा. और ये जन्मों से परे है, ये पूरा एहसास जो है ये जन्मों के परे है. क्या हम ये जो हमने कर्म किया है, जैसे हम ये कह रहे थे कि माफी मांग के किया जा सकता है, हम तो सुनते आ रहे हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है, पनिशमेंट है ही, या जो भी जिस भी बात को कहा जाए, पर क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है,
0: इसको सेटल कर सकते हैं अकाउंट को? यस.
1: वो सेटल कैसे करना है, क्योंकि वो आज के इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है,
0: क्योंकि अकाउंट बहुत सारे.
1: हाँ, और एक वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो गया. सी, अभी तक हम इस बात को नहीं जान रहे थे कि क्यों हो रहा है ये, तो सब ठीक ठाक था. आज अगर हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है, ये कुछ है प्रॉब्लम, और ये हो सकता है कार्मिक हो, तो वो और प्रॉब्लम तंग करेगी, वो तब तक और ज्यादा परेशानी होती रहेगी जब तक कि हम उसे सेटल करने का या काटने का जो भी फिनिश करने का एक प्रोसीजर नहीं सीख सकते. तो अगली कड़ी में वो प्रोसीजर तक जरूर पहुंचेंगे, नहीं तो तब तक वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा. सत्य शिवानी, आज जो पूरा हमने जाना इसको, और हर तरह के लॉज को जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये लाइफ, जो पूरा कार्मिक क्षेत्र है, कार्मिक कॉन्सेप्ट है, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसका एक खुलासा हुआ आज. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक फिलॉसफी है ये जरूर काम कर रही है, और हम में से हर कोई ये चाहता है कि इन अकाउंट्स को सेटल किया जाए. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके दिल में उठ रहा है, आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
0: हमारे फोन नंबर है 9999334666, 9899344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
1: अगली कड़ी में आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे, क्योंकि किस तरह से अपने जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उन्हें हम सेटल कर सकते हैं, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो बाकी आत्माओं के साथ, बाकी व्यक्तियों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। अब एक नहीं विद ब्रह्मा कुमारी सुए फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये है। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में बात की थी कि सिचुएशंस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हो जाती हैं और नो डाउट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आने वाला वक्त ये भी कह रहा है कि सिचुएशंस तो आती ही जाएंगी, और वो अगर हम एक चीज जिसे हमने धारण करने को कहा था, जिसे कहा था कि अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें, वो ये कि उन्हें सिचुएशन फील कैसे किया, वो मैंने क्रिएट किया।
1: तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस होल लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने क्रिएट किया। आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ, दर्द क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुई या गुस्सा क्रिएट हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ने क्रिएट किया।
0: सिचुएशन ऐसी थी,
1: आई अंडरस्टूड दैट द पेन इज गेटिंग क्रिएटेड। वो तो मुझे, क्योंकि वो मेरे अंदर क्रिएट होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो पेन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू द पेन। लेकिन क्रिएटर कौन था उसका? सो समवेयर व्हाई आई वाज फोकसिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे को लगा क्रिएटर बाहर बैठा है, यू नो, दैट्स व्हाई यू सेड पेन हिट्स अस, बिकॉज क्रिएटर वॉज आउटसाइड। लेकिन जो आपने अभी कहा, मैंने क्रिएट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई? सारी मेरे ऊपर आ गई। तो जो हमने, कई बार हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिव थॉट फिर वो मेरे सारे दर्द का कारण बन जाती हैं उस सिचुएशन को फेस करने में। तो अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन से क्रॉस करना है और बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, तो कुछ एक बातें जो हमें बहुत मदद करती हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशेड वर्ड, वेरी रेड, वेरी हर्ड, but still not practiced. What is the need of the hour? Let's start now. Let's not wait for the pain to
0: come in,
1: go out of control. Kyunki wo jo emotional pain hai, fir wo sirf emotional pain na rehkar mere par physical effect bhi le leta hai, meri relationships pe effect karta, koi na koi ailment sharir mein bimari ho jati hai, fir doctor kehta hai tension nahi lena hoga, it won't happen at that time. To jabki ab मालूम है सिचुएशंस बाहर है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, इट्स स्टिल नॉट बैड, आई कैन स्टिल टेक आउट सम टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ, प्रोवाइडेड आई रिमूव दिस वन थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है। सी, आई एम नॉट रेडी टू टेक आउट दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स, 15 मिनट अपने लिए निकालना, 15 मिनट जिससे आपकी पूरे दिन की, आपके पूरे जीवन की नींव खड़ी हो सकती है। अगर हम 15 मिनट निकालकर सिर्फ साइलेंस में बैठकर अपने आप को देखें, अपनी थॉट्स को देखें, फिर आगे मेडिटेशन जब करते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अगर ये 15 मिनट में मेरा इतना क्लीनिंग और चार्जिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, हाउ मच इज 15 मिनट्स का?
0: लेकिन ऑलरेडी जब सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि अब सिचुएशन आ गई है, और
1: लेकिन अभी भी उतनी बड़ी नहीं है, अभी भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ऊपर काम करना नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेज तो यही देखनी है कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं अपने लिए समय निकालकर थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर उस पर कॉन्टेम्पलेट नहीं करूं, मनन नहीं करूं, तो मुझे तो ये फैक्ट भी नहीं पता चलता कि आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स। मुझे तो ये रियलाइज

0: एफर्ट टू चेंज, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ना इलाज करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना तो पड़ेगा। कहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल। आप खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए टाइम नहीं है, और फिर कह रहे हैं हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, अगेन द ब्लेम विल गो everywhere outside. The meditation is definitely that connection, जिससे मैं अपने आप को देखना शुरू करती हूँ, अपनी healing, क्योंकि meditation comes from the word healing, अपने आप को heal करना शुरू करती हूँ, अपने thoughts को देखना शुरू करती हूँ कि हाँ देखेंगे ही नहीं तो question ही नहीं है कि negative है या positive है, वो तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर सिर्फ अपने actions को देख सकते हैं, thoughts को नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए रोज निकालें, भले अभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, बहुत बड़ी नहीं है, अभी भी उतना समय निकल सकता है, और अभी भी समय निकालेंगे तो उस सिचुएशन को राइट पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। समय नहीं निकालते,
1: एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अभी जो हम बात ही कर रहे हैं ना शिवानी की, जब सिचुएशन आती है तो हमारा कोई थॉट क्रिएट होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस के साथ देखूं, मैं भी अगर देखूं, हमने जो हम कई दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे सारे दर्शक और मैं शामिल होकर, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन, कई बार तो हम हैंडल करते हैं अपने आप को देखते हुए, कई बार देखते हैं कि वो फीलिंग पहले जनरेट होती है, थॉट की जहां फीलिंग ने हिट किया, चाहे वो हर्ट का था, चाहे वो एंगर का था, चाहे वो पेन का था, या चाहे वो रिजेक्शन का था, कोई भी एक फीलिंग ने हिट किया, उसके बाद थॉट आया कि
0: फीलिंग बिना थॉट के नहीं आएगा। हर्ट पेन, जितने भी आपने फीलिंग्स बताई, हर्ट पेन एंगर रिजेक्शन, उसने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर्ट, उसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंगर, वन थॉट हैज टू गेट क्रिएटेड फर्स्ट,
1: लेकिन वो थॉट हमें दिख नहीं पाता था,
0: फास्ट प्रोसेस है ना। क्योंकि मेरा एक स्पीड इतनी फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी अगर सारा दिन चल रही है तो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाई देगा सब कुछ। कभी तो स्लो डाउन करेंगे थोड़ा सा तो दिखाई देगा कि क्या प्रोसेस है अंदर जो चलता है। देखो इतना फास्ट होता कि ये भी नहीं रियलाइज होता कि पहले थॉट या पहले फीलिंग, ये भी नहीं रियलाइज होता अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। यू नो लाइक यू सेड द फीलिंग हिट्स, अगेन फीलिंग डजंट हिट, आई क्रिएट, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑफ माई थॉट। इसलिए जहां मेहनत करने वाली बात है वो उस सीड पर है, उस बीज पर है। थॉट एक बार राइट क्रिएट हो गया, फीलिंग अपने आप राइट क्रिएट होगी, एक्शन अपने आप उसके बाद राइट होगा, लेकिन वो थॉट स्टेज तो हम इतनी फास्ट फॉरवर्ड में चले जाते हैं, तथा नहीं चलता। तो अगर हम थोड़ा सा समय रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखें तो हमें पता चलने लगेगा कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट। तो इसलिए थिंकिंग को परिवर्तन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लाने के लिए मेडिटेशन इज द सोल्यूशन। Because meditation means first thing self introspection, अपने आप को देखना। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो उसको तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी परिस्थिति आती है, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स विच हैज बिकम वेरी कॉमन, हियर इज अ चेंज, व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, व्हाट इज इट? रेजिस्टेंस। यहां से सिचुएशन आई, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई डर है। फियर एक बहुत डीप रूटेड,
1: क्या होगा,
0: डीप रूटेड। अब जो आपने कहा क्या होगा, अब हम नॉर्मली समझते कि जब भी परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ तो हमें डर लगता है, फियर इज वेरी डीप रूटेड। लेकिन डर ये लगता है हमें कि अब क्या होगा। एक्चुअली अगर आप और उसको गहराई से अपने आप को कभी भी देखना, नेक्स्ट टाइम जब डर लगेगा, फियर, इट्स नॉट फियर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट इज फियर ऑफ व्हाट विल आई लूज आउट ऑफ व्हाट आई हैव नाउ।
1: यस, लूजिंग इज ए,
0: बिकॉज वी ऑलवेज थॉट दैट चेंज मीन्स फियर ऑफ अननोन, यू नो, कि आई डोंट नो कि इस चेंज से क्या होने वाला है। लाइक आई रिमेम्बर कि जब कंप्यूटराइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यू नो, into the offices, into the school system and everything, oh it was fear everywhere,
1: there was so much of resistance,
0: yeah, so much of resistance ke jis tarah se chal raha hai theek chal raha hai na, ye kis liye ab ye kyun
1: kar, humans ko replace kar denge, machine jo hai, machine will take over, kitne unke films bani thi, kitna kuch bana
0: tha। to ye fear kis baat ka tha, fear is baat ka nahi tha ki ye

0: होगा इससे? फियर इस बात से था कि मेरी जो वर्तमान समय पोजीशन है, मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो पावर है, कहीं वो तो नहीं लूज कम हो जाएगी। तो वो फियर की वजह से मैं उस चेंज को रेजिस्ट करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। सो फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड नॉर्मली हम किस चीजों को खोने का डर रहता है हमें? पीपल, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, पावर, यू नो, एनी रिलेशनशिप, एनी ऑफिस, एनी वेयर चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड, फियर ऑफ लूजिंग पावर,
1: पोजिशन,
0: पोजिशन, यस, प्रेस्टीज, माई पर्सनैलिटी, पीपल, मनी, पे, ऑल दीज, वी कॉल देम द पीस, पावर, पोजिशन, प्रेस्टीज, पीपल, पेनीज, डर। और ये डर मुझे उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए करता है। और जैसे ही मैंने रेजिस्ट किया तो कौन सी एनर्जी फ्लो होने वाली है?
1: नेगेटिव,
0: नेगेटिव। सो इफ आई रेजिस्ट चेंज, देर इज नो वे आई विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिव नाउ। तो मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मुझे अंदर कोई ना कोई डर है कि मेरे ये सारे जो है पोजिशन, पावर, लोग जो है, इनमें से कोई मेरे से खो ना जाए। तो वो डर हमें रोकता है। तो अगर हमें इस सिचुएशन को बहुत आसानी से क्रॉस करना है, फर्स्ट स्टेप कम्स टू एक्सेप्टेंस,
1: एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन,
0: एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि ये होना है। जैसे ये सारी बातें हमने की, अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना, ऑल दीज थिंग्स, पीपल, मनी, पोजिशन, वट एवर, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज ऑल्सो ऑल एनर्जी, लाइक इट्स फ्लोइंग इन माई लाइफ। ये एक रिवर की तरह है जो फ्लो करता रहता है। हम उस रिवर को क्या करने की कोशिश करते हैं?
1: रुक
0: जाए, ये यहाँ रुक जाए। और वो रिवर को रोकने की कोशिश जो हम ये जीवन में हमारा जो बहता, ये सारी चीजें बहती हैं, दैट्स वाई इट्स चेंज, बिकॉज रिवर फ्लोइंग, नॉट इवन अ सिंगल यू नो मोमेंट इट्स गोइंग टू बी टू मोमेंट्स द सेम। फ्लोइंग रिवर मीन्स हर पल अलग अलग, हर पल परिवर्तन। तो ये जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये परिवर्तन है। 10 साल पहले मेरे जीवन में जो लोग थे, आज परिवर्तन है। 10 साल पहले जो मेरी पोजीशन थी, आज परिवर्तन है। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गुड और बैड, क्वेश्चन इज हैज इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट? नो। तो हम उसको क्यों रोकने की कोशिश करते हैं?
1: यहाँ आपने कहा एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम ये आती है जैसे ही एक्सेप्टेंस कहती हूँ, मेरे जो सारे फियर्स थे मैं उसको एक्सेप्ट करने लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, फिर मेरी अपनी पोजीशन तो जाएगी ही जाएगी, कोई आ गया, मेरे पैसा तो जा ही रहा है। ये जो फियर, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस ना लाइक रहकर कई बार, मतलब जैसे एक्सेप्टेंस आप कहो कि सिचुएशन की एक्सेप्टेंस, तो उसके साथ के फियर के साथ जो लूज को, चीजों को लूज करने वाला फियर था, उसको एक्सेप्टेंस की बात हो,
0: तो फिर हमने फियर को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को थोड़ी एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस सिचुएशन में डर लगना तो नेचुरल है। हम अपने रिस्पॉन्स को भी नहीं कहेंगे, रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगेन बाय सेइंग कि ये सिचुएशन में ये तो नेचुरल ही है ना, सो वी
1: एक्सेप्ट, ऐसा तो होगा ही, ये होगा, ये होगा, अब चलो मैं एक्सेप्ट, उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है अब हो गया है ये, तो ठीक है मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी पोजिशन चली जाएगी।
0: दिस इज अ होल सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हिच हैज स्टार्टेड। तो ये जो रिवर जो फ्लो कर रहा है, If I try to stop it, it's like एक डैम बिल्ड कर देना, यू नो, ये यहीं रुक जाए, पानी जैसा आगे नहीं फ्लो करे, यहीं कहीं रुक जाए। अब जैसे ही हम उस पर एक डैम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो डैम के दूसरी तरफ क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। और ये प्रेशर जो है, दिस आई एम क्रिएटिंग, दैट इज वाई वी से सेल्फ क्रिएटेड, अपना प्रेशर खुद ही क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। क्यों क्रिएट किया हुआ है? क्योंकि ये बहती हुई चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब बह रही हैं चीजें, व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई एक्सेप्ट, एंड व्हाई शुड आई एक्सेप्ट? मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करना? अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है सिचुएशन, तो क्यों एक्सेप्ट करना? हैव यू सीन अ रेस्लिंग मैच? हाँ, तो वो जूडो या सुमो या जो भी वो रेस्लर्स होते हैं, आप कभी भी देखना उनकी जो मैच होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, दैट इज चेंज फिलोसफी। दो लोग सामने से आते हैं, First they bow down, right? This is a sign of respect. Then they embrace each other. Kabhi bhi dekhna. Always the match will start like that. Pehle aap bow down karte hain, phir aap embrace karte hain, phir aapka aage shuru hota hai, jo game aapne karni hai.

0: This is basic change philosophy. कि जब भी आपके सामने वो परिवर्तन आए, वो सिचुएशन आए, पहले आप उसको इम्ब्रेस करते हैं. दिस जूडो और रेसलिंग, व्हाट डू दे डू? आप पहले इम्ब्रेस करते हो और इम्ब्रेस करने से आप कैच कर लेते हो कि इसका मोमेंटम क्या है,
1: इसकी ताकत कितनी है.
0: और फिर उस ताकत को मैं कैसे फेस करने वाला हूँ. अगर ये यहाँ से करेंगे ना इसको, तो आई वुडंट नो हाउ टू हैंडल
1: फियर ऑफ अननोन रिमेन्स,
0: फियर ऑफ दैट. सो नॉर्मली द चेंज फिलोसफी गोज कि फर्स्ट यू एम्ब्रेस, राइट, देन यू कैच द मोमेंटम कि इसके अंदर क्या है. लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो आपको उसका मोमेंटम तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस फ्लो से आ रहा है. और जब तक हम उसके मोमेंटम को कैच नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह से.
1: अपने शत्रु से पहले हाथ मिलाओ, उसके बाद उसका जांचो कि कितना है उसमें पोटेंशियल,
0: एंड देन सी व्हाट आई कैन डू. बिकॉज फाइनली लाइफ इज व्हाट इट्स लाइक दिस ओनली ना. ये जो सिचुएशंस हम बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारा मैच ही तो चल रहा है ना सारा दिन इनके अंदर. लेकिन जब हम वो सिचुएशन को ही
1: बड़ा
0: मान लेते हैं और अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं, दैट मीन्स वन साइड हैज सेड सॉरी, मैं आपके साथ नहीं मैच खेल सकता, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट, मेरे जीवन में तो यही लिखा है. तो मतलब क्या किया मैंने, तो उसके साथ ट्राई भी नहीं किया,
1: गिव अप कर,
0: ट्राई ही नहीं किया. सो ऑलवेज एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स ये है, दिस इज इट, नाउ व्हाट. आर प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों, अभी हमारे बोलने से या हमारे उस तरह से सोचने से क्या हो जाता है, जैसे ही वो क्यों क्या कैसे इसमें चले जाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें बताते कि ये जो क क क हर टाइम खड़ा करते हो ना, इसको पहले फुल स्टॉप करो. क्यों क्या कैसे कब कहाँ, तो पूरा माइंड कहाँ किस तरफ चला गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. एंड देन बाबा ऑलवेज सेज क्वेश्चन मार्क बहुत क्रुकेड मात्रा है, बहुत टेढ़ी है, फुल स्टॉप ऐसा है. नाउ व्हाट, नाउ व्हाट. लेट्स से आप मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, छोटी सी सिचुएशन है, आई नो सिचुएशंस आर वेरी बिग, बट लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिचुएशन. आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आप मुझे अब्यूज भी कर सकते हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं, शायद 10 लोग आसपास सुन रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं. नाउ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको यही बात कहनी थी अलग से कह देते, ये कोई बोलने का तरीका है क्या, इस तरह से बात की जाती है. सो हु एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल, I'm trying to control you, and I'm going into kyun, kya, kaisa. The next acceptance means, हाँ जी, ये इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं. अब मेरा response क्या? आपसे बुद्धि हटाऊंगी, तब तो बुद्धि को अपने ऊपर लेकर आऊंगी कि हाँ, how am I supposed to face this? लेकिन जब तो मेरा मन आपके अंदर ही अटका हुआ है. क्या आप ऐसे क्यों, आप ऐसे कैसे, आप
1: और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, इतने सारे लोगों के सामने कर दी, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, मुझे ये समझ लिया, मुझे ये समझ, यू नो, किसने समझा,
0: आपने किया, आपने किया जो सही है या गलत है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज बाय गोइंग इनटू दैट देयर इज नो रिजल्ट. अगर मैं समझू कि ओके, यू आई फील आई शुड टेल यू, आई टेल यू कि आई डोंट थिंक जो आपने मेरे साथ किया वो ठीक, लेकिन वो मैसेज भी आप तक कन्वे करने के लिए प्रिलिमिनरी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैंने आपको रेजिस्ट किया, तो मेरे अंदर आपके प्रति इतनी कहें घृणा भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि बैठकर क्लैरिटी सिर्फ और उसको वो
1: नहीं हो पाता.
0: तो इसलिए अगेन आई विल हैव टू कम बैक टू माई सेल्फ. लेकिन आपसे हटकर, मतलब सिचुएशन से हटकर अपने तक आने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ तब होता है कि मैं पहला वो फुल स्टॉप जो आपने कहा ना, फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इज एक्सेप्टेंस. तो जो वो रिवर फ्लो कर रहा है, आई ओनली हैव अ फ्यू ऑप्शंस फॉर दैट. एक तो उसको रोकने की कोशिश करे, प्लीज मत जाओ, यू नो आई ट्राई टू स्टॉप यू, या प्लीज बदल जाओ, प्लीज अच्छे हो जाओ, प्लीज मेरे से ठीक से बात करो. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द रिवर, कि हम दूसरों को ब्लॉक करते हैं. दूसरा है, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हैं, मैं आपके प्रभाव में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हूँ. तो देन व्हाट हैपन कि रिवर वॉज फ्लोइंग, मैं रिवर के साथ ही

0: फ्लो होकर चली गई. जैसे आपने कहा ना, एक्सेप्टिंग द पेन, दिस इज फ्लोइंग विद द रिवर. हाँ, सिचुएशन खराब है तो मेरा भी खराब होना उसके साथ ये जायज है. दूसरा गुस्सा कर रहा है तो मेरा भी गुस्सा करना जायज है. ये क्या हुआ? फ्लोइंग विद द रिवर.
1: ओ, सो यू हैव टू कंटिन्यू टू स्टैंड एंड लेट इट ग्रो.
0: यस,
1: आई वुड हैव सेड अदरवाइज कि फ्लो विद द रिवर.
0: नो, फ्लो विद द रिवर इज देन दैट मींस ऑलवेज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. फ्लो विद द रिवर मतलब फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हुई ना, मेरे पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ. सामने रिवर जो जो लेकर आता गया, मैं उसके साथ ही बहती गई. आज रिवर इस तरफ जा रहा है, कल उस तरफ जा रहा है, परसों उस तरफ जा रहा है, तो मैं भी उसके साथ.
1: और मैं बेचारी अपने आप को कहती गई, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ करती गई मैं. ओह, तो आई स्टैंड वेर एवर आई वॉज स्टैंडिंग
0: एंड आई लेट द रिवर फ्लो.
1: ओह यस,
0: नीदर स्टॉप द रिवर क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, नीदर फ्लो विद द रिवर बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर मी. आई विल जस्ट, I don't know where I will
1: reach. And that's not what I wanted.
0: That's not what I want.
1: You know, it's very important. If I wanted to flow with the river, if it, this was the right direction I was feeling, I should go. Otherwise, I should stay there.
0: So, if I can look at that river flowing, na, lekin.
1: हाँ.
0: मुझे ये दिखाई देना चाहिए ना अपने जीवन के अंदर, चाहे वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति चाहे लोग हैं, चाहे कुछ भी है, मुझे ये दिखाई देना पड़ेगा कि ये है स्थिति, ये है परिस्थिति. परिस्थिति के साथ मुझे स्थिति को बह नहीं जाना है, मुझे परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है. मुझे अपनी स्थिति को परिस्थिति के प्रभाव से न्यारा रखना पड़ेगा. और वो तभी समझ में आएगा, तभी कर पाएंगे जब पहले फंडामेंटल ये रियलाइजेशन बैठ जाएगी कि ये है परिस्थिति, ये है मेरी स्थिति. ये परिस्थिति अलग, मेरी स्थिति मैं क्रिएट करता हूँ. परिस्थिति स्थिति नहीं क्रिएट कर, स्थिति आई एम द क्रिएटर. इवन दिस वन थॉट इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ एवरी टाइम, डे इन एंड डे आउट, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग टेल माई सेल्फ एवरी थॉट, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर एंड आई हैव अ चॉइस. हर संकल्प मेरी रचना है तो मेरे पास चॉइस है कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं. क्योंकि जो संकल्प मैं क्रिएट करूंगा उसके बाद
1: फीलिंग.
0: हमने पहले भी देखा था, बट आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज गो ओवर इट ऑल ओवर अगेन, कि जैसे ही हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ थॉट. लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमैटिक, जो आपने कहा ऑटोमैटिक हो जाता है, दैट इज अ फीलिंग. कि संकल्प क्रिएट हुआ और मुझे उसका फीलिंग या उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है. और जो फीलिंग्स मेरी आपके प्रति, परिस्थिति के प्रति या पूरी दुनिया के प्रति, जो फीलिंग्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करती आई हूँ, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड. सो एटीट्यूड या कहें वृत्ति जो मेरी है कि दुनिया ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही है, ये एटीट्यूड कैसे बना? क्योंकि कई बार मैंने वो थॉट क्रिएट किया, बार बार मुझे वो फीलिंग आई आपसे मिलने के बाद या आपके कोई व्यवहार से, तो मेरा एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये तो ऐसे ही है, मुझे पसंद नहीं है. तो थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद आई कम इनटू एक्शन. अब हम सिर्फ एक्शन वाली स्टेज को देखते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा व्यवहार किया. हम ये थ्री स्टेजेस को, जो इनर प्रोसेस है, ये स्किप कर जाते हैं कि ये एक्शन बना कैसे. इट वॉज बेस्ड ऑन थॉट, फीलिंग एंड एटीट्यूड. और फिर जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर बात करने का तरीका, यू नो, जैसे कई लोगों को आदत है ऊंची आवाज में जोर से बोल दिया या जोर से किसी को ऐसे डांट दिया, उनको अगर कभी आप कहो के the same thing could have been said in a probably a different way, they will say, oh, it's my nature. Because they don't even realize now whether this is useful for me or it is damaging for me. It's my nature. And nature matlab, main aisa hoon. Ab mujhe change hone ke liye nahi kehna. To ye nature kaise bani? Bachpan se thodi aise the. Lekin kai baar gusse se bola, phir unchi awaaz mein bola, thode din ke baad, वो मेरी हैबिट. तो जो एक्शन हम बार बार रिपीट करते हैं, वो मेरी हैबिट. नाउ ऑल योर हैबिट्स पुट टुगेदर इज योर
1: पर्सनैलिटी. आई रिमेम्बर दैट.
0: यस, ऑफ कोर्स. दिस इज अ डीप प्रोसेस विच शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड. कि ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, दिस इज बिगिनिंग विद माई थॉट. मेरा पूरा जो आज व्यक्तित्व है, वो मेरी सोच से स्टार्ट होता है. और ये व्यक्तित्व

0: ये पर्सनालिटी संबंधों में आता, कर्म क्षेत्र पर आता, व्यवहार में आता, संबंध संपर्क में आता. एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. Why my destiny? Because जो मेरा व्यक्तित्व होगा वैसा मेरा कर्म होगा, वैसे मेरा आपसे बात करने का तरीका होगा, और जैसा कर्म मैं करूंगी उसी का रिजल्ट मुझे मिलेगा. Now we know this. I mean we don't need to learn it for the new time. बचपन से मुझे सिखाया गया कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, और हमारा कर्म किस आधार पर बेस्ड है? सोच पर. हमें किसी ने ये तो बता दिया कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि आपका कर्म आपके सोच से स्टार्ट होता है. और फिर किसी ने यही नहीं सिखाया कि राइट तरीका सोचने का क्या है. एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे सेड व्हाई डिडंट दे टीच अस हाउ टू थिंक, एंड देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड वी सेड एज अ चाइल्ड वी आर टॉट हाउ टू टॉक, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, नॉट टॉट हाउ टू थिंक. No one taught us. तो वो अपने आप ही डेवलप होता गया. एंड फिर आज जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेट हो गया. बट इट्स नॉट ट्रू. आज भी हम स्टार्ट करें तो इट विल चेंज.
1: हमारा एक थॉट कि हम थिंकिंग को शुरू करें हमारी
0: ये भी हमारी डेस्टिनी को चेंज कर
1: बिल्कुल. और जिस तरह से हमने आज सिचुएशन को देखते हुए किया कि बिंदी लगाने वाली बात थी कि फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Wonderful. So let's try to experience in the real sense what is meant by positive thinking. Positive thinking सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जैसे कि कह रही स्टेशनरी, लेकिन implement और अनुभव नहीं कर रहे थे. Let's try to do that. अगर कोई समस्या आती है, कोई सवाल है आपके पास, आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसका हल आप तलाश रहे हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-777-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक नई रामा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन अभी हमें वो एम्पावरमेंट का सोर्स से जुड़ने का तरीका एक बार फिर जानना है. हमें देखना है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जैसे हम हैंडल करेंगे उसके लिए हमें ताकत कहाँ से चाहिए. और इसके लिए आपके साथ हम अगली कड़ी में जरूर होंगे. फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। नमस्कार। जिंदगी में कभी हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन चलते चलते अनजाने ही कुछ ऐसी आदतों से हम घिर जाते हैं जो फिर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, और कई मोड़ ऐसे आते हैं कि जब वो मजबूरी बन जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है कहीं हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो रहा हो, या फिर हमारे घर परिवार में कोई हो जो इस परेशानी से जूझ रहे हों। उसके सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं। कई तरह के व्यसन जिसे हम आज जिंदगी का हिस्सा मानकर उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो आज जब हम अपनी पहचान कर रहे हैं तो फिर ये बात समझ में आती है कि इन सिचुएशंस को हम इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इन सिचुएशंस को बदलने का प्रयास करेंगे और किया भी जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से ये आदतें हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं और कैसे हम इन्हें दूर कर सकते हैं, हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हर बार की तरह हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, अभी तक हम कई सारे व्यसनों के बारे में भी जाना और कई आस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं। हमने डिटेल में बात की कि अगर ड्रग एडिक्शन की बात की जाए तब भी वो कहां तक लेके जा सकती है, और उसके अलावा एक जो आपने बहुत बड़ा रीएश्योरेंस हमें दिया हमारे सभी दर्शकों को भी कि किसी भी प्रकार का व्यसन या किसी भी प्रकार की जो मजबूरी बन जाती है आदत, उसे दूर किया जा सकता है। दिस इज द आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली गो अहेड। और जैसा आपने कहा कि आपने पहले भी बात की थी कि मेडिटेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है, हम बात कर चुके हैं हीलिंग है, लेकिन हीलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी विल पावर को इतना स्ट्रांग करते हैं, सेल्फ एस्टीम इतनी बढ़ जाती है। डॉक्टर पटेल, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, एडिक्शन के ऊपर आते हैं जो आज के दौर में एडिक्शन मानी ही नहीं जा रही, और वो इतनी कॉमन, घर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर नजर आता है, जरूर मिल जाता है जो इसका इससे घिरा हुआ है, इसका शिकार है, और इसे एक आम आदत के रूप में मान लिया जाता है, और वो है स्मोकिंग। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिगरेट, जो एक सिगरेट पी जाती है, उसके अंदर क्या होता है, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, क्या चीज होती है जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल भी करते हैं?
2: बहुत अच्छा। सबसे कॉमनेस्ट चीज कि जो आज सभी जानते हैं वास्तव में, वह है सिगरेट में निकोटीन। जो हैबिट फॉर्मिंग चीज है वह है निकोटीन। निकोटीन की बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होती है, साथ साथ में देखा गया है कि ऐसे और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, और एक डेंजरस केमिकल है वह कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की जो एफिनिटी है वह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत पावरफुल होती है, कई गुना ज्यादा, और इसके कारण उसके काफी हार्मफुल इफेक्ट होती है। ऐसे कोल टार है, कुछ साइनाइड्स भी इसमें है। कुल मिलाकर तो देखा

0: कि भी 4000 केमिकल्स साइंटिस्ट बताते हैं, पर कम मात्रा में है, परंतु फिर भी हम उसे काउंट कर सकते हैं कि 4000 केमिकल्स है और उसमें से करीब 48 है कि जो कैंसर पैदा करने वाले और स्मोकिंग की इन सभी केमिकल्स के साथ साथ जो हीट जनरेट होती है उसकी भी हमारी लिप्स, टंग्स, म्यूकोसा आदि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: और कहीं ना कहीं इतने शौक से, इतनी शान से हम में से हर कोई जो इसका आदी है वो कहता है कि मैं 20 सिगरेट पीता हूँ, मैं पूरा पैकेट दिन में खत्म कर देता। एक्चुअली ये जो पूरा एटीट्यूड है शिवानी, इस पे आते हैं कि व्हाई टू बी सो प्राउड ऑफ इट। हम फ्लॉन्ट करते हैं कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ या करती हूँ, ये क्या है? ये भी कहीं एक सोशल,
2: कहीं ना कहीं उसको भी स्टेटस सिंबल या उसको भी स्ट्रेंथ मान लिया कि मैं इतनी सिगरेट पी सकता हूँ या मैं इतना अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ, ये भी मेरी जैसे ताकत है। यू नो, ये फिजिकल स्ट्रेंथ कहे या जो भी, इसको अपना स्ट्रेंथ को यू नो मैग्निफाई करने के लिए या उसको स्टेटस सिंबल बनाने के लिए वी सो प्राउड ऑफ। जैसे हम कहते हैं मुझे इतना स्ट्रेस है, दूसरा कहता है आपको बस इतना ही है, मुझे तो इतना है। यू नो, सो सिमिलर, इवन दो वी रियलाइज कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मुझे उससे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, तो आई एम मोर पावरफुल देन यू। तो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अगेन।
0: देयर इज नो डाउट नाउ जो हार्मफुल इफेक्ट्स का है कि स्मोकिंग के बारे में हर साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेगा, और अब तो अलग अलग एरियाज में भी रिसर्च होने लगी कि कौन सी हार्मफुल इफेक्ट्स है स्मोकिंग के कारण।
1: अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें कि सचमुच फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली कहां तक हमें इफेक्ट करता है उस पर आते हैं, लेकिन फिजिकली क्या एग्जैक्टली क्या कुछ होता है हमारे बॉडी में?
0: एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भी ये रिसर्च होती है, ये कोई एक एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मेरा पड़ोसी है वो तो 50 सिगरेट पी रहा है, उसको लंग कैंसर नहीं हुआ। दूसरा एक व्यक्ति, उसको मैं जानता हूं, उसने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, लेकिन वो लंग कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई।
1: ओ, ये तो इतना बड़ा प्ली होता है जितने भी स्मोकर्स हैं, तो ऐसा क्यों?
0: तो हाँ, ये क्यों है कि भी लंग कैंसर होने के और भी कारण है, बल सबसे महत्वपूर्ण कहते करीब 85% जो रीजन है वह है स्मोकिंग। और भी छोटे छोटे रीजन है कि जो शायद 15% उसको कंट्रीब्यूट करते होंगे। यह जो फाइनल डिसीजन हुआ है वह कैसे हुआ कि बहुत बड़ी रिसर्च की गई कि जैसे 2 लाख स्मोकर्स को स्टडी किया गया और 2 लाख नॉन स्मोकर्स को स्टडी किया, और फिर देखा कि उनमें भी समझो 10,000 को कैंसर हुआ और वहां पर सिर्फ 10 लोगों को ही कैंसर हुआ। तो फिर यह निर्णय किया गया कि ये कितना गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
1: स्मोकिंग किल्स, हम में से हर कोई शायद इस स्लोगन से गुजरता है, स्मोकिंग किल्स, लेकिन जब भी हम सिगरेट उठाने लगते हैं ये स्लोगन तब हमें क्यों नहीं याद आता? जब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो काफी स्ट्रांगली हमारे दिमाग में इम्बाइब्ड है, तो क्यों नहीं तब वो सामने आ जाती है?
2: क्योंकि तब तक वो ऑलरेडी शुरू में, जैसे किरीश भाई ने भी कहा, पहले हमने जो डिस्कस किया, फर्स्ट वी ट्राइड इट आउट फॉर द थ्रिल, ठीक है, तब वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मायने नहीं रखती थी कि एक या दो लेने से इट इज नॉट गोइंग टू किल, एंड बाय द टाइम इट बिकम्स अ हैबिट, तब इवन इफ आई अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग किल्स, मेरे पास वो विल पावर नहीं है उसको गिव अप करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस न होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इस दौर से, जो सिर्फ एक ट्रायल के लिए या एक प्लेजर के लिए था, हम एडिक्शन तक पहुंच गए जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे। अब हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन काम की है कि स्मोकिंग किल्स, बट अब हम कहते हैं कि अब तो मैं इसके बिना कर नहीं सकता हूं।
0: और तब तक आप बुद्धि फिर तर्क ढूंढने लगती है, जैसे आगे मैंने एक तर्क बताया,
2: जस्टिफाई भी कर देते हैं ना कि वैसे भी जितना जीना है।
0: दूसरा एक तर्क ये भी होता है कि मुझे नहीं होगा, भले ये पक्का है कि सिगरेट के कारण लंग कैंसर होता है, परंतु मुझे नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से भी व्यक्ति अपने आप ही आंखें बंद कर देता है कि ये हार्मफुल इफेक्ट मुझे नहीं होगी।
1: अगेन, हार्ट की जो प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, कहा जाता है कि मैक्सिमम इफेक्ट स्मोकिंग के कारण है,
0: बिल्कुल,
1: कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कई सारी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअली सामने आ सकती है।
0: ये जो हार्ट का बताया उसके हम पहले तो चर्चा करें कि खून में प्लेटलेट्स होते हैं कि जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो चिपक जाने के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। निकोटीन से जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं।

0: लगती है और ऑलरेडी और कई कारण है कि तनाव के कारण वह कंस्ट्रिक्ट हुई है, या तो आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं उसके कारण भी वह फैट डिपॉजिट होने लगी है, एक बहुत बड़ा एडिशनल कारण बन जाता है। जो मैंने कार्बन मोनोक्साइड की बात की, कार्बन मोनोक्साइड के कारण भी हीमोग्लोबिन है वह कार्बन मोनोक्साइड से चिपकता है और फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है खून की वो अनेक गुना, थोड़ी सी नहीं ऑलमोस्ट 20-25% ही रह जाती है। यह एक हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और निकोटीन से वो प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर आता है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऐसे ही जो इमीडिएट इफेक्ट है वो तो आपके होठों पर है, जो हीट जनरेट होती है, हीट के कारण होठों का कैंसर, जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर होने की संभावना, जितनी आप ज्यादा सिगरेट पीते हैं उतनी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिस्टमेटिक रिसर्च है, सिर्फ कोई एक दो किस्सों को देख करके किसी ने कहे कि भी एक स्टोरी नहीं बना दी कि सिगरेट के कारण जीभ का कैंसर होगा। दिस इज रियली अ सिस्टमेटिक रिसर्च विच हैज प्रूवन। और दूसरा, आजकल तब क्या हो रहा है कि सिगरेट में निकोटीन बढ़ रहा है। एक रिसर्च स्टडी हुई थी कि करीब पिछले 12 सालों में सिगरेट में 11% निकोटीन है वह बढ़ा है। और दूसरी बात कि अभी सिगरेट्स को इस अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि भी व्यक्ति ज्यादा पफ्स ले सकते हैं, तो उसके कारण भी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ रही है।
1: और एक अगली बात मेरी ये थी कि अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्या एकदम से छोड़ी जा सकती है या फिर धीरे धीरे करके छोड़ी जाती है?
0: सक्सेस तो एकदम से ही मिलती है, हर व्यक्ति सफल न भी हो पाए, परंतु जो सक्सेस मिलती है वो जब आप एक बार निर्णय करते हैं और पूरा छोड़ दे तब सक्सेस मिलती है। बल उसके लिए थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। आप ये निर्णय कर ले कि आज से 15 दिन के बाद एक डेट निश्चित कर दे कि इस डे को मुझे 100% सिगरेट को छोड़ देना है, फिर उन 15 दिन के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट करिए कि जितना कम से कम हो। उसमें भी कोटा सिस्टम नहीं चलती है, कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आज अगर आप 15 सिगरेट पी रहे हैं तो कहेंगे कि भी एक वीक के लिए आप 10 पियो, फिर और एक वीक के लिए 5 पियो और फिर उसको कम्प्लीटली छोड़ो। मैं सोचता हूं कि ये राइट नहीं है। ये संभव है कि फर्स्ट डे ही आपको एक सिगरेट से भी चल जाए तो फिर दूसरी क्यों पीनी चाहिए। इसलिए यह संभव है कि भी थोड़े दिन हम कम से कम करें और फिर उसको पूरी तरह से
1: एक डेट फिक्स करके ये कर सकते हैं। दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, जैसे छोड़ने जो डी एडिक्शन के ऊपर हम और बात करेंगे। तो बीच में मेरे पास आया, अच्छा सिगरेट स्मोकिंग सिस्टर शिवानी एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी, अभी तक हम उन आदतों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ मुझे अफेक्ट कर रही है, जो मुझ तक ही सीमित है और मैं ही उससे अफेक्टेड हो रहा हूं, चाहे हम बाकी सारे व्यसनों की बात करें, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी लत है जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। जब पैसिव स्मोकिंग की बात आती है, जब वो स्मोक पूरे वातावरण में जा रहा है, घर में भी देखा गया है कि जो इन्फेंट डेथ्स की बात है उसमें भी स्मोकिंग शायद काफी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जो पैसिव स्मोकिंग है उसके इफेक्ट क्या है?
0: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद ये जो बात बताई कि जब आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और विशेष स्टडी भी की गई है कि बच्चों पर बुरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके जो लंग्स है अभी भी डेवलप हो रहे हैं, नहीं वो टेंडर है एक प्रकार से। एडल्ट पर कम इफेक्ट होगी, बच्चों पर और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होती है। और एक यही चीज देखी गई जिसको कहा सडन इन्फेंट डेथ, SIDS कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम में कई बार पाया है कि एडल्ट का स्मोकिंग है वही उसके लिए कॉज है, तो कहेंगे कि इट कैन बी नो लाइक अ डेथ पेनल्टी ऑल्सो। कई बार तो लोगों ने भी रियलाइज किया,
1: इट्स एक्चुअली सो सैड। और देखा जाए तो पूरे पर्यावरण, पूरे समाज के लिए ये व्यसन के रूप में सामने आ जाता है। सिस्टर शिवानी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें, क्योंकि बाकी सारे व्यसनों की, आदतों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जहां पूरा का पूरा समाज एक सिगरेट से भी, एक सिगरेट के स्मोक से भी इफेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली हाउ कैन वी डील विद इट?
2: आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बिकॉज जो कर रहा है वो शायद औरों के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो अपने बारे में ही नहीं सोच रहा है। पहले तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अगर मुझे गिव अप करना है मैं शायद इस एंगल से सोचकर नहीं गिव अप कर सकती हूँ कि इसका नुकसान, हाँ फैमिली का अगर हम सोचे कि इसका मेरे बच्चों पर नुकसान हो रहा है, मेरी इमीडिएट फैमिली जो साथ में रहती है, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स दे आर

0: परफॉर्मिंग, और हम सब कुछ अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो हम उनको क्या दे रहे हैं? ये एक थॉट पे अगर हमें आए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, शुड बी अ रीजन इनफ टू गिव इट अप एट वन गो. और एक थॉट से इसको गिव अप कर सकते हैं. हमारे पास रिट्रीट सेंटर में एक भाई आए थे, प्रिंसिपल थे, जो 5 दिन की रिट्रीट के लिए आए थे. और रिट्रीट सेंटर में तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है ब्रह्मा कुमारी कैंपस में. तो अब उनको पता था कि उनको 5 दिन यहाँ रहना है, तो ही इज नॉट अलाउड टू स्मोक. तो उन्होंने पहले दिन ही कहा कि आई एम सॉरी, मैं इस रिट्रीट में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ, आई हैव टू गो बैक. बिकॉज वो 40 या कुछ सिगरेट रोज स्मोक करते थे, काफी बुजुर्ग थे, 50 अबव. तो फिर सभी ने उनको कहा कि ट्राई करके देखते हैं, यू नो, आप इस कैंपस में आए हैं. और बहनों ने कहा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप यहाँ कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू गिव इट अप. तो उन्होंने कम नहीं किया, क्योंकि वहां कम करने की मार्जिन नहीं थी, क्योंकि वो कैंपस के अंदर थोड़ी एक भी नहीं ले सकते. तो पहले दिन से जब ठहरे तो लेना बंद कर दिया. 2 या 3 दिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, यू नो, वो रिट्रीट के लिए भी हिस्सा लेने नहीं आ सकते थे, वो कमरे में ही रहते थे, उनको चिंगम और लौंग और उस तरह के सब्स्टिट्यूट्स दिए जा रहे थे. 3 डेज द ब्रदर वॉज इन अ लॉट ऑफ यू नो टर्मोइल एंड, लेकिन एक भी नहीं लिया, एक भी सिगरेट, राइट फ्रॉम 50 या जो भी वो लेते थे, एक भी नहीं लिया. 4th डे वो आए उस वर्कशॉप के अंदर, और 5th डे तो जाने का दिन था वापस. 5वें दिन ही वॉज बिल्कुल ओके, एकदम ओके. और जाने से पहले सभी लोग अपना अनुभव शेयर करते, तो वो क्लास के सामने आए और एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, तो रोने लगे सबके सामने एकदम, और कहा कि आज मैं जब घर जाऊंगा तो सर उठा कर जाऊंगा. कहते मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसको ये मेरी हैबिट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं उसके लिए करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं सकता था. लेकिन आज मैं you know, बहुत गर्व से घर जाऊंगा कि मैंने इस आदत को छोड़ दिया है. और 2 साल के बाद वो फिर आए रिट्रीट सेंटर में, हमने नहीं पहचाना क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं. तो उन्होंने आकर कहा कि आपने पहचाना, मैं वो ही हूँ जो 50 सिगरेट स्मोक करते थे. कहते वो दिन और आज का दिन, 2 साल, एक भी नहीं लिया बीच में, नॉट इवन वन.
1: That's wonderful. Actually, कहीं ना कहीं जो ये सोशल इशू भी है, कहीं ना कहीं इसका मतलब जो स्मोकर्स हैं, दे हैव दिस गिल्ट जिसको वो मार के आगे बढ़ते जाते हैं.
0: इट्स नॉट एबल टू डू इट, लेकिन जब उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आकर बहुत बहुत बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इन आदतों को एक बारी में छोड़ा है. इनफैक्ट सेंटर पे और हेडक्वार्टर में तो एक दान पेटी होती है जिसमें आप जो कैरी कर रहे हैं ना अपनी पॉकेट में, सिगरेट या बीड़ी का पैकेट, वो आप वहां डाल कर जाइए. और दृढ़ संकल्प से, बिकॉज ऑल दैट इट रिक्वायर्स इज वन थॉट. जब हम अपने गुस्से को और इन बातों को थॉट पावर से खत्म कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल एडिक्शन है. और बहुत सारे लोग एक थॉट से, धीरे धीरे नहीं कम किया, कितने, एक थॉट से गिव अप किया है. एंड दैट टू जो बहुत ज्यादा स्मोक करते थे. तो जो अभी कैजुअल है उनको तो गिव अप करने में कुछ भी टाइम नहीं लगे.
1: ये सिगरेट या स्मोकिंग जो है, सरकार भी अगर हम आज देखें तो कई बाकी सारे लत या एडिक्शन के ऊपर इतनी बात ना करके स्मोकिंग पे ही इतना जोर इसीलिए है कि कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी, पर्यावरण जो है इससे परेशानी में है. परिवार का हमने पिछली बार भी बात की थी, एक्सेप्टेंस हो जाती है. हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे फादर स्मोक करते ही हैं तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है वो तो करेंगे ही. हमारे हस्बैंड स्मोक करते हैं, इवन कई घरों में मदर स्मोक करती है, तो मान ही लेते हैं कि हाँ स्मोक करेंगे ही. बार बार कहना क्या पेस्टरिंग हो जाएगा, क्या कह सकते हैं? मतलब कई बार, क्योंकि ये भी लगता है कि कहीं हम उनके पीछे ही पड़ गए हैं कि स्मोक नहीं कीजिए, स्मोक नहीं कीजिए. व्हाट टू डू, पेरेंट या एक जो फैमिली है उसकी काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए कि वो स्मोकिंग को छोड़ पाए?
2: एक तो कहते हैं कि उनको स्कोल्ड करना वो अच्छा नहीं है, जैसे कि ना कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, जैसे आए डांटना शुरू कर दो ना, बात करना बंद कर दो, तो ये चीज इतनी काम नहीं करती है. हमको उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा कि भी हम आपके साथ हैं. ये छोड़ना तो जरूर है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है कि भी 100% छोड़ना है, परंतु हम आपको उसमें पूरा पूरा सपोर्ट देंगे. और फिर अपनी बात को उनके सामने रखे, उनको समय प्रति समय अगर अलग अलग तरीके से ये स्पष्ट किया जाए, कुछ ऐसे अच्छी बुक्स है तो वो घर में ला दो, पिक्चर्स भी इफेक्टिव होते.
1: डी एडिक्शन की जहां बात करते हैं स्मोकिंग की, उसे वो मानते ही नहीं है कि डी एडिक्शन की जरूरत है. बहुत ज्यादा बार लोग यही कहते हैं कि हाँ,

0: सकते हैं। एक है बिहेवियरल लेवल चेंज, यू नो, जो बिल्कुल ही ग्रॉस लेवल पर है कि आज, यू नो, आज से हम इतनी ही पियेंगे या हम पैकेट नहीं खरीदेंगे, एक एक करके लाएंगे। ये जो बिहेवियरल लेवल पर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह वो आदत हमारे से छूट जाए। दूसरे लेवल पर जो चेंज होता है वो है इंटेलेक्चुअल, कि मेडिकली क्या नुकसान है, फिजिकल क्या नुकसान है, तो इंटेलेक्ट को टैप किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए, कहीं वो मुझे ट्रिगर कर दे। तीसरा है इमोशनल लेवल चेंज, यू नो, फैमिली मेंबर्स कहते हैं मेरे लिए छोड़ दो, हमारा इतना नुकसान हो रहा है, बच्चे कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं कि कहीं इमोशनली वो गिव अप कर दे अपनी आदत को। अब ये तीनों प्रकार के जो चेंज है, बिहेवियरल लेवल, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल, ये टेम्पररी चेंज है, किसी में परमानेंट हो भी सकते हैं, लेकिन इनका रिलैप्स होना बहुत कॉमन है कि यू माइट गो बैक टू योर ओल्ड। जो रूट परमानेंट चेंज है उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज, कि बिल्कुल अंदर से आपने उस चीज को स्वीकार किया, सिर्फ मेडिकली नहीं, सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ धीरे धीरे से छोड़, अंदर से आपकी कॉन्शियसनेस को वो समझ में आ गई जब वो बात, तब फिर वो कोई आपको कहे या कोई आपके सामने सारी ऑफर भी करे, यू विल नॉट गो बैक टू इट व्हेन दैट चेंज कम्स फ्रॉम इनसाइड। सो देयर विल बी एन एंटायर शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस, और इसको एक ही थॉट लगता है, इट्स बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है आप 10 साल से ट्राई कर रहे हो, लेकिन जब वो होना होगा, जस्ट वन थॉट, जस्ट टेक्स वन थॉट, एब्सोल्युटली। और ऑफकोर्स आप मेडिटेशन अगर सांस में करते हैं, आप अगर इस तरह के वायुमंडल में आते हैं जहां सारे बहुत पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, जहां आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद पहले स्मोक करते थे, उन्होंने कितनी इजीली गिव अप किया,
1: और इनफैक्ट ऐसे लगता है कि इट इज पॉसिबल। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं एक्चुअली, वहां लगता है कोई भी बात करना, जैसे हम बातें भी करते रहे हैं तो ऐसे लगता है, ज्यादातर हमें ईमेल्स भी आते हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छी तो बहुत लगती है बातें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो ऐसी जगह पे अगर आप जाएंगे जहां दिख रहा है कि वो संभव हुआ हुआ है, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प।
0: जहां आपका पीयर प्रेशर वो होगा जो स्मोक नहीं करता, यू नो, कहीं ना कहीं वो संघ की भी तो आवश्यकता है, जिन्होंने, जिसमें से आपको कई ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत, यू नो, चेन स्मोकर्स थे, उन्होंने कैसे गिव अप किया, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाता है। एंड अगेन सेकंड थिंग, वो जो अति इंद्रिय सुख है, जब परमात्मा से संबंध जुड़ता है तो वो जो सुख मिलता है उसका लेवल इतना हाई होता है, और हमें तब पता चलता है कि अगर हम स्मोकिंग या कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं तो मेरे वो ब्लिस में वो लीकेज है, देन आई काइंड ऑफ प्रायोरिटाइज कि मुझे क्या चाहिए,
1: एंड देन आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड।
0: तब तो कोई भी चीज छूट सकती है एक क्षण में, फॉर दैट हायर सोर्स ऑफ पावर एंड लव, तो वो एक क्षण में छूट जाती है, डजंट टेक टाइम एट ऑल।
1: जहां परमात्मा के साथ वो सब कुछ मिलने लग गया, एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, यू गेट इनटू दैट कनेक्शन, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग
2: एल्स एज वेल।
1: एक्चुअली वो नशा सबसे सुंदर, सबसे बड़ा नशा हो जाता है। और कुछ छोटी छोटी युक्तियां हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें?
2: तो मैं ये चाहता हूं कि पावरफुल मोटिवेशन डेवलप करना चाहिए, और आज ही छोड़ो, किसी समय ये नहीं सोचो कि बेन मैं 5 साल के बाद छोड़ूंगा, 10 साल के बाद छोड़ूंगा, तब तक बहुत देरी हो गई होगी। इतना हो सके आज ही जल्दी से सोचो, एक निर्णय करो कि मुझे पूरी तरह से इस व्यसन पर विजय प्राप्त करना है। फिर और आगे के स्टेप्स भी हो सकते हैं कि जो पहले भी मैंने कहा कि एक डेट डिसाइड करो, मे बी 10 दिन 15 दिन के बाद की डेट, कि इस दिन से 100% मैं छोड़ दें, और सभी को बताओ, अपने तक सीमित नहीं रखो,
1: और इमेजिन करने लग जाओ कि छूट गया,
2: छूट गया, ये भी ठीक है। हाँ। परिवार में भी बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि सभी को पता होगा तो उससे भी आपको एक फोर्स मिलेगा, अंदर में मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, पीयर प्रेशर भी सबको पता है मुझे यह छोड़ना चाहिए। और जब जब भी इच्छा हो, इसमें भी कुछ युक्तियां जो काम करती है कि जब भी आपको इच्छा हो तो यह प्रश्न पूछो कि क्या मैं और आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं। 99% जवाब मिलेगा कोई बात नहीं, आधे घंटे में मृत्यु नहीं होनी है। आधे घंटे के बाद फिर से पूछो कि भी क्या और कोई आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं, या तो और 10 मिनट नहीं रुक सकता हूं, जितना, और 5 मिनट नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि कई बार अर्ज खत्म हो जाती,
1: मुझे
2: इस क्षण, हाँ, इस क्षण
1: उसको अगर हम उसी वक्त थॉट बदल दें तो शायद वो,
2: या तो पोस्टपोन भी कर दो। आपने 5 मिनट भी पोस्टपोन कर दिया, हो सकता है दूसरा 1 घंटा भी आप रुक सकते हैं। और जब अब ऐसे 2-3-4 घंटे के बाद आपको लगे कि

0: संभव है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, तो तब अपने पास एक भी सिगरेट नहीं रखो। आपने अपने पास रखी तंबाकू कुछ भी नहीं तो तुरंत ही आप ले लेंगे, परंतु जब ऐसा इम्पॉसिबल लगे दिन में तो स्वयं जाकर के वह एक सिगरेट खरीदो, बच्चों को नहीं भेजो, सर्वेंट्स को भी नहीं भेजो, नहीं तो वह आपकी आदत और बढ़ेगी। जाओ एक ही सिगरेट खरीदो और वह भी दूसरी ब्रांड की, आप जो पीते वही नहीं, उससे कोई दूसरी ब्रांड की सिगरेट एक खरीदो, क्योंकि उसकी जो टेस्ट है वो उसका अच्छा नहीं होगा, उसके कारण वह आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। और फिर बस आधी ही सिगरेट पियो, पूरी भी जरूरत नहीं है, आधी सिगरेट से भी जो आपको क्रेविंग हो रही है, विड्रॉल्स हो रहे हैं, वह खत्म हो जाएंगे। ऐसा अगर व्यक्ति कोशिश करे तो पहले दिन से ही वह 5% या तो 2% पे भी आ सकता है। और एक बहुत ही जो अच्छे न्यूज है सिगरेट छोड़ने के, कि जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हो 2 घंटे में फायदा होना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे क्या फायदा, तो सबसे पहले तो यह है कि भी आपने सिगरेट छोड़ी तो 3-4 घंटे में ही आपकी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप गहरा सांस ले पाते हो ना, तो उसके कारण आपको अच्छा लगता है। और कुछ दिन बीतते हैं तो टेस्ट अच्छा आने लगता है,
1: रियल टेस्ट आने लगता है।
0: खाने का पहले टेस्ट नहीं होता था। ब्रह्मा कुमारीज में हम विशेष रूप से भी व्यसन छोड़ने के लिए कुछ कैंप्स लगाते हैं, तो स्मोकर्स का एक बार कैंप लगा था, तो वहां पर 8 दिन तक सभी आए और फिर वापस गए। वापी से गुजरात में एक स्थान है, वहां से कुछ भाई आए थे कि जो सिगरेट पीते थे, तो एकाध मास के बाद वह सेंटर पर गए और ब्रह्मा कुमारी बहन को कहा कि देखो बहन जी, आपने हमको वह शिविर में वहां माउंट आबू में भेजा, उसे चलो ये तो फायदा हुआ है कि हमारी सिगरेट छूट गई, परंतु और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ क्या, कि अभी खाना टेस्टी लगने लगा।
1: हमारा टेस्ट वापस,
0: पहले खाने का टेस्ट का ही हमें पता नहीं था, तो ऐसे सचमुच बेनिफिट्स है वो फर्स्ट डे से ही होने शुरू हो जाते हैं।
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, आज जो एक हमने खास उस व्यसन, उस एडिक्शन की बात की थी, जिसे हम आज के दौर में एडिक्शन ही नहीं मान रहे, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे परिपेक्ष में वही सबसे ज्यादा खतरनाक पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और हम इंडिविजुअल्स के लिए भी होता जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिगरेट को यूं जलाकर फूंकना और फिर कई तरह के आजकल हमारे जो पूरी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसे स्वीकारते आ रहे हैं। आज चाहे मैं खुद स्मोक करता हूं या मेरे परिवार में कोई स्मोक कर रहा है, पहली बात, पहला जो स्टेप आज हम लेंगे वो ये कि उसे स्वीकारना बंद कर देंगे, बदलाव की तरफ जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे आज हमारी बातचीत रही कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो तय करके आज से ही उसे छोड़ देना है और फिर एक ऐसा विल पावर, एक ऐसी जो आत्मशक्ति है उसे पहचान कर, जो हमने खुद की पहचान की बात की है, जो मेडिटेशन की बात करते आ रहे हैं हम, तो आज वक्त आ गया है कि हम उसे खुद टेस्ट करें कि क्या सचमुच हम उस विल पावर को अपना पाए हैं इस पूरे सफर में। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

रोज क्लब में उसका मिलना, देकर हाथ हाथ में चलना। रोज समुंदर

से चुलाऊं, हर एक उसे उठाऊं, आतरी से भी उतारूं, इसे नहलाऊं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया।

0: किसी ने एक लाइन बोल दी, इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, कम खाओ धीरे खाओ। चलिए आज मैं आपसे इस विषय पर अपना चिंतन शेयर करूंगी। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, लेकिन इसका रियल अर्थ क्या है? चलिए आज हम इस पर गहराई से सोचते हैं, सुनते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम सोचो धीरे सोचो का गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ है। यह वाक हमें संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल

0: मैं समझती हैं। सबसे पहले कम खाओ, धीरे खाओ, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या उपयोग हैं? इसे हम अपनी जीवन शैली में कैसे उतार सकते हैं? कम खाओ, इसका रियल अर्थ है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ना कि लालच या स्वाद के लिए। अधिक खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखता है। संयमित भोजन आयुर्वेद और योग में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं धीरे खाने का क्या फायदा है। भोजन को शांति और ध्यान पूर्वक ग्रहण करना माना भोजन को धीरे धीरे खाना। भोजन को धीरे धीरे चबाने से पाचन बेहतर होता है। इससे शरीर को अधिक पोषण मिलता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। भोजन को आनंद और कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे विषय पे बात करते हैं, कम सोचो धीरे सोचो। इसके क्या फायदे हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है? कम सोचो, अनावश्यक चिंताओं और विचारों में ना उलझें। अति सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है और मन अशांत रहता है। जीवन में सरलता और संतोष रखना मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। फालतू और नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मकता को अपनाना ही कम सोचने के फायदे हैं। अब चलिए जानें धीरे सोचो का अर्थ और उसके फायदे। धीरे सोचो माना विचारों को संतुलित और धैर्य पूर्वक रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि धैर्य पूर्वक सोच विचार कर करें। मन को स्थिर और केंद्रित रखना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आवश्यक है। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं तीसरे विषय में, कम बोलो धीरे बोलो। इसके फायदे और इसका अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक बोलना कभी कभी समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए सोच समझकर और मितभाषी बनकर बोलना चाहिए। धीरे और शांति से बोले गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। इससे संवाद बेहतर होता है और हम दूसरों को अधिक सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाक्य हमें संयम, धैर्य और संतुलित जीवन जीने की सीख देता है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम बोलो धीरे बोलो, कम सोचो धीरे सोचो, एक गहरी जीवन शैली से जुड़ी सीख है जो संतुलन, धैर्य, आत्मसंयम की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।

पकवा से सब पकवा। सब पकवा से सब पकवा। बालू मेहता जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत यहाँ ताकत ही सही सब बकवा। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए हम उसे सख्त सख्त सजा।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Aapka being bliss ka swagat.
2: Thank you so much.
1: Last time hum baat kar rahe the ki kaise apni energy deplete ho jati hai aur hame kaise conserve karna hai apni energy. हम सोते भी हैं तो दिमाग चलता रहता है, थॉट्स चलती रहती हैं। जैसे आपने नलके का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे अपने जैसे बॉम्बे में तो टाकियों में पानी आता है, घर के ऊपर छोटी छोटी टाकी होती है, फ्लैट्स में तो नल खुला रह जाए तो सारे के सारे टाकी खाली हो जाती है। उसी तरह हमारी भी एनर्जी विद और विदाउट आवर नॉलेज,
2: कांट से विद और विदाउट आवर नॉलेज, इट्स विद और विदाउट अवेयरनेस।
1: अच्छा,
2: इन इफ आई एम थिंकिंग एक घंटा बीत गया एंड ऐसे ही सोच रहे हैं, सोचते जा रहे, अवेयर ही नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसा सोच रहे हैं, क्वालिटी।
1: उस समय ये चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, मन?
2: हाँ, मन। आपने कहा जब हम सोते हैं तो दिमाग चलता है ज्यादा, दिमाग नहीं, मन। हमने क्या किया, मन और दिमाग में थोड़ा सा, मतलब कहीं भी किसी भी दोनों को यूज कर लिया। दिमाग थॉट्स नहीं क्रिएट करता है।
1: हाँ, लेकिन कैजुअली जब बात करते मेरा दिल कहता है, मन कहता है,
2: राइट।
1: आपने कहा था थॉट्स के बारे में अवेयरनेस, मैंने अवेयरनेस की तो अवेयर करते करते करते वो स्लिप हो जाता है।
2: कोई बात नहीं, जर्नी हो।
1: कभी याद आता है कि यार मैं तो अवेयरनेस करने बैठा था और कहाँ पहुंच गया।
2: इट इज लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक मदर है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस माँ ने घर का भी पूरा काम करना है और बच्चे को भी संभालना है। उसके पास कोई हेल्प नहीं है, घर में और कोई नहीं है, ध्यान रखने के लिए भी नहीं है, घर का काम करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे होगा ना घरों में। अब ये माँ क्या करेगी, बच्चे को उस क्रेडल में पालने में डाल देगी, पूरे घर में जाएगी काम करते हुए, सारे काम करेगी घर के, लेकिन सब काम करते हुए उसकी अटेंशन किस पे होगी,
1: बच्चे के रोने पे या आवाज पे।
2: मतलब एक नजर वहां, नजर मतलब मन की नजर, और दूसरा बाकी सारा ध्यान काम पर। लेकिन प्रायोरिटी में कौन ऊपर होगा, बच्चा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस। दिस इज वेरी क्लियर फॉर द मदर। वो ये नहीं कहेगी बच्चे का ध्यान रखो तो घर निग्लेक्ट कर दूंगी, घर का काम करो तो बच्चे का मैं ध्यान नहीं रख सकती। नो, शी हैज टू डू बोथ द थिंग्स, दैट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा, सेकेंड घर का काम। कैन शी डू इट?
1: शी कैन। और आपकी बात सुनते सुनते पता मेरा एक्टर का इमेजिनेशन क्या चल रहा है, मैं विजुलाइज कर रहा था एक सीन, एक गांव की औरत हाथ में गोद बच्चा, बच्चे को कुछ खिला भी रही है और सर पे मटका पानी का भी है,
2: ब्यूटिफुल,
1: और मटका भी देख रही है,
2: yes.
1: बच्चे को कुछ खिला पिला बात भी कर रही है,
2: ब्यूटिफुल,
1: और खुद भी चल रही है, सारा कुछ बैलेंस भी कर रही है,
2: right.
1: और ये भी देख रही है कि
2: सड़क बात भी कर सकती है जो उसके साथ भी और ऐसे लोग चल रहे हैं।
1: हाँ, ये भी साथ देख रही है कि गाड़ी भी कोई आए आगे से, या बैलगाड़ी या साइकिल कोई टकरा ना जाए, सारा कुछ अवेयरनेस है उसका,
2: सारा कुछ करते हुए। लेकिन सब चीज में उसकी प्रायोरिटी पे नंबर वन कौन है?
1: नंबर वन बच्चा।
2: बच्चा सपोज मटका है सर पे,
1: भले गिर जाए, बच्चे नहीं गिर जाए,
2: क्लियर,
1: खड्डा आ गया, समझो,
2: दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ,
1: समझो, आगे खड्डा आ जाए, वो बच्चा संभालेगी, मटका गिरने देगी,
2: क्लियर, कम्प्लीटली क्लियर। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। नंबर वन बच्चे का ध्यान, सेकंड सारी चीजों का ध्यान अपना। अब वो कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं, हम में से किसी को भी ये करना पड़े तो हम कर सकते हैं।
1: मन को बच्चा बना दिया,
2: वो है,
1: उसको दुश्मन बना के रखा था, इतने सारे एपिसोड हो गए और मैं कोसता था।

0: एंड उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर वन को बच्चा द चाइल्ड मतलब मेरा मन सब कुछ करना है एक नजर यहाँ सब ठीक है थॉट्स कैसे चल रहे हैं इसने रोना तो नहीं शुरू किया रोना मतलब थोड़ा भी ऐसा क्यों ऐसा क्या क्यों हुआ मेरे साथ ये अब माँ के लिए बच्चा इधर है काम वो सारा कर रही है बहुत काम है उसके पास करने के लिए लेकिन अगर बच्चा रोने लगे तो माँ क्या करेगी जो काम वो कर रही है वहां से हटकर एक मिनट के लिए उस बच्चे के पास जाएगी चुप कराएगी वापस काम पर अगर उस माँ ने उस समय वो एक मिनट नहीं निकाला तो बच्चा रोता रहेगा सपोज माँ कहे मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे की तरफ देखने के लिए मैं काम करने में बहुत बिजी हूँ बच्चा रोना बंद नहीं करेगा रोता जाएगा रोता जाएगा रोता जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये काम कर रहे हैं जब तक ये माँ काम से एक मिनट के लिए ना हटे और उस बच्चे को बस एक मिनट ऐसे कर दे प्यार से जाके बच्चा चुप हो जाएगा ना तो चॉइस है कि वो एक मिनट कब निकालना है जैसे ही रोने लगे उसी टाइम निकाल दो क्यों एक घंटा वेट करने के बाद वो एक मिनट निकालना है कितना रो देगा बच्चा उतनी देर में उसकी कितनी एनर्जी गई जैसे ही मन थोड़ा सा भी रोने लगे ऐसा क्यों ऐसा क्या ऐसे विड्रॉल दिस इज विड्रॉल तो जैसे एक माँ बच्चे पर ध्यान रखते हुए सारा काम कर सकती है अब हम भी अपने जीवन में सारा दिन में सारा काम करेंगे सारी जिम्मेवारियां उठाएंगे लेकिन एक नजर बच्चे पर और अगर ये बच्चा रोने लगे मतलब ये इधर उधर की ऐसी दर्द वाली थॉट्स क्रिएट करने लगे उथल पुथल या हलचल थोड़ी सी होनी शुरू हो जाए तो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे एक मिनट के लिए विड्रॉ कर लें और विड्रॉ करके वो जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रिजोल्व कर दें क्यों हुआ क्या हुआ कैसा हुआ ऐसे नहीं आंसर कर दें इन क्वेश्चंस को टेक आउट दैट लिटिल वन मिनट ऑफ टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी से नो दिस इज यू नो इट डजंट साउंड वेरी हाउ आर यू सपोज टू डू दिस दिस वर्क्स आपका मन रोने लगा है उसने कुछ कुछ कुछ बोलना शुरू किया है विच इज क्रिएटिंग डिसकम्फर्ट डोंट कीप रिमेनिंग बिजी डूइंग वर्क आउटसाइड एंड सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ थिंकिंग दैट दिस क्राइंग इज नेचुरल इसका ये इस तरह से अंदर रोना तो नेचुरल है जितनी देर रोता रहेगा उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है टेक आउट दैट वन मिनट अपने मन में जो बातें चल रही हैं उसको आंसर कर दो और कोई भी आंसर अगर नहीं मिले सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम है चिंता है उसका अभी आंसर नहीं है तो कम से कम उस मन को ये इंस्ट्रक्शन तो दो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ हम दो घंटे के बाद इसके बारे में सोचे
1: कितना इजी कर दिया आपने जब से आपने इसको बच्चा बोला ना मेरा ध्यान ऐसे ही जा रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को कैसे पालता हूँ कि बेटा ये गलत काम है नहीं करना और छोटा होता नो नो नो बेटा हाथ जल जाएगा दिए के पास नहीं जाना पूजा करो ये आरती है नमस्ते करना है उसमें आग में हाथ नहीं लगाना बच्चा और बड़ा हुआ तो बेटे स्कूल में ये सब नहीं करना और बड़ा हुआ मतलब ऑल द टाइम जैसे बच्चे की तरह कितना सुंदर है और यही कल मैं इसको डांट रहा था मेरे मन को अपने आप को कोस रहा था बहुत अपने आप को गिराया मैंने बोला घटिया घटिया बातें तो याद करता तेरे साथ इतनी अच्छी बातें वो नहीं देखता है इसकी भी बुरा सोचता तो कितना ये है तो कितना वो है कुछ नहीं किया लेकिन जैसे बच्चा बोला ना एक रिलेशन बन गया उससे मन का
0: ये जो आपने कहा ना प्यार से करना बेटर लग रहा है कोसना दबाना कंट्रोल करना सप्रेस करना वो मेथड वर्क नहीं करेगा
1: बच्चों से भी करते हैं
0: ये हम सबके साथ लेकिन क्योंकि जब हम लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं किसी के मन के साथ डील कर रहे हैं ना हम किसी के मन के साथ ही तो डील कर रहे हैं कानों के साथ आंखों के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं हम हरेक के मन के साथ डील कर रहे हैं और हरेक का मन मेरा मन भी और मेरे आसपास जितने हैं सभी का मन आज थोड़ा सा चंचल है चंचल मींस वो बच्चा जिसको कभी सिखाया ही नहीं कि सही क्या गलत क्या कब उठना कब बैठना अब एक ऐसा बच्चा देखो जिसकी पेरेंटिंग में उसको सिखाया ना गया हो कि कैसे बोलना है कैसे चलना है सिखाया नहीं ऐसे ही हमने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी सिखाया ही नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है कब सोचना है कितना सोचना है किस बारे में सोचना है मेरे मन को किसने सिखाया
1: बोया हुआ बच्चा था सिस्टर मालूम ही नहीं था ना अभी तक कि वो मेरा बच्चा है
0: तो सिखाया नहीं तो अब जब किसी बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए तो बच्चे की गलती बोलेंगे
1: नहीं
0: तो कहते देखो इसके पेरेंट्स ने इसको कुछ नहीं सिखाया
1: चलिए ये

0: एपिसोड देख के आपका अब बात करके सिखाना शुरू करते हैं।
1: तो अब हम जब बोलते हैं ना मन बहुत चंचल है, मन मेरा है, मेरा बच्चा है, इवन अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, चंचल है, अभी मेरा कहना नहीं मान रहा है, इवन अगर ये है, लेकिन उसको प्यार से परिवर्तन करना और एक सही तरह से जीने का तरीका सिखाना, ये मेरा मन है। और जितना मैं अपने मन, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, जितना मैं अपने मन को सही तरह से ये पेरेंटिंग करके कर लूंगा, मुझे विधि आ जाएगी कि सबके मन के साथ कैसे करना है। क्योंकि ये मन हर एक के पास सेम ही है, सेम है, मन है सबका।
0: एक नया तरीका मिल गया, मतलब दूसरे के दूसरे को भी उसके मन को बच्चा देखो।
1: हाँ।
0: ये इसका बच्चा, ये मेरा बच्चा है।
1: और बच्चा ही नहीं, सिर्फ एक चंचल बच्चा है जो उसका भी आजकल कहना नहीं मान रहा है।
0: हाउ स्वीट।
1: तो यू नो इट्स लाइक अगर आप किसी और पड़ोसी के पास जाओ और कहो आपका बच्चा देखो कितना तंग करता है, और वो पेरेंट बोले क्या करो, मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता है, आप ही मेरे बच्चे को संभाल लो, संभाल सकते हो। तो आज हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, उनका अपना जो बच्चा है ना, वो उनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो लेट्स नॉट बी वेरी हार्श विद देम, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका मन अभी उतना संयम में नहीं चल, संयम इन द सेंस अपनी चॉइस से नहीं चल रहा है कि जो सोचे जितना सोचे। लेट्स नॉट बी हार्श विद पीपल। जो आपने कहा कंट्रोल अगर करा, सप्रेस किया,
0: कोसा,
1: इट डिडंट वर्क ना, प्यार वाला मेथड वर्क करेगा ना, तो वो ही मेथड मेरे मन के साथ भी वर्क करेगा। एंड इम्पोर्टेंट है जो मेथड मेरे मन के साथ वर्क करेगा वो सबके मन के साथ वर्क करेगा।
0: आपका मतलब ये है कि जो एक बच्चे के साथ मन करेगा सब बच्चों के साथ,
1: फाइनली सब बच्चे हैं और सब बच्चों को सेम चीज अच्छी लगती है,
0: इसलिए प्यारी प्यारी टीचर सब बच्चों को अच्छी लगती है।
1: यस एब्सोल्युटली। और वो जो टीचर प्यार करती है, जो पेरेंट प्यार करता है, बच्चा उनका कहना मानना चाहता है, मानना पड़ता है नहीं। एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना पड़ता है, एक है मुझे इस टीचर का कहना मानना अच्छा लगता है, क्योंकि ये टीचर मेरे फायदे के लिए बोल रही है, बट इट्स कमिंग विद द राइट एनर्जी,
0: मानकर खुश हूँ,
1: अच्छा लगता है, कंफर्ट फीलिंग। क्यों? दोनों टीचर बात वो ही कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी कौन सी दे रहे हैं करने के लिए, एक है नेगेटिव एनर्जी, एक है प्यार वाली एनर्जी। जो एनर्जी कंफर्टेबल होगी वो बात अच्छी लगेगी। तो अब पहले इम्पोर्टेंट प्यार से करना है वो तो ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों काम कर लेंगे, कि बच्चे का ध्यान रखते हुए अपना जीवन संभालेंगे पूरा, बाकी जिम्मेवारियां संभालेंगे। एंड उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? आज अगर हम किसी से भी पूछें व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, कहेंगे वर्क। अच्छा, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो जो लिस्ट है,
0: जैसे उस स्कूल में 5 साल की बच्ची ने बोला था ना,
1: yes,
0: कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो,
1: व्हेन यू ग्रो अप, ग्रो अप, शी सेड हैप्पी,
0: शी सेड मैं हैप्पी बनना चाहती हूँ,
1: राइट right.
0: तो बोले तुम्हें सवारी समझ में नहीं आया,
1: समझ में नहीं आया। तो आज हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिले दिल्ली में, एंड ही वर्क्स फॉर 14-15 आवर्स इन सम रिसर्च लैब एट अ वेरी हाई पोजिशन इन दिल्ली, एंड एक्चुअली वो काउंसलिंग करते हैं और लोगों की। तो मेरे को लेकिन उनके चेहरे पर लगा कि थोड़ा सा बहुत खुशी नहीं है, यू नो इट वॉज मोर टूवर्ड्स लिटिल डिप्रेशन साइड। लाइक सर आप थोड़ा टाइम निकालो, ऑफिस आते जाते समय थोड़ी देर आप मेडिटेशन सेंटर पे आओ, 10 मिनट बैठकर फिर आप ऑफिस आ जाओ। फर्स्ट इमीडिएट आंसर, टाइम नहीं है। 10 मिनट्स टाइम सिर्फ, कभी भी मॉर्निंग इवनिंग, ही सेड 14 आवर्स आई स्पेंड हियर इन दिस रिसर्च लैब। जो थोड़े से घंटे बचे वो परिवार के लिए, इन सब चीजों में अपने लिए टाइम निकालना नॉट पॉसिबल। ड्राइविंग टाइम दिल्ली में 2 आवर्स, 1 आवर ईच वे, इस सब में सिस्टर अपने लिए नहीं टाइम निकल सकता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बन गई? वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। एंड क्योंकि वर्क एंड फैमिली इतना टाइम ले रही है कि हम सेल्फ तक तो पहुंचे ही नहीं, ये प्रायोरिटी लिस्ट ओनली वॉज नॉट राइट। अब वर्क पे टेंशन है, तनाव है, तो जब सेकंड फेज पर आए फैमिली पर, तो सारा हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। शाम को हम अपना सारा तनाव घर पे लेकर आ गए, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं था। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है हमें? इस लिस्ट को

0: upside down. Self, family, and then work.
1: जब self से start हुआ तो beginning
0: बिल्कुल
1: selfie से तो है हम
0: everything every and इसमें ये नहीं है कि
1: ये
0: self को 14 घंटे देने हैं फिर it's not about time it's about priority and attention.
1: अगर ये सब गाड़ी है मेरी तो self starter को self को तो कुछ तो ध्यान
0: and most important ये अगर गाड़ी है लेकिन driver यहाँ है ड्राइवर पहले स्टार्ट करेगा हर चीज को फिर गाड़ी उस तरह से चलेगी फिर यात्रा उस हिसाब से होगी सारे दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट हैज टू बी वेरी क्लियर अगर मैं ठीक मैं इन कंट्रोल फिर मेरे परिवार में रिश्ते अच्छे ऑटोमेटिकली
1: सेल्फ कंट्रोल
0: सेल्फ कंट्रोल अब अगर परिवार में रिश्ते अच्छे फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल कैसी होगी अब फिर जब मैं घर से ऑफिस इस स्थिति में जाऊंगा तो मेरा ऑफिस में काम करने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा शाम को घर आऊंगा तो परिवार को भी अच्छी एनर्जी दूंगा दिस होल बिकम्स अ साइकिल अब जैसे हमने देखा सपोज बच्चा एक मिनट के लिए रोया तो विदड्रॉ फ्रॉम योर वर्क फर्स्ट टेक केयर ऑफ द माइंड दिस इज प्रायोरिटी लिस्ट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है रिस्पॉन्स अबिलिटी
1: ओहो
0: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: हाउ टू रिस्पॉन्स
0: हाउ टू रिस्पॉन्ड राइट वे इज द The ability to respond in the right way is responsibility.
1: Beautiful.
0: इसके बाद हमारी बाकी बातें आती हैं सारे तो सबसे बड़ी responsibility, या सबसे important responsibility, the ability to respond the right way in every situation. This is my first responsibility.
1: ये awareness ही आएगा ना जो हम बात शुरू से कर रहे थे छोटे बच्चा उसका बच्चा रो रहा है या नहीं
0: right.
1: सर पे मटका सारी चीज फाइनली आती अवेयरनेस
0: अवेयरनेस में भी अब अवेयरनेस है लेकिन अब प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि जैसे आज लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है तो कौन सिखाते हैं हमें प्रायोरिटी लिस्ट बना लो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ना प्रायोरिटी लिस्ट बना लो प्रायोरिटी के वाइज करते जाओ जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में स्व की स्थिति को नंबर वन पे रख दो अब हम जैसे सेंटर पर है या बड़ा हेडक्वार्टर है कैंपस है बड़े इवेंट्स है कई बार लोग कहते हैं वो आश्रम में इनको क्या पता है इनके पास क्या काम है करने के लिए जितनी एक्टिविटी सेंटर पे होती है या हेडक्वार्टर पे होती है वो किसी ऑफिस में नहीं होती
1: कौन ऐसे आश्रम कहता है मैं देख के आया ना
0: हाँ।
1: वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी कई सारी यूनिवर्सिटीज मिलाकर है ये लाखों
0: राइट अब आप देखो मैंने जैसे देखा है बाहर
1: चेन ऑफ स्कूल्स
0: हाँ बाहर आप देखो कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो 6 महीना तैयारी चलती है इवेंट ऑर्गेनाइज करना है एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है हमारे पास माउंट आबू में हर वीक एक कॉन्फ्रेंस है एवरी वीक 4 डेज इज अ कॉन्फ्रेंस जिसमें लगभग 1000 कई बार 5000 और जो दूसरी एनुअल रिट्रीट्स होती है तो 20,000 4 डेज वो रहते हैं फिर 3 डेज मिलते हैं उनका जाना साफ सफाई सब होना एंड नेक्स्ट ग्रुप का आना वो 3 डेज एंड फिर नेक्स्ट 4 डेज वो कॉन्फ्रेंस अब ये चल रहा है इवेंट आफ्टर इवेंट आफ्टर इवेंट छोटी बात नहीं है ये छोटा काम नहीं है बहुत काम है लेकिन इसमें हमें जो मेडिटेशन क्या सिखाती है सब कुछ करना है और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक करना है ऐसे भी नहीं कि ऑफिस 10 बजे पहुंचना है हमारी दिनचर्या शुरू नहीं सुबह 4 बजे काम खत्म होगा 10-10:30 बजे सब कुछ करना है लेकिन सब करते हुए अटेंशन स्वस्थिति ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम करने में आप इतने वो हो जाओ ऑक्यूपाई हो जाओ कि आप गुस्सा भी कर दो ईगो क्लैशेस भी आपके होने लगे प्रॉब्लम भी आ जाए तो उस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं जो सेवा करने से आपकी स्थिति डिस्टर्ब हो गई वो सेवा करने का कोई फायदा नहीं है पहले स्थिति पर ध्यान रखते हुए सेवा करें तो सफलता है क्योंकि वाइब्रेशन यू नो टुडे व्हेन वी से सक्सेस ऑफ एनी इवेंट एनी प्रोग्राम हम कहते हैं स्टेज अच्छा था हॉल अच्छा था लोग टाइम पर आए डेकोरेशन अच्छी थी प्रोग्राम अच्छा पूरा हो गया

0: ऑडियंस बहुत अच्छी थी, परमात्मा प्रायोरिटी लिस्ट को बहुत क्लियर करता है, स्थिति अच्छी थी सबकी, वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हुई, तब सफलता है।
1: थोड़े दिन पहले जब मैं माउंट आबू गया था देखने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला, उसने मुझे सब कुछ घुमाया फिराया, सब जैसे मिठाई खिलाई, ये किया, तो मुझे उसने एक किस्सा सुनाया। कहने लगा कि दादी ने मुझे कहा कि हमारे गेस्ट आए हैं लंदन से, इनको घुमाओ फिरो और पूरा कुछ दिखाओ। तो बड़ी खुशी से मतलब दादी के पास गए, देखिए मैंने उनको यहाँ घुमाया, ये किया, वो किया, लंच खिलाए, इनको जाते जाते मिठाई पैक करके दी, आप प्लीज पूछ लीजिए उनको। बहुत खुश होके गए, मैं तो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट तक छोड़ आया उनको। अच्छा, तो दादी का जवाब क्या था मालूम है? मैंने उनको ये नहीं कहा कि तू उनको खुश करो, तुम खुश होकर उनको ये सब दिखाओ।
0: हाउ ब्यूटीफुल,
1: तुम खुश होकर, खुश रहते हुए, खुशी की स्थिति में ये सेवा करो।
0: दिस इज इट एंड दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ। सब कुछ करो, सारा दिन करो और सारी जिम्मेवारियां उठाओ, लेकिन खुश रहकर करो, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट स्थिति, फिर सारा काम। अब अगर कहीं भी अगर अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, आई विल फर्स्ट विदड्रॉ, टेक केयर ऑफ दिस एंड देन डू एवरीथिंग। ये सक्सेस है। आज अगर हम पूछे व्हाट इज सक्सेस, आप सफल हैं जीवन में, डू यू काउंट योर सेल्फ एज सक्सेसफुल, देन सक्सेसफुल इज द वन जिसकी मन की स्थिति शक्तिशाली, खुश और शांत है,
1: स्टेबल
0: स्टेबल स्ट्रांग पावरफुल, जिसका अपना मन कंट्रोल में नहीं, उसको सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? भले बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 देशों में बंगले हैं, मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हम कहें आई एम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सफलता की डेफिनेशन चेक करनी है एंड विच दिस मीन्स कि ये सब कुछ अक्वायर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट पर अपने को नहीं रखा था, सबसे पहले मन की स्थिति को नहीं रखा। सारा दिन में हम हर मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 to 30 थॉट्स इन वन मिनट, विच मीन्स माय
1: 25 to 30 थॉट्स
0: इन वन मिनट एवरेज मीन्स वेन वी आर इन अ नॉर्मल स्टेट।
1: 70 भी सोच सकते हैं,
0: अबाउट अप टू 45-50। अगर बहुत टेंशन है ना, एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी है किसी बात की, तो फिर इट कैन गो अप टू 45-50 थॉट्स। बियॉन्ड दैट जाएगा तो इट्स अ नर्वस ब्रेकडाउन, जो भी हो जाता है।
1: 3600 थॉट्स,
0: 3600
1: 60 into
0: अच्छा, पर एक दिन में
1: मैं एक घंटा सोचता था, 24 घंटे तो पता नहीं कितने
0: एक दिन में, बिकॉज काउंटिंग के 6-7 घंटे हम सो रहे हैं, जिसके अंदर स्पीड बंद नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी,
1: शायद
0: कम हो जाएगी कम्पेयर टू दिस 25 to 30, बिकॉज 25 to 30 थॉट्स पर मिनट इज इन द अवेक स्टेज। ये जो अवेक वेकिंग स्टेज है, 40 से ऊपर हो जाएगा व्हेन वी आर इन द टेंशन स्टेज, एंग्जाइटी। सो रहे हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर ड्रीम स्टेज में है 17 to 20 उस तरह से, और डीप स्लीप में जाएंगे 8 to 10 उस तरह, नेवर बिकम जीरो। वो एवरेज लेते हुए इट विल कम टू अबाउट 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। ये मेरी फैक्ट्री है, प्रोडक्शन 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे। अब आप कहें शुड वी बी अवेयर,
1: नहीं बट अगर समझो एक्चुअली इसको आप प्रोडक्शन कहें तो 50-60,000 समझो आप गारमेंट्स बनाए, उसमें से काम के थोड़े से निकले, बाकी का सारा रद्दी में फेंकना
0: पड़े, कैसा बिजनेस में
1: तो आउट ही हो जाएंगे बिजनेस से, घर गांव वापस जाना पड़ेगा।
0: हो रहा है ना, इतना बड़ा बिजनेस हाउस है, इतनी प्रोडक्शन है, लेकिन यूजफुल कितने हैं और रिजेक्ट कितने हो रहे हैं, सारे दिन में वेस्ट में कितने जा रहे हैं, तो बैंक्रप्सी हो गई ना, कहेंगे दिवाला निकल गया इसका, खुशी नहीं,
1: तो वेस्ट की दुकान लगानी पड़ेगी।
0: दिस इज अवेयरनेस, मैं मालिक हूँ, ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इंडस्ट्री।
1: आपकी जो बात आपने कहा ना कि मैं मालिक हूँ और मेरी ये रचना है,
0: right.
1: तो मेरी माँ हमेशा मुझे बचपन में कहती थी, बेटा यहाँ से लेके पांव तक ये तेरा जगत है और ये तेरा मन है ना, तो मन जीते पुत्र जग जीते।
0: ब्यूटीफुल,
1: तो मतलब तू मन को जीतेगा तो इस सारे जगत को, फिर बाकी के दूसरे,
0: फिर ये जगत को,
1: हाँ बाकी भी तो जगत ही है।
0: आपका परिवार आपका जगत है,
1: हाँ?
0: आपका ऑफिस

0: ऑफिस, आपका स्टाफ, आपका जगत है,
1: हमारे रिश्तेदार, सब कुछ जगत,
0: मीन्स आपकी दुनिया। लेकिन अब ये जो आपने लाइन बताई, हम सबने सुनी है ना बचपन से कि मन जीते जगत जीत, लेकिन करने के टाइम हम कहते हैं जग को जीत लें तो मन को जीत लेंगे, कि अगर जग मेरे हिसाब से चले तो मन बड़ा खुश रहेगा।
1: मन जीते जग
0: जीत, इक्वेशन रॉन्ग हो गई ना,
1: उल्टा ही हो गया ना
0: इक्वेशन।
1: नॉर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं साउथ पे,
0: अगर इक्वेशन रॉन्ग हुई, पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही बना दी, इक्वेशन थी मन जीते जगत जीत, हमने कहा जग मेरे कंट्रोल में हो, जग को जीत लो तो मन खुश हो जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, अब उसके बाद आप कितने भी पेपर्स ले ले ना, कई बार एग्जाम में हम क्या करते थे, फर्स्ट लाइन इक्वेशन रॉन्ग है, उसके बाद 10 पन्ने भर दिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है, क्योंकि आई टुक 10 मोर पेपर्स टू आंसर दैट होल क्वेश्चन। टीचर देखेगा भी नहीं ना वो 10 पेजेस को, फर्स्ट लाइन जब राइट नहीं तो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना जीवन में, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, एवरीथिंग, एफर्ट, अटेंशन, सब कुछ, लेकिन फर्स्ट लाइन रॉन्ग, तो कितने भी पन्ने भर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी टाइम और एनर्जी लगा दें उसके ऊपर, सोल्यूशन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो ये मंत्र पकड़ लेते हैं कि मन की स्थिति, जो मन मेरा है, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, उस बच्चे का प्यार से ध्यान रखते हुए, थोड़ा चंचल है तो भी कोई बात नहीं, अपना है।
1: एक चीज और समझ में आई आज इस उम्र में कि मन को कैसे जीतना है, मार के, डांट के, कोस के, अपने आप को गाली दे के नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा ना बच्चे को, बच्चे को कैसे जीतते हैं प्यार से, आजा बेटा चॉकलेट खा, आजा बेटा म्यूजिक सुन, ध्यान बटाते, मतलब ये बहुत अच्छा गेम बन गया है।
0: और आज अभी मैं इतने एपिसोड से कह रही थी कि ये गेम है, सो यू से हाउ कैन यू कॉल दिस,
1: मैं तो वॉर लेके बैठा था,
0: नाउ यू कॉल्ड इट अ गेम।
1: इस गेम को मैं वॉर लेके बैठा था, अगेंस्ट फाइटिंग विद माई माइंड,
0: नाउ इट्स फन, इट्स
1: नाउ इट्स फन, नाउ इट्स अ पजल, लाइक सुडोकू में जैसे करते वो,
0: नाउ एंजॉय द गेम, नाउ एंजॉय द, अब चैलेंजेस आएंगे,
1: लेकिन जब मैं सुडोकू में एक मिस्टेक करता हूँ ना, मैं पेंसिल से खेलता हूँ, फिर से वो रब कर लेता हूँ, फिर स्ट्राइक टेस्ट करता हूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, होगी गलती, ठीक है फाइन, फिर करेंगे।
0: एज लॉन्ग एज द फर्स्ट इक्वेशन इज राइट, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, जस्ट टेक केयर फर्स्ट इक्वेशन ना गलत हो, फर्स्ट इक्वेशन राइट, आज नहीं तो कल, चाहे थोड़ी मेहनत ज्यादा भी लगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड विच इज हैप्पीनेस, That is being bliss. हमें खुश रहना है।
1: कुछ होमवर्क दे दीजिए आप अगले
0: आपने इतना सारा होमवर्क ले लिया, आप सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट, कितना भी काम बाहर करें, प्रायोरिटी स्वस्थिति।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर,
0: ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच, ओम शांति। द माइंड इज लाइक आवर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड ऑल्सो all your responsibilities like family, career and health. The first priority will be the child within and then everything outside. While taking care of your responsibilities, the child might start crying, the mind starts getting irritated, angry or hurt. Withdraw for a minute from activity and heal the child. Talk to the mind and change the quality of thoughts. The child within is not in our control. No one taught us what to think or how much to think. Discipline this child with love, not force or harshness. While dealing with others, remember, we are dealing with the child within them. Responsibility means the ability to respond the right way in every situation. So, the priority list of responsibilities will be self, family, and work. If we take care of our emotional well-being, we will have good relations

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आइए आज हम नौशाद साहब के बारे में कुछ बातें आपको सुनाएंगे। उनकी कुछ चंद शायरियां और गजलें मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। और बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नौशाद साहब संगीत के अलावा एक अच्छे शायर भी थे। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने बहुत कम शायरियां लिखी, लेकिन बहुत अच्छी लिखी है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज पूरे इस कार्यक्रम में हम लोग नौशाद साहब के बारे में, और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, नौशाद जी की जो संगीत है उसकी एक अलग

0: अपनी पहचान है। बहुत कम और बहुत अच्छी और बहुत कम लागत में उन्होंने जो संगीत हम सबको दिया है वो बकायदा हमारे दिल में बस गया है। और आज नौशाद जी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ये बातें, उनके संगीत से हम उनको हमेशा अपने पास ही पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूं कुछ दो गाने कार्यक्रम के शुरुआत में, बैक टू बैक मैं आपको सुनाने वाला, और गाने वो जो 50 और 60 के दशक वाले और वो भी अक्षर आ से शुरू होने वाले और बहुत ही खूबसूरत गाने जो नौशाद जी का संगीत से सवारा हुआ, ये दो गाने आपके लिए खास। ये गाना जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, तनवीर नकवी का लिखा, नूरजहां सुरेंद्र का गाया हुआ, संगीत नौशाद साहब का और फिल्म थी अनमोल घड़ी 1946 की। इसके साथ एक और गाना,
1: अपनी आजादी को हम हर चीज मिटा सकते नहीं।
0: जी हाँ, ये खूबसूरत गाना जो देश के लिए खास, आजादी के दीवानों के लिए जो मर मिटते हैं उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए गाना उस समय लिखा गया था शकील बदाई द्वारा, और इसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज देकर एक जिंदा दिली इसमें लाई थी। लोग इसे सुनकर अपने अंदर देश के प्रति प्रेम से मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, और इसे संगीत से सवारा था नौशाद साहब। जी हाँ, चित्रपट लीडर 1964 का। तो चलिए इन दो गीतों के बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बात फिर से आपका स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। जी हाँ, आबादियों में दस्त का मंजर भी आएगा, आबादियों में दस्त का मंजर भी आएगा, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत लाइनें नौशाद साहब की लिखी हुई। आप सुने हैं रेडियो पूरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। और आम आदमी के लिए नौशाद साहब सिर्फ एक अजीम मौसिकार थे, लोग उनकी संगीत के दीवाने थे और उन्होंने कम से कम साजों का इस्तेमाल करके बेहतरीन दिनों को बनाई थी। और ये भी बताया जाता है गुलकारों की आवाजों का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो मकबूलतरीन गुलकार बन गए। यानी एक साधारण कलाकार जब नौशाद साहब के साथ मिलकर संगीत में वो गाना गाता है तो वो एक खास खास बन जाता है, खास कलाकार बन जाता था। जो भी कलाकार नौशाद के संग में रहे वो एक अपने में एक अलग पहचान बना चुके हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और उनके जीवन का अगर सबसे अच्छा पल कौन सा है ये उनसे पूछा जाए तो उनके मुख से बस एक शब्द निकलेगा, वो है नौशाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, आपके लिए एक और खूबसूरत नगमा जो शुरू होता है अक्षर आ से। जी हाँ, चलिए ख्वाबों का सफर इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ख्वाबों का इस सफर में आप सभी का स्वागत है और कारवा धीरे धीरे मस्ती की बनती जा रही है। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, अभी आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, इसे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आपने सुना, जिसके संगीतकार थे रोशन और ये फिल्म थी 1962 की आरती। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर रहे थे नौशाद जी के बारे में। नौशाद जी संगीत को बखूबी जानते थे, उनके पास संगीत की धुनों का एक ऐसा ज्ञान का भंडार था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम ही इस्तेमाल किया। उनके एक जो बहुत ही नजदीकी व्यक्ति थे, नौशाद जी के फैन कह सकते हैं, प्रशंसक कह सकते हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि नौशाद साहब लोक धुनों का भी जरूरत के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल किया और लोक संगीत को भी बखूबी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दर्जा भी दिया। ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में सनी आपके लिए एक और खूबसूरत नगमा जो शुरू होता है अक्षर अ से। जी हाँ, मैं वही गीत के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम तो यहाँ नीचे आसमान के नीचे है, जमीन पर बैठे हुए हैं, आकाशवाणी से मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और मैं कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए अगर हम आकाश को देखे तो कैसा फील होगा, है ना? आसमान के नीचे हम आज अपने पीछे इस दुनिया को छोड़ चले। आइए मजरू सुल्तानपुरी का खूबसूरत जो गीत है, जिसने मजरू सुल्तानपुरी का ये कलम जिसने इन अच्छे अच्छे शब्दों को बना के दिया और लता मंगेशकर ने इसे अपनी आवाज दी, संगीतकार सचिन देव वर्मा ने इसे अपने संगीत में ढाला। ज्वेल थीफ का 1967 का ये खूबसूरत नगमा जो खास देवानंद और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया था, तो आइए सुनते हैं

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आपका हम सफर सनी और हम बात कर रहे हैं नौशाद जी के बारे में, जो हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद अपने सांच का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद जी ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं गुना अच्छी होती है, इसलिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। नौशाद जी कहते हैं, अपनी कलम के जरिए अच्छी नहीं नजाकत है एहसास इस कदर, शीशा अगर बनोगे तो पत्थर भी आएगा। चलिए एक और बार फिर से मैं उस गीत की तरफ आपका इशारा करता हूँ। अभी सुना आसमां के नीचे, और उसके बाद आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। तो आइए साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत मुकेश जी की आवाज में और कयाम जी के संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत आपके लिए फिर सुबह होगी 1958 का एक गाना आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, ख्वाबों का सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूँ आपका हम सफर सनी और बात कर रहे हैं हम लोग नौशाद जी के बारे में। नौशाद जी का जन्म 25 सितंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वहीद अली के घर में हुआ था और वो 17 साल की उम्र में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद झंडे खां और पंडित हेमचंद प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की जो साथ है वो मिल गया, सोबत मिली और ये सोबत नसीब वाले को ही होती है। नौशाद साहब के नसीब में ये बात थी और उन्हें ऐसे अच्छे लोगों की सोबत मिल गई और नौशाद जी अपनी कलम से कहते हैं, शराब हो के शाद न हो रहरवान ए शौक, रास्ते में तसंगी का समंदर भी दौरे आराम में खाक उड़ाते चले चलो, तुम जिसकी जस्तजू में हो वो दर भी आएगा, वो दर भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या मुश्किलें हमारे बीच में आती हैं तब भी हमें उन मुश्किलों के साथ चलते रहना है, हंसते खुशी से चलते जाना है, तभी हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज आपके पास आएगी जरूर। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। जी हाँ, गीतकार हजरत जयपुरी का लिखा एक खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत से सवारा चित्रपट इवनिंग इन पेरिस 1967 का। जी हाँ, आज मैं आपको तारे सितारे आसमान की तरफ ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम।

नमस्कार, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में मैं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, नौशाद जी को पहली बार जब 1940 में प्रेम नगर में संगीत देने का ऑफर आया, लेकिन उनकी अपनी पहचान बनी 1944 में, यानी 4 साल के बाद। एक फिल्म आई थी रतन, जिसमें जोहरा भाई अम्बाले वाली, अमीर भाई कर्नाटकी, करण दीवान और शाम के गाए गीत बहुत लोकप्रिय हुए और यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का ऐसा सफर जो कम लोगों के हिस्से में आता है। फिर नौशाद साहब कभी पीछे मुड़के नहीं देखे और उन्होंने छोटे पर्दे के लिए द स्वॉर्ड ऑफ

0: टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट जैसे धारावाहिक में भी संगीत दिया। ऐसा बताया जाता है नौशाद साहब को अपनी आखिरी फिल्म के सुपर फ्लॉप होने का बेहद अफसोस रहा। ये फिल्म थी 100 करोड़ की लागत से बनने वाली अकबर खां की ताजमहल, जो रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर मुगले आजम को जब रंगीन किया गया तो उन्हें बेहद खुशी हुई, उसे लोगों ने काफी पसंद किया, जिसमें नौशाद साहब ने संगीत दिया था। तो ऐसे कई बातें हैं, जैसे कि नौशाद साहब फिर कहते हैं, बैठा हूँ कब से कूचा एक तिल में सर निघू, कातिल के हाथ में कभी खंजर भी आएगा। वैसे नौशाद साहब बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा गुम रहते थे, किसी अच्छी चीज को बनाने की कोशिश उनकी लगातार जब तक वो थे करते रहे। और अच्छी अच्छी धुनों के साथ साथ उसने जब बात आती है भक्ति की, तो भक्ति गीतों में भी बहुत सारे धुनें उन्होंने बनाई थी, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, नौशाद साहब ने उसे संगीत से संवारा था, और ऐसी कई खूबसूरत गीत बने उनके जो हम सभी को आज भी याद दिलाते हैं कि संगीत कैसा होना चाहिए। तो आइए उनकी आवाज के साथ साथ मैं खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी साहब ने गाया हुआ गाना आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज भी सुनेंगे तो उतना ही खुशी देगा जितना आपको पहले खुशी देता।
1: लब पे हल्का सा तबस्सुम, तानपुरा ज़ेब दोष, हर अदा मस्ती में डूबी, हर नजर वादा फरोश। फिल्म कोहिनूर के लिए राग हमीर में ये गाना जब मैंने बनाया और मोहम्मद रफी साहब को सुनाया तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो कहने लगे ये गाना लोग पसंद नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल राग है। मोहम्मद रफी साहब ने फरमाया कि हुजूर मुझे एक दफे गाने दीजिए और मैं इसकी कोई फीस आपसे नहीं लूंगा, अगर लोगों ने ये गाना पसंद किया तो फिर मुंह मांगी फीस आपसे लूंगा। प्रोड्यूसर ने कहा मंजूर है। मैंने भी कहा कि इस जगह के लिए मैं कोई दूसरा गाना नहीं बनाऊंगा, यही गाना रहेगा। बाहर कैफ वो गाना रिकॉर्ड हुआ और मोहम्मद रफी साहब ने बहुत जमकर डूबकर इस गाने को गाया, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना मकबूल हुआ, लोगों ने पसंद किया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने मोहम्मद रफी साहब से कहा कि भाई आप जीत गए मैं हार गया, बोलिए क्या फीस आपको पेश करूं। तो मोहम्मद रफी साहब ने कहा मेरी फीस मुझे मिल गई, अरे मैंने तो कुछ नहीं दिया। कहने लगे हुजूर आवाम ने, जनता ने ये गीत पसंद किया, यही मेरी फीस थी, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। तारीफ नौशाद साहब की कीजिए जिन्होंने इसमें कमाल कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर मैंने क्या कमाल किया, मैंने तो पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के आपके सामने पेश कर दिया, कमाल तो इस राग हमीर का है।

0: नौशाद साहब ये भी कहते हैं, पहले तो डर लगा मुझे खुद अपनी चाप से, फिर रो दिया मैं मिल के गले अपने आप से। थी बात ही कुछ ऐसी कि दीवाना हो गया, दीवाना वरना बनता है कौन अपने आप से, दीवाना वरना बनता है कौन अपने आप से। रहता है अब हरीफ ही बनकर तमाम उम्र, क्या फायदा है यार फिर ऐसे मिलाप से। आया इधर ख्याल उधर महवा हो गया, कहने को था न जाने अभी क्या मैं आपसे, हम और लाएंगे पड़ोसी के घर में आग, हम और लगाएंगे पड़ोसी के घर में आग, भगवान ही बचाए हमें ऐसे पाप से। नौशाद रात कैसी थी वो महफिले तराब, लगती थी दिल पे चोट सी तबले के थाप से, तबले के थाप से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी

0: सरसार हो के जा चुके याराना ये मैं कदा, सकी हमारे नाम का सागर भी आएगा, सकी हमारे नाम का सागर भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं कहूंगा आप सभी को मुझे अब दीजिए इजाजत, और ख्वाबों का सफर में फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दिलीप कुमार।
1: अरे तुम बस गाड़ी को भी यही फंक्शन हो रहा था।
0: हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
2: वाह, अरे वाह।

0: रही है। हाथ लाओ उत्पाद क्यों कैसी कही है।
1: इन हाथों से सच्ची गाड़ी चल रही है।
0: अरे वाह अरे वाह अरे वाह।

0: कारोबार हो जाता बंटा धार। अरे मारा तो कारोबार हो गया रे बंटा धार। यूं समझो इनसे ये दुनिया चल गई बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है
1: बाबा।
0: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है
1: बाबा।
0: अरे हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है
1: बाबा।

चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पकड़ना
1: भाई।
2: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथे।
3: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
5: बाय बाय पंकज।
6: क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा है?
5: भाई मैं गांव जा रहा हूँ यार।
6: और मुझे छोड़ के? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगा? मैं तुझे कितना मिस करूंगा यार, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है?
5: तो मैं भी करूंगा बहुत तुझे मिस, पर यार नाना से मिले मुझे 6 साल हो गए।

0: वहाँ से मिले 6 साल हो गए, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना।
1: हाँ, तू भी अपना ध्यान रखना।
2: अरे पंकज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना।
0: हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन मेरे भाई की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल, लेकिन सैंडी अपने नाना से मिलने जा रहा है, वो भी 6 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी।
1: हाँ दीदी,
2: क्योंकि नाना नानी, दादा दादी, ये सब जो होते हैं, ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
2: तो चलो आज हम सब अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है?
1: ओके।
2: तो पहले आकाश, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
4: मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मम्मी, डैडी, दादा और दादी। पहले बुआ भी थी, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो अब हमारे साथ नहीं है।
2: और दादा दादी, मम्मी पापा के बारे में हमें कुछ बताओगे? नहीं,
4: हाँ बताऊंगा ना। मेरे पापा मॉडल इंसुलेटर में सर्विस करते हैं, मेरे दादा यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, और मेरी मम्मी और दादी दोनों हाउसवाइफ हैं।
2: अरे वाह, और हाउसवाइफ होम मेकर्स हो रहे हैं, जो कि पूरे घर को चलाने का जॉब बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं।
5: हाँ दीदी,
2: है ना। और भुवना, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
6: 5 लोग।
2: 5 लोग कौन कौन?
6: मेरे घर में माँ, पापा, दादी, दादा और मैं।
2: दादी, दादा, मम्मी, पापा और आप हो?
6: हाँ।
2: अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
6: मेरे मम्मी पापा।
2: मम्मी पापा दोनों? और दादा दादी?
6: भी पसंद है।
2: मतलब कि पूरी फैमिली ही भुवना की फेवरेट है।
6: हाँ, है ना? मेरी दादी बुआ रहते थे, एक शादी हो गई चली गई, वो भी ओमान। 2 शादी हो गई चली गई अमेरिका। 3 बुआ मेरी शांतिवन में रहती है।
2: अरे वाह, मतलब आपके पास तो घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ओमान, कभी अमेरिका और कभी राजस्थान, जहाँ पे आप अभी हो।
6: हाँ दीदी,
2: है ना। देखा फैमिली होने के कितने फायदे होते हैं।
5: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
2: और सैंडी, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरे फैमिली में 4 लोग हैं।
2: 4 लोग कौन कौन?
1: मैं, पापा, मम्मी और भैया।
2: अच्छा, तो और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें और बताओ।
1: मम्मी हाउसवाइफ है, भैया शांतिवन में सेवा देते हैं, और पापा मॉडर्न स्केटर में।
2: अरे वाह, और भुवना, तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया ही नहीं।
6: मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, HSBC में काम करती है, और मेरे पापा लॉयर है, और मेरे पापा स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजर है।
2: अरे वाह, और पंकज, अपनी फैमिली के बारे में हमें बताओ।
0: दीदी, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मैं, पापा, मम्मी और 2 मेरी सिस्टर है।
2: अच्छा, तो आपकी सिस्टर्स क्या करते हैं?
0: मेरी दोनों सिस्टर्स मैरिड है, मुझसे बड़ी हैं।
2: और वो राजस्थान में ही रहते हैं?
0: नहीं दीदी, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है और बड़ी सिस्टर पुणे में रहती है।
2: अरे वाह, ये तो दोनों ही बहुत अच्छी जगह है।
0: हाँ दीदी।
2: और आपके पापा क्या करते हैं?
0: मेरे पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है।
2: अच्छा, और आपके घर में आपका सबसे फेवरेट कौन है?
0: मेरा सबसे फेवरेट है मेरी मम्मी और मेरी छोटी दीदी।
2: ये मम्मी, और मम्मी आपकी फेवरेट क्यों है पंकज?
0: क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: हाँ, अब भाई बेटे तो मम्मी के लाडले होते हैं।
0: हाँ दीदी,
2: है ना। और सैंडी, आपकी फेवरेट कौन है?
1: दोनों जने,
2: मम्मी और पापा।
1: हाँ।
2: और आकाश?
4: हाँ।
2: आपका फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
4: मेरे फेवरेट फैमिली मेंबर सारे हैं।
2: सबके सब? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भुवना का तो फेवरेट मम्मी और पापा है, और दादा और दादी भी है।
6: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ भुवना, जब तुम्हारा मूड खराब होता है या किसी बात पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले किसके पास जाती हो? मान लो स्कूल में कोई बात हुई और आपका मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले किसको जाके बताते हो?
6: पापा।
2: पापा को? और फिर पापा क्या कहते हैं आपसे?
6: मम्मी को कहने के लिए।
2: तो फिर मम्मी से क्या बात करते हो आप?
6: मम्मी मुझे कंसोल करती है और मुझे सपोर्ट देती है और सजेशन देती है।
2: मम्मी आपको सजेशन देती है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
6: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और आकाश, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो घर में किसके पास जाते हो?
4: दीदी, मैं किसी से के पास नहीं जाती।
2: किसी को बताते नहीं हो घर पे?
4: और अगर मुझे पता है कि अगर जैसे आज मेरे इस फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन वो वापस मेरा फ्रेंड बन जाएगा।
2: बात तो बिल्कुल सही है,
4: इसलिए बता के क्यों झगड़े मोल लेना।
2: अच्छा।

0: हेलो, आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते तो सबसे पहले घर में किसको बताओगे?
1: मम्मी को।
0: मम्मी को? और मम्मी को क्यों?
1: क्योंकि मम्मी को अगर बताऊंगा ना तो मम्मी अच्छे सजेशन देगी, उस प्रॉब्लम को हल करने की नुस्खे बताएगी।
0: मम्मी अच्छे सजेशन देती है सभी को।
2: हाँ दीदी।
0: और पंकज, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको शेयर करनी होती है तो घर में किससे शेयर करते हो?
3: मैं अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं करता।
0: किसी को भी नहीं बताते?
3: नहीं, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली से।
0: अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज का आपको स्ट्रेस होता है?
3: मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करता हूँ।
0: और मम्मी उस सिचुएशन में आपसे क्या बोलती है?
3: वैसे मुझे जरूरत पड़ती नहीं कभी किसी से शेयर करने।
0: आज तक कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी?
3: नहीं, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेता हूँ।
0: खुद सॉल्व कर लेते हो?
3: हाँ दीदी।
0: टेंशन में तो नहीं आते?
3: नहीं, टेंशन में आता हूँ पर फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।
0: मतलब आप टेंशन में आते हो लेकिन सोच समझ के उसका रास्ता निकाल लेते हो?
3: हाँ दीदी।
0: अच्छा, और सैंडी आप क्या करते हो?
4: मैं मम्मी पापा दोनों से शेयर करता हूँ। जब रात खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा दोनों साथ में, सब फैमिली साथ में, तो उस टाइम बता देता हूँ।
0: मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रात को आप दोनों से शेयर करते हो?
4: हाँ दीदी।
0: और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको?
4: फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो मुझे बता देते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वैसे मम्मी पापा तो दुनिया में एक्सपीरियंस है, हमसे और ज्यादा पहले आए हैं ना।
4: हाँ।
0: तो उनको सब चीजें पता होती हैं, हमारी एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हें पता होती हैं, और उसके क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो हम सॉल्व ना कर पाए तो हमें तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अच्छा ये बताओ आकाश, कि घर में कोई डांटता है क्या?
1: हाँ।
0: अच्छा, मतलब आप शैतानी करते हो?
1: शैतानी? हाँ करता हूँ।
0: अच्छा, जब शैतानी करते हो या कोई ऐसी बात होती है तो किससे डांट पड़ती है?
1: अगर दोपहर में टैब पे गेम खेलता हूँ तो दादी डांटती है, अगर रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो मम्मी डांटती है, अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ तो पापा डांटते हैं, और अगर ज्यादा टीवी देखता हूँ तो दादा डांट।
2: एक एक टाइम के लिए एक एक लीडर हो गए,
4: बटा हुआ है।
0: अच्छा, क्योंकि अलग अलग शैतानी पे अलग अलग लोगों से डांट पड़ती है, लेकिन वो डांट से कभी आपको बुरा तो नहीं लगता?
1: नहीं नहीं,
4: मजा आता होगा।
1: नहीं, डांट से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे कोई डांटने वाला तो है, कम से कम कोई तो मेरी केयर करता है। वरना कुछ बच्चों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ही नहीं होते, वो तरसते एक डांट के लिए ताकि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे डांटे। और वैसे ये बात तो सही है कि अगर कोई हमें डांटता इसीलिए है क्योंकि वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा चाहता है इसलिए हमको डांटता है।
0: ये बात तो आकाश आपने बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही समझदारी की कि मम्मी पापा या बड़े हमें तभी डांटते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, है ना?
4: हाँ दीदी।
0: इसीलिए उस डांट का बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। पूना, आपको कभी डांट पड़ती है घर में?
2: बहुत कम पड़ती दीदी, और बहुत ज्यादा दादा डांटते हैं, और जब मम्मी बहुत कम डांटती है फिर भी मुझे कभी रोना नहीं आती, लेकिन मेरे पापा डांटते तो ऐसे ही आंसू नदी जैसे बहते।
0: पापा डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि जब पापा डांटते हैं जब बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों की ऐसा, मेरे पापा डांटने तक इतना ऊपर गई मैं, मुझे बुरा लगता है।
0: आपको बुरा लगता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि पापा ने डांटा?
2: हाँ दीदी।
0: लेकिन कभी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, डांट पड़ेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं, है ना? और पापा भी तो इसीलिए डांटते हैं। और पंकज, आपकी डांट पड़ती है घर पे कि नहीं?
3: दीदी डांट तो हमेशा पड़ती रहती है।
0: डांट हमेशा पड़ती रहती है, और घर में कौन डांटता है आपको?
3: मम्मी पापा दोनों।
0: दोनों क्यों डांटते हैं मम्मी पापा?
3: पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि कभी कभी मैं उनकी हेल्प कराने के लिए साइड पे नहीं जाता, और मम्मी इसलिए डांटती है क्योंकि घर पे कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं नहीं करता।
0: और आप छोटा मोटा काम जो मम्मी बताती है वो क्यों नहीं करते हो?
3: अच्छा नहीं लगता मुझे करना, क्योंकि मैं कभी खेलने चले जाता हूँ और कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो इसलिए घर का काम नहीं।
0: लेकिन मम्मी के पास हेल्प कराने के लिए अभी तो और कोई भी नहीं है।
3: हाँ जी ठीक।

0: है ना, तो उनकी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी।
1: हाँ मुझे पता है मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी बुरा भी नहीं मानता।
0: सही बात है भाई, अगर मम्मी को हेल्प चाहिए तो हम बच्चे ही तो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं पर हर वक्त नहीं होते, तो बच्चे ही हैं जो मम्मी लोगों की हमेशा घर पे मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए।
2: मैं मेरी नानी की हेल्प करती हूँ दीदी।
0: अपनी नानी की क्या हेल्प करते हो मम्मी?
2: बर्तन अंदर रखना धुलाई के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी रोज मॉर्निंग 8:30 पापा और मम्मी निकलते हैं, रात 8:30 को आते हैं।
0: अच्छा, तो फिर आप अपनी नानी की घर संभालने में मदद करते हो?
2: हाँ दीदी।
0: और सैंडी?
3: मुझे तो मम्मी ज्यादा डांटती
0: है। मम्मी ज्यादा डांटती है क्यों?
3: और मम्मी से तो कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, कभी कुछ ही।
0: लेकिन पापा तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है मेरी लाइफ में कोई बड़ी सी गलती हो रही है, और मम्मी हमारी फिक्र करती है, तो अगर हम खाना नहीं खाते या फिर टाइम से कुछ नहीं करते तो इसलिए डांट पड़ती है मम्मी से।
3: हाँ दीदी।
0: जिसका किसी को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ भुवना, आपको पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
2: पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसके साथ कैसे बात करना, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे और समझ भी जाए।
0: अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपको क्या अच्छा लगता है आकाश अपने पापा के बारे में?
4: ये मेरे पापा के बारे में यही अच्छा लगता है कि जब भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो उससे मेरे को पापा बचा देते हैं।
0: मतलब पापा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है।
4: हाँ
0: है ना। और पंकज, आपको अपने पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
1: मुझे मेरे पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो बहुत ऑनेस्ट है।
0: ऑनेस्ट है?
1: हाँ।
0: अच्छा, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते?
1: हाँ दीदी।
0: ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे तो हम सबको सीखना चाहिए। और सैंडी, आपको?
3: मेरे पापा मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी टेंशन नहीं लेते और फैमिली को टेंशन आने नहीं देते, खुद सॉल्व कर लेते, मतलब फैमिली को ऐसे रखते हैं। कूल पापा।
0: मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो पापा सब संभाल लेते हैं।
3: हाँ।
0: और मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है भुवना?
2: मम्मी बहुत अच्छी से टाइम मैनेजमेंट।
0: टाइम मैनेजमेंट मतलब अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी और आपको भी?
2: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और आकाश?
4: मुझे मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटी लगती है क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए मम्मी हर मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करती है।
0: मम्मी हर ख्वाहिशें पूरी करती है जो भी वो कर सकती है। और पंकज?
1: मुझे मेरी मम्मी की तो सारी क्वालिटी पसंद है, मेरी मम्मी में हर तरह की क्वालिटी।
0: जैसे
1: खाना बनाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाना, और टाइम का मैनेज भी अच्छे से कर लेती है।
0: मम्मी सबके पसंद का खाना भी बनाती है और टाइम मैनेज भी करती है। और सैंडी?
3: मेरी मम्मी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी ना घर का जो बजट बनाती है ना वो सबसे बेस्ट है।
0: मम्मी इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है।
3: हाँ, और मम्मी सुबह सबसे पहले उठना, फिर पापा का नाश्ता बनाना, फिर भैया का, फिर मेरा, फिर खुद का, फिर घर का सब काम करना, इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: सही बात है, मम्मी लोग सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं तो शाम तक करते रहते हैं।
3: और सबसे लेट सोना।
0: सबसे लेट सोना। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तुम लोग के घर में सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं?
2: हाँ दीदी।
0: तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भुवना, ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं बताओ?
2: मेरी ग्रैंड माँ इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरे ग्रैंड पा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मुझे, साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, जब भी वो मुझे मैथ्स में हेल्प करते हैं मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं।
0: और वो बहुत प्यार से आपको पढ़ाते होंगे है ना?
2: और स्ट्रिक्ट है दीदी, वो
0: थोड़े स्ट्रिक्ट है। आकाश, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
4: मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, जो मेरी दादी है ना वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अच्छे स्वीट्स बना लेती है, और दादा की ये खासियत है कि उनका मैथ इतना अच्छा है ना कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी सामने फेल हो जाएगा लेकिन उनका मैथ आगे रहेगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। और सैंडी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
3: वो अभी इस दुनिया में।
0: और आपके नाना नानी?
3: नानी नहीं है, नाना है।
0: जिनसे आप मिलने जाने वाले हो?
3: हाँ।
0: तो वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
3: क्योंकि नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं।

0: हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हमें दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, वो हमेशा दिल से देते हैं, इसलिए वो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी फैमिली के साथ जब आप लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मम्मी के साथ या पापा के साथ बीता हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता है सोच के? कोई भी ऐसा पल याद हो जब आपका रिजल्ट आया हो या फिर घर में कुछ हुआ हो और मम्मी पापा के साथ वो एक मेमोरी बन गया हो?
1: मुझे याद है दीदी।
0: हाँ पंकज बताओ।
1: मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे मम्मी और पापा पहली बार साथ में उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी।
0: पहली बार?
1: हाँ दीदी।
0: अरे वाह, और आपका बर्थडे तो स्पेशल हो गया।
1: हाँ बहुत स्पेशल बर्थडे था, हमने बहुत इंजॉय भी करा और मम्मी पापा ने डांस भी किया था।
0: अरे वाह। और बुना आपको कुछ याद है ऐसा?
2: हाँ दीदी, मैं मम्मी पापा और मेरे अंकल जब हम कूद गए ना वो बहुत अच्छा।
0: कहाँ गए?
2: कूद।
0: अच्छा, जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए तो वो बहुत अच्छा मोमेंट। अच्छा आप मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आप अपने मम्मी पापा या किसी भी फैमिली मेंबर से कहना चाहते तो हो लेकिन कभी कह नहीं पाते, क्या कोई ऐसी बात है? किसी चीज का डर हो या कभी ऐसा लगे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई और बात हो, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से वो नहीं करते? उतना
2: मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ पापा हम समर को वंडरला चलते हैं प्लीज।
0: अच्छा जब आप लोग गलतियाँ करते हो या कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है, शरारतें करते हो, तो क्या अपनी मम्मी पापा को घर पे सब चीजें बता देते हो या डर रहता है कि बताएंगे तो डांट पड़ेगी?
2: मैं बताती हूँ दीदी।
1: हाँ मैं भी बता देता हूँ।
0: पंकज?
1: दीदी मैं बहुत कम बताता हूँ।
0: कम बताते हो, क्यों?
1: क्योंकि ज्यादातर मैं अपनी गलतियों को या कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो मैं उसे खुद मैनेज कर लेता हूँ।
0: किसी चीज का डर तो नहीं होता आपको?
1: नहीं डर नहीं होता।
0: और आकाश?
3: दीदी मैं तो बताता ही नहीं।
0: बताते ही नहीं हो, क्यों?
3: क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मेरे साथ कोई गलती हुई है तो वो अगले आने वाले दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत।
0: लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हो जाए तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी
3: है। हाँ, ऐसे तो इन्फॉर्म रखता हूँ लेकिन पहले नहीं रखता हूँ,
0: क्योंकि वही हमें समय पर मदद कर सकते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग अपने मम्मी पापा और नाना नानी सबसे प्यार तो बहुत करते हो, उन्हें बताते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: बताते हो? क्या बताते हो अपना?
2: मेरी मम्मी पापा एनिवर्सरी में मैंने एक एक्सप्लोडिंग बॉक्स बनाई जिसमें मैंने क्या किया, मेरी सारी फोटोज, मेरी मम्मी और पापा की मैरिज फोटोज और मेरे पापा के बचपन की फोटोज, मेरी मम्मी की बचपन की फोटोज उनके फ्रेंड्स के साथ, वो सब मैंने जेरोक्स ले ली। तो मैंने सारी फोटोज का जेरोक्स लिया और बहुत अच्छे से एक बॉक्स बनाई, एक गिफ्ट बॉक्स जैसा, जिसको खोलते ही ऐसा एक्सप्लोडिंग बॉक्स जैसा बाहर आ जाएगा और हम बचपन की फोटोज देख सकते हैं और बलून सब कुछ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल गिफ्ट था।
2: और मैंने एक पीपीटी बना दी थी
0: पीपीटी
2: एनिवर्सरी में।
0: और पापा की बर्थडे पे भी आपने कुछ स्पेशल किया था ना?
2: हाँ, मेरी बुआ ने इसमें हेल्प की, हमने डांस की जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे भैया एक म्यूजिक की जिसमें मेरी बुआ आती है और हम डांस करते हैं, और पापा म्यूजिक के लिए मैं डांस करती हूँ, ऐसा एक एक रिश्तेदार के रिलेशनशिप को एक एक डांस। मैंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखती हूँ मेरे पापा के लिए।
0: आप बहुत सारी पोएम्स लिखते हो अपने पापा के लिए? अरे वाह। और आकाश?
4: हाँ दीदी।
0: आप अपने घर पे सबको बताते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो?
3: दीदी वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं होती, उनको खुद ही पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी की केयर करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार बताने से ज्यादा जताने की चीज है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने मम्मी पापा और सबको बताना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना?
3: करता तो हूँ लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं होती।
1: हमारे पापा भी गब्बर सिंह हैं।
3: और क्या,
2: गब्बर सिंह टू
1: आतंक के दूसरे नाम।
0: पापा की बर्थडे हो या ऐसा कोई ओकेजन हो तो आप उन्हें छोटा सा कार्ड बना के दे सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जो उन्हें स्पेशल फील हो।
3: हाँ ये भी बात दीदी आपने सही बोली
0: है ना, और कभी कभी बोल नहीं पाओ तो उन्हें लिख के भी दे सकते हो।
3: हाँ दीदी, जैसे मैंने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे उनको एक कार्ड बना के दिया था उस दिन जब

0: स्कूल से आया तो घर पे पापा मम्मी थे नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि पापा मम्मी कहाँ गए, दादी भी कुछ बोल नहीं रही है मेरे को। जब शाम को 7 बजे आए पापा मम्मी घूम के, तब मेरा ऐसे ही मन हुआ, सुबह मम्मी को मैंने बोला ही था, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया था, तो मेरा मन किया चलो कार्ड बनाते हैं। तो मैंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी कम था लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की कार्ड्स बनाने में, और मतलब मैंने करीब 3 कार्ड्स बनाए थे मम्मी और पापा के लिए। एक में मैंने पापा के लिए पोयम लिखी थी, एक में मम्मी के लिए, और एक में पापा मम्मी और मेरी फीलिंग्स लिखी थी कार्ड में।
1: अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा तोहफा होता है जब हम अपनी फीलिंग्स लिख के मम्मी पापा को देते हैं। और सैंडी?
2: नहीं दीदी, मैं नहीं बताता।
1: नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
2: क्योंकि मैं डेली ना जब मम्मी पास शाम को बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ आधे घंटे तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ।
1: आप उनसे बातें करते हो? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, हम डेली मम्मी पापा से बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और पंकज आप?
3: हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा को सीधे सीधे बता देता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती है कि आजकल के बच्चों के एग्जाम्पल्स देती हूँ मेरी मम्मी की, उसके बेटे ने ऐसा किया, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
2: और हाँ दीदी, ऐसा कुछ कभी मेरे साथ ही होता तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
4: दीदी आपको पता है मेरी मम्मी को जब भी वो काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद है, और 2 ग्लास।
1: अरे बात, तो आज हम बात कर रहे थे फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो लास्ट में ये स्पेशल वाला एपिसोड खत्म करने से पहले क्या कोई एक मैसेज है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हो?
4: थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल एंड आई लव यू ऑल।
0: अगर मेरे पापा अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पापा इतने साल हो गए आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरे को हाजी अली लेके जाओ।
1: और पंकज आप कुछ कहना चाहते हो?
3: मैं अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं देखना चाहता, मैं अपने मम्मी पापा और मुझे हमेशा एक साथ तीनों को देखना चाहता हूँ।
1: और सैंडी?
2: मैं अपने मम्मी पापा से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा आप लोग और जितना दिन जी सकते हो मुझसे बहुत ज्यादा दिन जियो, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत उम्र तक देखना चाहता हूँ।
1: ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने की जो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं। आज की ये बातचीत हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ और नई बातों का पिटारा खोलने के लिए बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लो.
1: लवली लवली है समा, हम तुम दोनों हैं जमा. आज ट्विस्ट करें या शेक करें या चर्क करें या गुली गुली हम.

0: श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसन भांडण आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
0: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल सतारा की।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आप

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान आए हुए हैं पूना से, जो विशेष टायर कंपनी में अपनी सेवा देते हैं, सेंचुरी, शायद सेंचुरियन में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ एक खूबसूरती ये भी है आज के हमारे मेहमान सतीश जाधव जी, जो है

0: लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका वो भी एक आध्यात्मिक अनुभव और साथ ही साथ एक विशेष करियर के बारे में भी वो आपको बताने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आपको जो है कॉम्बो पैक का अनुभव कराएंगे, आध्यात्मिकता के साथ साथ अपने जीवन में व्यवसाय या काम करते हैं या करियर अपन करते हैं तो उसमें आपको कैसे अपने आप को बेहतर करना है, बेहतर जीवन शैली के बारे में बताएंगे, ताकि आप जिस भी जगह नौकरी करेंगे वहां पर आपको बेहद आनंद भी आएगा और खुशी भी होगा, ताकि आपके व्यवहार से लोगों में एक संतुष्टि महसूस करेंगे कि सतीश जी जिस दिन काम पे होते हैं तो बाकी सभी लोग अपने कलीग्स जो है खुश रहते हैं, क्यों? सतीश जी का एक व्यवहार के कारण। तो आइए वो सारी चीजें जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, सतीश जी के अनुभव के द्वारा आप सभी सुनिएगा। तो आप सभी की तरफ से सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सतीश जी कैसे हैं आप? बेस्ट है। तो सतीश जी मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं वो थोड़ा सा इंट्रो के रूप में बताइए हमारे सभी श्रोता बंधुओं को।
1: मैं सतीश भाई का कंपनी है, उधर हम काम करते हैं,
0: मैन्युफैक्चरिंग होता
1: करके ही आगे जाता है।
0: ओके।
1: तो क्वालिटी देखते हैं
0: वो आप देखते हैं?
1: हाँ, तो
0: अच्छा, यहाँ ये कहाँ पर है कंपनी? भोसरी में, पुणे में, पुणे के पास।
1: हाँ।
0: तो आप कहाँ रहते हैं पुणे में?
1: कालेवाड़ी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने समय से आप काम कर रहे हैं इसमें?
1: 40 साल से कंपनी में।
0: क्या बात है, 40 साल की आपने सर्विस पूरी की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा सतीश जी, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई कहाँ पर हुई, थोड़ा सा वो बचपन की यादें भी ताजा कराइए अपनी स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की।
1: बचपन में स्कूल में जाते थे ना, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी जब 11 पास हो गया, लेकिन
0: 35%
1: तो आपने सोचा जनता ने जी जी कंपनी में लोगों को दे रहे थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हमें उस बेसिस के ऊपर और उन्होंने ट्रेनिंग लिया।
0: अच्छा।
1: कैसा कंपनी में काम करना है, कैसा मतलब सेफ्टी का सब बताया, और इसमें क्वालिटी के डिपार्टमेंट में भेज दिया उन्होंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: कंट्रोल देख सकते हो।
0: अच्छा, ये हुआ कि आप 11वीं तक पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और फिर भी आपने 11वीं तक अच्छे से अपने आप को संभाला और उसके बाद अचानक से आपको लॉटरी लगी कि ये नौकरी का अपॉइंटमेंट मिला और वहाँ पर एक और लॉटरी ये रहा कि आपको स्वयं उन्होंने सिखाया ये सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो आदिवासी बेल्ट के लोग हैं, वो भी पढ़ाई में थोड़ा कम ही एवरेज रहता है। बहुत कम देखा गया है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ के आगे निकलते हैं आदिवासी बेल्ट में। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन है यहाँ पर कि सतीश जी जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान न होते हुए 11वीं तक उन्होंने पूरी पढ़ाई की और ऐसे में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था। जो कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं हमारे बीच में, तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा सकारात्मक रहें, आशावादी रहें, क्योंकि इससे आपको जैसे आशावादी रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है और आप किसी भी नौकरी में जाते हैं तो कंपनी वाले जो है आपको ट्रेन करते हैं, इसलिए आपको कंपनी वाला जो नौकरी है वो सेफ भी रहता है और आप उसमें दक्षता धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। कई बार एक जगह मैंने पिछली बार जब बात की थी एक हमारे मित्र से, तो उन्होंने कहा उनको कंपनी में नौकरी तो लगी और जैसे जैसे नौकरी करते गए वहां पर एज ए क्लर्क को असिस्ट कर रहे थे, कागज इधर से उधर करना, नोटिस बोर्ड पे लिखना और लोगों को मैसेज करना, वो ऑफिसर को असिस्ट करते थे। तो अचानक से क्या हुआ, उनके यहाँ 26 जनवरी का जो फंक्शन हो रहा था तो उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ खेल का आयोजन किया था उनके ही स्टाफ के लिए, तो ये ऑफिसर लोगों के लिए खेल का था तो इनके अंदर भी वो खेलने का जो है हुनर था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने साहब को, मैं भी खेलूं क्या सर, मुझे भी अच्छा लगता है खेलना। तो साहब ने बोला ठीक है खेलो हमारे साथ में, तो उन्होंने खेलने के लिए उनको ले लिया और हुआ ऐसे कि ये अच्छा खेलने लगा।

और अच्छा खेलने लगा तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उसको बोला कि इसको इसमें ट्रेन करते अपन, तो ये अपनी कंपनी के माध्यम से खेलेगा जाके। तो उसकी लॉटरी उसमें लग गई और वो खेल में अच्छा करते करते उन्होंने वहां पर कंपनी को रिप्रेजेंट करके खेलना शुरू कर दिया। और जैसे ही खेलना शुरू कर दिया तो कंपनी को बड़ा अच्छा लगा, उससे काफी जो है नाम हो गया कंपनी का और उस व्यक्ति को जो है उनकी टैलेंट को देखा गया। तो ऐसी भी कई चीजें होती हैं, इसलिए अपने ओनर को संभाल के रखिए और कहीं से भी आपको लॉटरी मिल सकता है। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सतीश जी से और जानकारी हासिल करेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के खास मेहमान सतीश जी हैं, जिनसे बातें हो रही है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कुछ स्कूल या स्कूल के टाइम में कुछ हमारी मस्ती भरी बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है या टीचर से मार खाया हुआ चीज भी हमें याद रहती है, तो ऐसे कुछ बचपन की कोई इंसिडेंट सुनाइए हमें।
1: बचपन में मुझे इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट, तो हम स्कूल में जाते थे तो ये खाने का छुट्टी होता था, बीच में से लिंगी सीमा निकल गया और वो जो दफ्तर जो रहता ना,
0: बैग बैग
1: वो एक जगह रख दिया।
0: अच्छा,
1: वही पिक्चर के थिएटर में घुस गया।
0: ओ
1: हो, तो अंदर गया तो पैसे कम थे, तो इसके लिए सबसे आगे वाला उधर कम था, उधर बैठा और उधर अचानक है ना, और हमारे डैडी भी उसी टाइम पिक्चर देखने आगे उधर, तो फिर मैं तो ऐसे चुप रहा था, उन्होंने देख लिया मुझे। अभी आपको तो मालूम इसके बाद क्या
0: होने क्या होने वाला पता चल गया। फिर वही पड़ी होगी दो चार।
1: फिर घर जाने के बाद तो उन्होंने अपना स्कूल में भेजा, तो
0: ऐसा क्यों किया।
1: तो ये जो उसके बाद है ना, जो मैंने कभी आज तक कभी किधर भी इंटरव्यू लेके जो स्कूल का रहने दे या जिंदगी का, उधर से हटने का नहीं, वही
0: जगह पे रहना। चलिए, एक सीख मिल गया आपको कि हम अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चोरी पकड़ी जाती है और उसके लिए हमें जो है ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो वहां से आपने सीख लिया और पिताजी की डांट आपको जो है मजबूत बनाया और आप आने वाले समय में कभी भी ऐसा छुट्टी मार के नहीं गए और वो अभी तक जारी है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सतीश जी। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के मन में भी कभी कभी ऐसे ख्याल आता होगा, लेकिन ऐसे ख्याल आने से वो जो है हमारे जीवन को बहुत मुश्किल कर देता है, हमारे करियर में हमारे चरित्र में नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ऐसी कोई चीजें ना हो। हाँ, आपको जाना ही है तो पिताजी को या टीचर को जरूर बता के वहां से छुट्टी लेकर जाए, और कई बार छुट्टी नहीं मिलने से कोई बात नहीं, आप अगले दिन अपने घर से जो है छुट्टी लिखवा के जाएंगे तो आपको छुट्टी जरूर मिलेगा। लेकिन कारण जो है अच्छा होना चाहिए, जो बिना मतलब के कारण वाली बात है वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आप स्कूल के बाद वो काम कर सकते हैं, स्कूल के बाद भी आप फिल्म देखना हो तो देखने जा सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन में इन सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने से आपके जीवन को एक गति मिलेगा, अच्छी जो है शुरुआत होगी और अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी। सतीश जी, एक और बात मैं चाहूंगा कि स्कूल लाइफ की, स्कूल में पढ़ते पढ़ते आपको सबसे अच्छा कौन सा टीचर लगता था, या जो हमारे ऐतिहासिक बातें पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, या इस व्यक्ति का स्टोरी आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए।
1: हमारे को एक खुदरीय गुरु जी करके हमको पढ़ाते थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो पढ़ाते थे तो कहानी के रूप में पढ़ाते।
0: अरे वाह।
1: अच्छा, कहानी बताते थे, फिर उसका वो उसका इसके मैच करते थे, जो भी किताब में इतिहास की जो इतिहास था इतिहास पढ़ा थे ज्यादा, वो कहानी के रूप में बता के हमारे ब्रेन में बरोबर फिट हो जाता था कि कहानी के रूप में उन्होंने
0: बताया।
1: तो उनको इंटरेस्ट आता था, हम बैठे रहते थे, उनको खाना खाने का भी याद नहीं रहता था, इतना मतलब
0: खो जाते थे,
1: खो जाते थे। तो वही एक टीचर है कि जो हमारे को इतिहास अभी ने जो हमको हमारा जो ये अध्यात्म है
0: जी,
1: उनका जो इसलिए जो हमारे देवी देवता धर्म किया पुराने हमारे वंश, हम उनके वंश थे, तो उन्होंने जो टीचिंग किया था हमका वही इतिहास हमको दोहराया जाता है कि तुम ऐसा करोगे, तो उसमें जो हमारी जिंदगी आगे बढ़ती बहुत कुछ हमको फायदा मिलता है उसका। और वही मेरा है, मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाकी सारी चीजें में बहुत
0: रुचि लगा,
1: खुशी होते हमें सीखना है और कुछ भी करना
0: जी,
1: दुनिया से आगे।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान सतीश जाधव जी हैं, पुणे से आए हुए हैं और बोसरी जो उनके यहाँ एक पूरा आईटी टेक्निकल सेक्टर है जिसको कहते हैं कंपनीज जहाँ पर बहुत होता है, वहाँ पर बोसरी करके एरिया है जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ पर आप सेंचुरियन में काम करते हैं, सेंचुरियन का उसमें काम करते हैं जहाँ पर टायर्स बनते हैं, गाड़ी में जो टायर बनते हैं टायर लगते हैं वो अलग अलग कंपनीज में उसका पूरा जो आउटर कवर है वो बनता है। आप देखेंगे कि वो कैसे बनता है सतीश जी से जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी आप अपना जो जॉब है उसके बारे में बताइए और जो गाड़ी के पहिए कंपनी टायर बनते हैं, टायर तो बहुत मजबूत रहता है, वो कंपनी में कैसे बनता है, क्या उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह बनते हैं, तो आपके यहाँ कौन सा पार्ट बनता है और कैसे कंपाइल होके वो पूरा टायर बन के निकलता है, उसके बारे में आराम से हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए बताइए।
1: जो कंपनी में ना चिप्स आता है वो चिप्स से लेता है, मतलब जो हमारा छोटा छोटा चिप्स मतलब छोटा छोटा ऐसा गोल गोल रहता है, वो अपना
0: साबुदाना टाइप बॉल्स होते हैं, व्हाइट बॉल्स आते हैं,
1: पूरा गोली भर भर के वो जो आता है वो मशीन में डालते ऊपर।
0: अच्छा अच्छा।
1: और उसको पिघला कर उसका याम तैयार करते हैं।
0: अच्छा, उसका फिर वो याम तैयार हो जाता
1: है, तो वो एक स्पूल हो जाए, स्पूल पे वो वाइल होते रहते हैं।
0: अच्छा, चक्र में घूमते रहता है उसमें लग जाता है।
1: और वो फूल होने के बाद उसको फिर वो दूसरा एक मशीन रहता है,
0: उसके
1: ऊपर वो जाता है, दो स्पूल अभी लेकर रहता है, उसका दो स्पूल जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: दोनों को ट्विस्ट दिया जाता है,
0: ओके
1: करते हैं, और उसका स्कैन वगैरह चेक करके उसका ट्विस्ट निकलते उसको फाड़ देते हैं।

0: काट देते उसको,
1: ये पहले यान हो गया।
0: हाँ हाँ,
1: जो चिप्स के बाद आ गया जी, फिर उसका है ना कॉर्ड बना के,
0: कॉर्ड
1: उसका एक बना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो वो एक बना लेने के बाद उसका पूरा एक ऐसा क्रीम लेता है, वो क्रीम में लोड करते हो बॉडी को, और उसके बाद उसका फैब्रिक तैयार करते
0: हैं। अच्छा,
1: कपड़ा का वो जैसा हमारे कपड़े का।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो तैयार करते हो कपड़े का जो पूरा ऐसा, फिर उसको डिपिंग प्लांट रहता है उसमें डाल देते
0: हैं,
1: डिपिंग लेके उसका स्ट्रेंथ चेक करके वो टायर कंपनी को भेज देते
0: हैं।
1: वो टायर कंपनी वाले उसका स्ट्रेंथ देख के उसमें वो रबर में वाइंड करके उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो ऐसा वो प्रोसीजर रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है, आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अभी हमारे सतीश जी ने बताया कि वो सेंचुरिक में काम करते हैं, जहां पर टायर जो बनते हैं उसका जो पहले मटेरियल आता है बॉल्स, वाइट बॉल्स होते हैं, और फिर उसको कलर के साथ जब वो मशीन में डाला जाता है उसका फिर एक लहर बनता है जो राउंड होता है, और वो धागा जैसे स्पून बनता है उससे लपेटा जाता है, फिर उसके दो अलग अलग पार्ट फिर वापस जॉइंट होते हैं आगे, फिर उसका जो है फैब्रिक तैयार करके उसको फिर एक किसी प्रोसेस में डाला जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग होने के बाद फिर क्या चीजें, पूरा टायर बनता है या कवर बनता है सिर्फ उसका? कवर बनता है जी जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर जो है व्हाइट रोल आपका बनता है, फिर उसको बाद में कलर किया जाता है। डिपिंग रहता है। अच्छा, डिपिंग उसको ब्लैक कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले व्हाइट कलर का ये जो है रॉड तैयार हो जाता है, और फिर कलरिंग होके वो फिर वापस जो है बिल्कुल जैसे धागा बनता है वैसे ही ये सारी चीजें फैब्रिक धागा का ही बनता है, और बाद में फिर उसका कपड़ा जैसे बनता है वैसे ही ये टायर का भी जो वो बन जाता है, फिर उसके बाद वो अच्छी तरह से जो है आगे के लिए प्रोसेसिंग होते होते फाइनल प्रोडक्ट टायर बन के, टायर का ऊपर का जो टायर है वो सारी चीजें बन जाती है। तो ये विशेष प्रोसेस है जिसके बारे में हमने अभी सतीश जी से सुना। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और आखिरी कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग हैं, और सतीश जी से उनके आध्यात्मिक जीवन का अनुभव भी सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और सतीश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आपको एक कंपनी में काम करते हैं जहां पर टायर बनता है। तो यहां पर जैसे कि सतीश जी ने कहा, उनको पढ़ाई में इतना रुचि नहीं था, लेकिन काम के लिए बड़े रुचि कर रहे हैं। और वहां पर वो अप्रेंटिस पे जब लगे तो उनको सारी चीजें सिखाई गई और लैब टेक्नीशियन है वहां पर। तो मैं चाहूंगा सतीश जी, स्वागत है फिर से, और लैब टेक्नीशियन का क्या काम होता है वो थोड़ा सा बताइए। आपका मेन वर्क क्या है और कैसे इसको आपने कितने दिन में सीखा ये काम?
1: अभी भी हम वो
0: सीखते ही यहाँ, क्योंकि ये तो प्रोसेस चलता रहता है सीखना।
1: इसमें क्या लगा है, जो क्वालिटी निकलता है, जो मालम का जो स्पूल निकल, स्पूल बोलते हैं उसको, स्पूल निकलता है तो उसको हमें ना निकाल के उसमें से उसका सैंपल लेते हैं, वो इंस्टॉल मशीन लेते हैं, उसके ऊपर वो

0: बिल्कुल बिल्कुल सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को और विद्यार्थी मित्रों को आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो ब्रह्मा कुमारी इसको आपने कैसे जाना, कैसे समझा और कैसे जाना हुआ, वो थोड़ा सा बताइए आखिर में।
1: तो बचपन से ही हमें ना तो मतलब हमें तो पढ़ा कि इंटरेस्ट नहीं था,
0: तो इन्हीं चीजों पे
1: अगर वो बच्चे जो है जो मतलब उनको घर से भी कोई कमी नहीं उनके साथ रह रहे थे, मुझे तो उसका उसमें का नहीं था मैं
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ ही
1: में लेकिन उसमें तो मेरे को आप खाली ऐसा ऐसा हो गया कि कुछ सब खाली है जिंदगी खाली है। एक दिन ऐसा सचिन हो गया कि अभी ये उधर सेंटर था वो हमारे
0: अच्छा अच्छा
1: उधर हम गए तो उधर अंदर गए तो उन्होंने बताने का शुरू कर दिया तो उसमें इंटरेस्ट था
0: इंटरेस्ट लगा।
1: फिर उसके बाद सीखते सीखते सीखते फिर जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा उसका नॉलेज आया। उसके बाद अभी भी अभी इतना और बोलते कि और सीखना चाहिए उसका जो है ना
0: बिल्कुल आकर्षण और भी
1: मुझे चाहिए वो चाहिए और सीखना है तो उसका जो अट्रैक्शन है अभी भी ज्यादा नहीं।
0: अच्छा
1: तो डेली कुछ ना कुछ करता रहता
0: हूँ
1: जिसमें प्रॉब्लम आता है मालूम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते लेकिन उसको एंड तक लेके ही जाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कुछ ना कुछ ही होता है कि वो जो अलग ही है वो कुछ
0: आध्यात्मिकता
1: आध्यात्मिकता।
0: सतीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और निश्चित तौर पे आपको एक खोज थी, आपकी खोज यहाँ पर पूरा हो रहा है लेकिन खोज इतना गहरा है कि आप रोज नए अनुभव करते हैं और रोज आपको लगता है कुछ और सीखना है, तो वो आपको कनेक्टिविटी बना के रखा है। पिछले काफी लंबे समय से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और यही जिज्ञासा जो पाने की जिज्ञासा है उसी की वजह से आप यहाँ पर हमेशा जुड़े रहते हैं और इनके सारे जो शिविर होते हैं सारे जो मेडिटेशन व प्रोग्राम्स होते हैं उसे अटेंड करके आप अपने आप को एनहांस कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। तो सतीश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए।
1: तो मैं तो बोलता हूँ कि जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं हमें कुछ न कुछ शिकायत के ही जाते हैं
0: बिल्कुल
1: नहीं शिकायत नहीं लेकिन तुम्हारा ध्यान जाएगा कि गलती की वजह से इसमें प्रॉब्लम आया तो उसको समाधान स्वरूप में जिंदगी में उसको बाहर निकालने का हमेशा कोशिश करो। अब कोशिश नहीं करें तो पूरे के बैठे रहेंगे
0: तो नहीं होगा
1: लेकिन कोशिश करो समाधान तो निकलता ही है।
0: बहुत बढ़िया सतीश जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं, इसीलिए आप इस जिज्ञासा से देखिए कि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है। अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे, इस मानसिक स्थिति को यानी मनोभाव को अपनाएंगे तो आप जीवन में हर मुश्किल का सामना आसानी से करेंगे और कोशिश करके आप जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार आप सभी की तरफ से रेडियो टीम की ओर से सतीश जाधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। सतीश जी थैंक यू, ओम शांति। चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं सतीश जी का अनुभव इसलिए आप तक पहुंचाया क्योंकि वो अध्यात्म के साथ साथ सीखने की एक जिज्ञासा लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपके जीवन में भी अगर आपकी पढ़ाई कम है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, आपके लिए भगवान ने कुछ सोच के रखा है क्योंकि यह संसार भगवान का बनाया हुआ है तो उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अलग सा रखा हुआ है। तो आप पढ़ाई कम करने के बावजूद भी अच्छा व्यक्तित्व बना के रखिए और अच्छी जीवन शैली को बना के रखिए और ईमानदार रहें तो आपको किसी न किसी कंपनी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी

मिलेगा और धीरे धीरे आप काम सीखते हुए हायर पोजीशन तक जा सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, हमारा गणित, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में हम लोग करेंगे और आज कुछ एपिसोड है जैसे कि एस वाले गाने आपको सुनाएंगे। पिछली बार भी आपने एस के कुछ खास गाने सुने थे एस अल्फाबेट के, तो आज भी हम लोग कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने एस वाले आपको सुनाएंगे। कुछ थोड़ा सा अलग मोड़ पे आपको ले जाएंगे क्योंकि 60s के गाने 50s के गाने पुराने हैं और कुछ 60s एंड 70s के बीच के गाने हैं जो आपको एक सूदिंग फ्लेवर देगा और एक थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग मोड़ देगा। तो दोनों भी चीजें हैं इसमें, दोनों ही टाइप के गाने इसमें हैं, मिक्स मसाला है, अलग अलग फ्लेवर के गाने हैं। तो हम लोग सुनेंगे आज के इस एपिसोड में एस अल्फाबेट के गाने 50s एंड 60s के। तो आइए आज के इस ख्वाबों के सफर को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी है। तो विभा जी कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, नमस्कार सनी, आपको और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और आप कैसे हैं?
1: बस आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज सुन के हमें खुशी हुई।
2: थैंक यू।
1: हाँ जी, चलिए विभा जी, आज के इस एपिसोड में हम लोग जैसे कि एस अल्फाबेट वाले गाने सुनाएंगे, तो सबसे पहला गीत आपके पास कौन सा है जो एस अक्षर से शुरू होता है 50s एंड 60s का?
2: ये मेरे पास पहला गाना है, समझी थी कि ये घर मेरा है, मालूम हुआ मेहमान हूँ मैं। ये गाना जिन्हें मैं अपना घर कहती थी उसके लिए मैं अनजान हूँ। ये दोनों तरफ आप इसको दो तरह से ले सकते हैं इस गाने को। इसको दुनिया को अपना घर कहने का और कैसे हम दुनिया में रहते हुए एक मेहमान की तरह हैं लेकिन इसको अपना ही घर समझते हैं, इसके दो मीनिंग वाला गाना है।
1: अच्छा।
2: आप इसको डायरेक्टली एंजॉय करें, इसके बारे में ज्यादा क्या कहूँ।
1: चलिए, कभी कभी दो मीनिंग होते तो हमारे श्रोता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि जब गाने बने हैं तो कहीं ना कहीं भाव तो होगा और भाव लिखने वाले का भी है, गाने वाले का भी है और सुनने वाले का भी है, तो तीनों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। आप जिस फ्लेवर को उसमें से उठाना चाहते हैं वो चीजें आप उठा पाते हैं। तो आइए जैसे कि गीत में जो लाइनें हैं, पहली लाइन जैसे अभी विभा जी ने बताया, समझी थी कि ये घर मेरा है। हर व्यक्ति घर बना के सोचता है कि ये घर मेरा ही है, लेकिन जब परिवार बनता है फिर बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का घर हो जाता है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे ही इसे अपना घर कहें। तो ऐसी कई चीजें आती हैं समय के साथ साथ, सब आपका जो अपना था वो किसी और का हो जाता है और किसी और का था तो वो किसी और का आगे हो जाता है। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है और जो चीजें आप अभी समझ रहे हैं हो सकता है कि कल आपको समझने में वो अलग लगेंगे और कल आपकी समझ भी उस तरह से बदल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के इस एपिसोड में और विभा जी बहुत ही प्यारे कलेक्शन लेकर आपके बीच में आई है। कहते हैं, मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है, बड़े मजबूत दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं, कहां सबके नसीब में लिखा ये प्यारा ये प्यार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आप अभी सुनेंगे, थोड़ा समझने में जरूर इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि कहां आप इसमें सटीक बैठे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे गाने की तरफ, कार्यक्रम की शुरुआत में ये गाना अभी आपके लिए।

0: जी साहिल रिदैनवी साहब का लिखा ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, और रवि साहब ने बहुत ही प्यारा सा संगीत इसमें दिया था, और ये फिल्म आई थी 1965 में जिसका नाम था काजल। जी हाँ, इस फिल्म का ये गाना था, और यहाँ पर जो है विशेष एक परिवार की कहानी बताई गई है, और मीना कुमारी पर गाना पिक्चराइज किया गया था। मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र, मुमताज और पद्मिनी इस फिल्म के कलाकार थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सनी, आपके बहुत अच्छा शेर कहा, और जैसे आपने वो कहानी को एक्सप्लेन किया उसमें वाकई बहुत गहराई भी थी, और इस गाने को भी मैंने बहुत एंजॉय किया।
0: जी जी, जी
1: सनी, मैं दूसरा गाना मेरे पास है, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, अगर दिल भर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए। तो ये मुजरा है, मुजरा करती हूँ मुमताज, तवायफ की अदाकारी में मुमताज गाती हुई है। इस गाने में नजाकत है, शौकी है और आकर्षण भी है, बहुत ही अच्छे बोल हैं, और अगर आप इसको मूवी में देखें, पर्दे में देखें, तो मुमताज की एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत है और डांस भी बहुत अच्छा है, और इसका म्यूजिक आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है।
0: जी जी,
1: और जैसे इसकी वर्डिंग है, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, कई गम पासा बैठे तेरे एक दूर जाने से, बहुत अच्छी शायरी के साथ गाई गई ये कवाली, आप बहुत मजा करेंगे इसमें।
0: चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और ये एक फिल्म आई थी खिलौना, जो 1970 में रिलीज हुई थी, और ये आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों की सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना खिलौना इस एल्बम से। और जब मैंने बात की कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, परिवार के बारे में बातें अगर करो तो ये भी एक जो है खिलौना फिल्म भी एक पारिवारिक फिल्म है। लेकिन इसमें जैसे हम अपने घर में माँ बाप है, बच्चे हैं, तो कई बार एक जो बच्चा है पहले अच्छा रहता है, बाद में बिगड़ जाता है किसी कारणवश। किसी हो सकता है कि किसी लड़की के प्यार से या किसी हादसे से चीजें हमारे बीच में चेंज हो जाती हैं। तब परिवार में बड़ा माहौल बदल जाता है और हमारा जो खुशहाल परिवार था वो दर्द भरा परिवार बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी इस खिलौने एल्बम में बताया गया 1970 में। और ये फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय। संजीव कुमार, जितेंद्र, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गा खोटे पर

0: सेंट्राइज किया गया था। तो ये एक फैमिली ड्रामा है लेकिन एक व्यक्ति पर सेंट्राइज किया गया है जो एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और उसको अपने जीवन से बिल्कुल वो वैराग आ जाता है और वो कुछ ऐसे हरकतें करता है जब तक वो चेहरा उसके सामने ना आए तब तक वो ठीक नहीं बिहेव करता है। तो ये चीजें इसमें बताई गई थी। ये ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंज आता है किसी के प्यार में वो चीजें बताने की कोशिश की थी डायरेक्टर साहब ने। और चंद्र बोहरा साहब इसके डायरेक्टर थे और इसे विशेष फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला इस फिल्म को। तो आइए आगे कहते हैं, जिसके होने से रिश्तों में एक अलग जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, नेक्स्ट कौन सा गीत है आपके पास?
1: सुनिए, अगला गाना मेरे पास है सांझ जली दिल की लगी चली पुकार के, बहुत सुंदर गाना है और वहीदा ने मानो देवन पर फिल्माया गया ये गाना। शोखियों शरारत से भरा हुआ ये गाना है और इनकी सीनरी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पर गाया गया ये गाना। इसमें शरारत है, दो प्रेमी एक दूसरे की खिंचाई करते हुए अपना समय प्यार में कैसे गुजार रहे हैं उसका जिक्र भी है और कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, शैलेंद्र साहब का लिखा ये गाना आपने याद कराया है और आशा मंडारे की आवाज में सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गीत है काला बाजार इस एल्बम से। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1960 में और ये एक ऐसा फिल्म था जिसमें एक अलग कहानी बताने की कोशिश की गई थी और ये विजय आनंद यानी देवानंद साहब के बड़े भैया विजय आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी काला बाजार। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।
2: कल्पना कर सुंदर ये जगत मधुर कितना होता, सुख सपनों की जलछाया में पुलकित हो जगता सोता, संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, कब तक और अकेले कह दो
3: मेरे जीवन बोलो।
2: दीदी जी,
3: कौन?
2: पहले दीदी जी,
3: पहले बताइए कौन?
2: मैं कहती हूँ दीदी जी।
3: लागू तो
2: सुनो तो हक नहीं।
3: अरे कहाँ जा रहे?
2: छोड़ दो,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं हूं आपका हम सफर सनी। और आज के इस खूबसूरत शो को सजाने के लिए विभा जी हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे कलेक्शंस लेकर हमारे बीच में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बुरा साया उनके रहते हमें छू तक नहीं सकता, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती है।
2: एंड विभा जी जी, ये बहुत अच्छा आपने कहा। वाकई दुआओं का बड़ा असर होता है हमारी जिंदगी में। दुआएं हैं तो हमारे बहुत से बिगड़े काम भी बिल्कुल सीधे होने लगते हैं।
1: जी सही बात है
2: जी। और इसी से रिलेटेड एक गाना अगला मेरे पास जाना है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे। ये मीना कुमारी अपने तंज वाले अंदाज में गा रही हैं और अशोक कुमार इसमें योगी का रूप धारण किए हुए हैं और उनके हाथ में कमंडल है और भगवान चोला पहना हुआ उन्होंने और वो मीना कुमारी से भाग रहे हैं। और मीना कुमारी तंज करती हुई अपनी इस सच्चाई को वो बयान कर रही हैं कि अगर हम दुनिया से भाग रहे हो तो भगवान को कैसे पाओगे, क्योंकि दुनिया में रहने वाले सब भगवान के ही बंदे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, बोल तो है ही अच्छे और इसमें फिल्माया भी बड़ी अच्छी तरह गया है। और इसमें एक वर्डिंग जो है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जान।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चंद्ररेखा 1954 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का ये गाना है। और मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, महमूद अली और मीनू मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और ये एक चित्रलेखा जो है, ये एक ऐतिहासिक कहानी है और इसके ऊपर कई चीजें लिखी गई है और उसमें से एक जो है भाव इसमें लेकर इसको फिल्माया गया था। और ये केदार शर्मा जो है, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और भगवती चरण वर्मा साहब ने इस कहानी को लिखा था। तो जैसे विभा जी ने बताया, वैसे बिल्कुल सही ढंग से इस फिल्म में ये बातें बताई गई है। और एक योगी की कहानी है और एक साधारण व्यक्ति की कहानी है, दोनों में क्या अंतर होता है वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई।

आप जोड़ना चाहते हो, सेतु बनाना चाहते हो, तो वहाँ जो मुश्किलें आती हैं वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आइए सीधे हम लोग आगे चलते हैं गाने की तरफ। चित्रलेखा 1964 का ये गाना है आपके लिए अभी।

0: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल गर्मी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, रोशन साहब का संगीत से सजा खूबसूरत गाना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये चीजें इसमें बताई गई थी। वहां भी खूबसूरत बोल वाले गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में अभी आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि माँ ममता की मूरत, पिता ज्ञान की खान, बहन मान है घर का, भाई मेरी जान, बिन इनके नहीं वजूद मेरा, है परिवार मेरी पहचान। चलिए विभा जी, अगला गाना कौन?
1: बहुत अच्छी परिभाषा दी आपने पूरे परिवार की।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: भाई बहन माँ बाप सबको कवर करते हैं, वाकई हमारी पहचान इन्हीं रिश्तों से है और इन प्यारे से रिश्तों के साथ। अगला गाना सनी मेरे पास है, सपनों में साजन से दो बातें, याद रही एक भूल है।
0: अरे रे रे।
1: यहाँ सजनी अपने साजन की बातों को याद करते हुए
0: जी जी,
1: कोई बिरहा के और कुछ लम्हे मिलन के उन सब का मिक्सर उसको याद करते हुए गुनगुना रही है, उस गाने को एंजॉय कर रही है और आप भी इस गाने को एंजॉय करें पूरी मस्ती के साथ।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये गाना है, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1957 में, गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो दिल्ली में है, आप देख के आ सकते हैं। और इस फिल्म को जो है जे ओम प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया था और ये भी एक देशभक्ति से सराबोर गीत है, सॉरी देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये कहानी है इसमें। और ओम प्रकाश जी जो है बड़े ही अलग ढंग से एक महिला की किरदार को इसमें बताने की कोशिश की है और कहा फिल्म आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें किस तरह से वो सस्पेंस है थोड़ा सा, फिल्म बहुत ही अलग उसमें बताने की कोशिश की, अलग स्टोरी। तो आई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ इस गाने की तरफ। और इस फिल्म के स्टार्स थे भरत भूषण, प्रदीप कुमार, मधुबाला, राज मेहरा, जॉनी वॉकर साहब, अनिता गुआ और मास्टर भगवान, इन सभी ने इसमें काम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे गाने की तरफ।
2: बहुत अच्छा, तो इधर जानती हैं ये कौन है?
3: ये है लीला।
4: लीला मुखर्जी?
3: हाँ, आप उन इसका आशिक है।
5: क्या गाती है रे?
3: बस यही एक नशा है आप उनको।
4: नशा?
3: आप उन दारू नहीं पीता, पान नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिर्फ इसका गाना सुनता है। तू भी एक रिकॉर्ड सुनेगी इसका?
4: नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो गई है।
3: सुन रे, आप उनकी बात को दूसरी बार ना मत बोलना, नहीं तो वादा हो जाएगा। उठा ये ग्रामोफोन और चल मेरे साथ।
4: उठा,
3: चल चल चल चल।
6: आज आप उन चार महीने के बाद रिकॉर्ड सुनने लगे हैं रे, और वो भी तेरी खातिर है, नहीं तो हमेशा कोई ना कोई लफड़ा खड़ा हो जाता है रे।
4: ये लफड़ा कैसा
6: है? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। रिकॉर्ड सुनते ही आप उनका भेजा घूम जाता है, इधर लीला की आवाज कान में पड़ती है और उधर आपन के खून में बैंड बजने लगता है। क्या
4: क्या बैंड?
6: आपन पागल हो जाता है रे, इधर लीला का गाना सुना और उधर आपन का भेजा घूमा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं खाबों का सफर इस प्रोग्राम को, और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं 1950s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुन रहे हैं। अभी आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत गाना गेटवे ऑफ इंडिया का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। गाने बहुत पुराने हैं और कुछ गाने तो मैंने पहली बार ही सुने सिलेक्शन करते वक्त, और अभी भी सुन रही हूँ। और गानों में मीनिंग होता है, इसका गानों में गहराई है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। ये ज्यादा फेमस भी नहीं है, पर अगला गाना जो मैं लिखेंगे ये बहुत ही फेमस गाना है, सबने सुना होगा और आपने तो कई बार ही सुना होगा।
1: अरे
2: सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के, वहीदा रहमान पे फिल्माया गया गाना।
1: पर
2: तो अपने बचपन को हर कोई याद करता है।
1: सही बात।
2: तो वो बचपन की यादें, वो लड़कपन, वो छेड़ा खानी, वो कभी रूठना, कभी मनाना, कभी भाई बहनों से उनको तंज करना, तंग करना, कोई चीजें छुपा देनी और कभी उनकी चीजें खा जानी, ये इसमें एक अलग ही मजा होता था। तो वो उसको लड़कपन कहते हुए वहीदा रहमान भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में झूमती हुई जा रही है, और बहुत ही खूबसूरत सीन है, और गाने में एक्टिंग के साथ नाच भी बहुत खूबसूरत है, कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, सपने सुहाने लड़कपन के। जी, ये फिल्म आई थी 20 साल बाद, 1960s की ये फिल्म थी, 62 में शायद ये फिल्म रिलीज हुई थी, और कहानी इसमें बहुत ही अलग बताने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस है इस फिल्म में। लास्ट में पता चल जाता है कि क्या एक्चुअली माजरा है, और ये पूरा जो कहानी है प्रॉपर्टी को हथियाने के पीछे लगे हुए लोगों की कहानी से बताई गई है। बहुत ज्यादा बीच बीच में जो है ट्विस्ट आते हैं, जिसमें आपको लगता है कि अरे ये अभी अभी पता चलेगा, अरे अभी पता चलेगा लेकिन वो लास्ट तक कुछ ना कुछ गुत्थी जो है सुलझती नहीं है, लेकिन आखिरी में आपको पता ही चल जाता है, क्योंकि फिल्म लास्ट में उसका एंडिंग बताते वक्त सब चीजें जो है सामने आ जाती है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो शायद लास्ट में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिल्म अगर देखेंगे 20 साल बाद 1962 में जो रिलीज हुई, ऐसी दो तीन फिल्में और बनी है, लेकिन ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। कहते हैं कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती,

कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है। मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं है। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: नमस्कार, ख्वाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, शकील बदायूं साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा गीत आपने सुना 20 साल बाद इस एल्बम से। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, आप अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना ये नूतन अपने प्रीतम को पुकारते हुए कह रही है कि सपने में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाओ।
2: ओहो।
1: और सपनों में आने का न्योता भी दे रही है और इसी शर्त पे सो रही है कि अगर तुम सपनों में आओगे तभी मैं सोऊंगी।
0: मैं तो नहीं सोऊंगी।
1: अगर बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया जा रहा है और अपने साजन के साथ होने के सपने, बीती हुई यादों सबको याद करते हुए हंसती हुई वो गा भी रही है और अपने प्रीतम को न्योता भी दे रही है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना भी पसंद आएगा। और ये गाना है मूवी दुल्हन एक रात की।

थी 1966 में और इस गाने को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, लता मंगेशकर ने गाया है और मदन मोहन साहब ने भी इसे ही सजाया है अपने संगीत से। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप सुन रहे हैं ख्वाबों का सफर

0: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और धीरे धीरे करते करते हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं। कहते हैं, कैसा भी हालत हो, कैसे भी हालात हो, थमे रखते हाथ, कैसे भी हालात हो, थमे रखते हाथ, परिवार कभी ना छोड़ता, दुनिया छोड़े साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना आखिरी वाला कौन सा है एपिसोड में?
1: जी, मैं तो आपके ये शायरी में गुम हो गई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिवार।

0: असली परिवार भी है जो एक दूसरे का हाथ सुख हो या दुख कभी ना हाथ छूटे, क्योंकि सुख में भी हमें अपनों की जरूरत है। वो सुख में हम खुशी नहीं हो पाते कि अगर परिवार हमारा साथ ना हो, और ऐसे ही दुख में भी जब हमारा परिवार साथ होता है तो उसमें हमारा दुख बिल्कुल एक तिनका सा होके निकल जाता। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। लास्ट में मेरे पास है गजल है जगजीत सिंह जी की गायी हुई,
1: अरे वाह,
0: सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत और बोलों में दर्द है, बेरुखापन है, लेकिन सच्चाई भी है।
1: हाँ।
0: चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, जिसको महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। खूबसूरत गजल है, आप इंजॉय करें।
1: जी जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और गाने के बोल, गजल के बोल भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हैं। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जगजीत सिंह साहब का ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ गजल है जो मैं आपको आखिरी में हम लोग छोड़े जा रहे हैं। कहते हैं, है क्या परिवार की कीमत, ये उनसे जाके पूछो तुम, जो खाली पेट आधी रात को सड़कों पर सोते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये गजल बहुत ही आपको सूदिंग फ्लेवर में ले जाएगा, और बहुत ही म्यूजिक भी इसका बहुत अच्छा है, और जगजीत सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे गाया है, और हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको एक जो है ट्रिगर पॉइंट है जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ये गजल। तो विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। बहुत ही प्यारे से गाने आपने सुनाए, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा।
0: थैंक यू सनी, आपका भी और सुनने वाले श्रोताओं का भी मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और आप ही मुझे मौका देते हैं आपके साथ ये गीत चुन के अपने भावों को प्रकट करने के लिए। और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, और ऐसे ही खुशी से इन गीतों को सुनते रहे, हमें अपना प्यार देते रहे, इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
1: जी, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और हमारे सभी श्रोताओं को भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जाते जाते दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, जैसे परिवार से शुरू किया था और परिवार के साथ ही खत्म करना चाहूंगा अपनी बातों को। कहते हैं, वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है, पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होता है, पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं और विभा जी चाहते हैं आपसे इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता।

चंचल चितली हूँ मैं, शोक चितली चंचल चितली, हर कोई देता है मेरा नजराना सुल्ताना।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं,

0: यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ. डू आई वॉन्ट देन नाउ वट एज हैपनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की जोड़ में सबको बांधता। पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

रात को जी, है रात को जी, बोले पपिहारा वेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो वेद खोले, तेरा मेरा तेरा दी मैं।

रात को जी है रात को जी चमके चंदा तेरे बिन पाए नहीं चैन ये बंदा जी मैं।

0: रात को जी है रात को जी उड़ते बादल साथ हमारे बड़ी दूर चली चलू मैं का करू रामा
1: आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े हैं अंदर आइए ये घर है मुस्कुराहट का यहाँ बसती है खुशियाँ ये है पुनेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग के ड्रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी अभी तक तो हम बहुत सी चीजों को मैनेज कर रहे थे, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे थे, लाइफ को मैनेज कर रहे थे, अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर नजर गई तो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में समझा और अपनी सही पहचान करते हुए क्या वो सिचुएशंस हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, इस पर कई सारी बातें हम कर चुके हैं। आज भी इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर पिछली कड़ी को हम देखें सिस्टर शिवानी, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए थे कि जब सिचुएशन आ जाती है तो एक छोटा सा रिकैप लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई एक्चुअली वी नीड टू मैनेज सेल्फ।
1: वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम के परिस्थितियां बहुत सारी हैं हमारे सामने जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक ही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज माई रिस्पॉन्स। सो वी शिफ्टेड द फोकस के सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय क्यों ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें तो सिचुएशन अपने आप संयम में आ जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ एक बातों के बारे में हमने विचार किया। एक था साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम उलझन कहते हैं ना, बहुत उलझन है क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक मिनट निकाल के भी स्टेप आउट करें कि जो ड्रामा चल रहा है उसको यहां से न देखने की बजाय एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें हर एक एक्टर का रोल बहुत क्लियर दिखाई देगा और सिचुएशन जैसी है वैसे दिखाई देगी। और फिर जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो साक्षी दृष्टा वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन मुझे नहीं कंट्रोल कर रही है, मेरा कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन जब हम उसमें उलझे हुए थे कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सो जैसे कि कई बार होता है ना, बहुत केओस हो रहा है, लेट्स से ऑफिस में होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट पे हो, आज शाम को सबमिट करना है, डेडलाइन इज देयर एंड यू हैव टू सी द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, इट इज लाइक केओस, एवरीवन इज शाउटिंग एट ईच अदर एंड जल्दी करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे
0: ब्लेमिंग,
1: ऐसे वातावरण में वो प्रोजेक्ट खत्म होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, क्योंकि द होल एनर्जी फ्लो इज वेरी नेगेटिव। लेकिन अगर हो तो जाएगा पूरा, लेकिन एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन का या वो एक महीने का जब आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, स्पेशली इवेंट्स ऑर्गेनाइज हम करते हैं, अब रोल ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इवेंट कुड बी एज स्मॉल एज कि आपके घर पे आज एक डिनर है, आपके घर पे आज एक बर्थडे पार्टी है, दैट्स ऑल्सो एन इवेंट। और उस इवेंट में आप देखो पूरा परिवार कैसे केओटिक सा हो जाता
0: है, और उसके बाद जैसे ही सारे मेहमान जाते हैं आप ऐसे थक जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक इतना टायरिंग पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: तो ऐसे जैसे ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, इनमें आप एक बार स्टेप आउट करके देखो, मॉर्निंग में आप देखो, जो आप घर पे, हमने लास्ट टाइम भी बात की कि मॉर्निंग का सीन कैसा होता है घर पे, अब इस मॉर्निंग के सीन में सपोज आज हमारे घर जो बहन आती है सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो आज नहीं आई, तो पूरा सीन कैसा हो जाता है, इट इज एवरीवन इज लाइक, अब एक है कि आप शोर मचाते रहो एक दूसरे पे चल, और एक है आप एक मिनट स्टॉप करो कि यू नो व्हाट एम आई डूइंग, घर साफ होता जा रहा है और अंदर
0: गंदगी
1: क्लीनिंग द बर्तन, वे क्लीनिंग द हाउस एंड अंदर क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं वैसे, इट्स अ सिचुएशन नॉट इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्स। तो अगर उस समय हम 10 सेकेंड भी अपने

0: And this is all meditation. This is all meditation. No, meditation, because first thing is apne aap se rishta. For Paramatma se rishta, apni healing, that is meditation. Meditation, you know, every time we think it's supposed to be very technical. No, meditation is just beautiful. Taking out time, apne aap se baat ki, Paramatma se baat ki, apna dhyan rakha, usse shakti li. Aur isiliye hum hamesha kehte hain ki wo ek ghante ke baad ek minute. Taki wo automatic agar hamari routine mein fix ho jaye ki hum har ek ghante ke baad ek minute nikalenge, to kahin na kahin agar us ek ghante ke andar thoda bhi kuch ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस एक मिनट के अंदर
1: बिल्कुल जैसे आप ये कह रहे हो हम एक हर एक घंटे बाद हर दो घंटे बाद घर फोन करते हैं बच्चा ठीक है कि नहीं सो अगेन यू नो अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूं कि नहीं
0: इट्स ओनली दैट वो एक मिनट सिर्फ उसी के लिए है और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो एक मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं मुझे दर्द हो रहा है क्यों दर्द हो रहा है उसने ऐसा किया नो देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम हमें वो वन मिनट इसलिए नहीं निकाला है कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर उनको ऐसा सो इसलिए हम परिस्थिति का चिंतन ना करके तुरंत वो वन मिनट स्टार्ट ही करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि आई एम अ पावरफुल बींग या आई एम अ पीसफुल बींग आई एम अ लवफुल बींग मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं जो शांति का सागर है तो मैं आत्मा कैसे होंगे तो क्या है पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म हो
1: जाएगा जस्ट फील्स यू द मोमेंट यू गिव दैट थॉट
0: इसलिए वन मिनट में हम ये नहीं कहेंगे कि आप वन मिनट निकाल कर हर टाइम उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो उस एक घंटे में
1: हम सोच रहे
0: थे हम वैसे भी सोच रहे थे एग्जैक्टली तो वो वन मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट कभी थॉट्स कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट ये कौन सी बड़ी बात है बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे आप
1: वो तो करेंगे
0: और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे लाइफ विल चेंज दैट इज डेफिनेट
1: वेरी ट्रू और वो उसे एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते आप ऑफिस में हैं आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो दस मिनट सो इसलिए इट्स वन मिनट लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो अब होता क्या है सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा लेकिन अगर मैंने वो वन मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11 तो somehow
1: 5 बजे तक तो स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है 10 to 11 ये करना है तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो 9 to 10 क्या फील करना है वॉट टू डू इज वन कॉलम 9 to 10 वॉट टू डू एंड वॉट टू फील 10 to 11 कैसा फील करना
1: पावरफुल लवफुल
0: या एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए तो हम और आप इट्स अमेजिंग आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे कहते 365 days अच्छा पूरे दिन में कितनी बार कहेंगे हर मिनट तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं कर रहे हैं ऑपोजिट क्यों क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया 10 to 11 ये काम हो गया

0: सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया. और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई थी. लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड. अब आप काम तो कर रहे हैं, आप ठीक करते जाएंगे, ये काम हुआ ये काम हुआ, मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं. सिर्फ काम किया काम किया काम किया लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट. क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रही है. फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा है चल रहा है. एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी एंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं. और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे. इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल. और इसीलिए हरेक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं. लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप में कल्टिवेट हो जाएगी. आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं. सिर्फ डायरी बना दी और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना है तो वो अपने आप हो जाएगा.
1: करना तो पड़ेगा,
0: करना तो पड़ेगा ना. तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए. करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे. फिर करते नहीं. तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला. तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10 मिनट्स भी अगर अपने से निकालते तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना. दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन. तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी. I am powerful. You know, this is a thought I have to keep giving myself. फिर सुबह सिर्फ दिया लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है. सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी प्रभाव पड़ता है. अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद, तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी? फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति
1: हम उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते. इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों, हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं.
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थक रहे. आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस है, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कम्फर्टेबली बैठे, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं. ये जो थकावट की फीलिंग है, इट्स मोर हियर. क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं. पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते
1: जाए. शिवानी, वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें. मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना.
1: वही तो कर रहे होते हैं. तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें. सिर्फ अपने आप को ये कहें, मुझे पॉजिटिव थॉट्स है कि मैं कौन हूं, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को.
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग. जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है. तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना. अब आप कहीं भी जाओ, हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड. ऑफिस में भी आप जाओ, चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है. तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है. पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था. तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट. सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली

0: टेन या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है, फिर आप रात को सोए चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश हैं, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
1: बहुत थकी हुई होती है। वेरी ट्रू।
0: सो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल से।
1: मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, यू नो ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी और थकी हुई होती है, अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा यही।
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चलेंगे, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: तब तक हम सो जाते हैं।
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो द ऑर्डर शुड बी सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ हेल्दी होगा तो फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। फैमिली हेल्दी को छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे तब जाकर आपका वहां कुछ मन लगेगा, आप ठीक से काम करेंगे। सेल्फ दर्द में है तो रिलेशनशिप्स घर पे थोड़े से ऊपर नीचे हुए। अब इस दर्द में इस परिवार को छोड़ के ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंच के मन कहां होता है? ये हुआ, ये हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं क्या। तो आर यू डूइंग जस्टिस टू वर्क ऑल्सो? तो अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते। हाँ बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ
1: लेकिन आप तो बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा।
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो फर्क।
1: ऑफकोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो। इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
0: काम परिवार के लिए कर रहा हूँ।
1: प्लीज ये होता है, जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगी कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के
1: कि
0: लिए
1: मैं हमारे लिए तो काम।
0: एब्सोल्युटली। लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए। आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट। एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना, नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा, मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया, नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं? सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हमारा सारा टाइम काम पे है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो राइट सेट करनी है। पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ, देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग। नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे।
1: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए।
0: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक मिनट। इट जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा। वो सुनते में इतना इजी लगता है कि एंड मेजोरिटी बोलते हैं हाँ हम तो जरूर कर लेंगे लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना।

दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूं। दिल में रहता है कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ओ टूना,
2: क्या रे?

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए?

0: कुछ नहीं, अपने हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन की जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमजोरी देखते हैं, धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज देखें, हर एक की विशेषता देखें, तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है।

0: हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज्यादा हावी होते हैं, कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो
1: मतलब थॉट्स हावी होते हैं। अगेन हावी मेरे पे कौन सी चीज होगी जो ऐसे चेंज ट्राई एंड बी अवेयर, हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज्यादा क्रिएट करते हैं,
0: ज्यादा उनका जो फीलिंग्स है,
1: हाँ,
0: जो ज्यादा स्ट्रांग
1: जो हम क्रिएट करते हैं।
0: तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है?
2: आपने जो पहले पूछा कि कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं चार प्रकार के थॉट्स होते हैं। मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि सात प्रकार के विचार है।
0: सेवन
2: टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स।
0: टॉक्सिक,
2: हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार।
0: हाँ,
2: जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते
0: हैं बॉडी में, इतने टॉक्सिन्स की बात होती
2: है, थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
0: ओके,
2: जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी,
0: मतलब जो ज्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं, मतलब इफ यू रियली लुक एट इट,
2: एनर्जी
0: उनमें, हाँ, वो काफी मात्रा जो है कंटेंट ज्यादा होते हैं,
2: इमोशंस है, और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ना वो भी टॉक्सिक केमिकल्स
0: है,
2: एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, तो सब सच में टॉक्सिक केमिकल्स है। भी दूसरे हैं नेगेटिव थॉट्स, वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है, कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, यह जो सब है, किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स, वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है,
0: अननेसेसरी है।
2: हाँ, कि उस समय जरूरी नहीं है, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आ रहा है कि खेलने जाना है, भी खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है, ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे हैं नेसेसरी थॉट्स, कि कहीं काम के विचार भी करने पड़ते हैं, आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। पांचवे कहेंगे राइट थॉट्स, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए, कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो,
0: अच्छा उसको बड़ा चढ़ा के
2: नहीं, नहीं देखो, हाँ,
0: मतलब जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया,
2: हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते हैं, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते हैं उन मिरर्स के द्वारा। छठे है पॉजिटिव थॉट्स, कि भाई वो सकारात्मक सोच, और सातवा है एलिवेटेड थॉट्स।
0: ओके,
2: वो पॉजिटिव से भी हायर है क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सात प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे।
0: पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी, काफी पढ़ना है, लेकिन हमने कहा कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं जानते, तो पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड
2: थॉट्स तक
0: ये पूरी जर्नी है। तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था?
1: नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। अभी इवन टिल डेट इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज डूइंग इट अनअवेयर, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर कि आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स। क्रिएट तो पहले भी हम ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति को ठहरा रहे थे, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे कि आई हैव अ चॉइस कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं।
0: डॉक्टर पटेल, ये सात तरह के जो थॉट्स, हमने कहा कि हर थॉट की पावर होती है, पिछली बार भी मुझे याद है हमने बात की थी कि फैमिली ऑफ थॉट्स, यू नो, एक तरह के थॉट्स, दूसरी तरफ एक तरह के थॉट्स। अब ये सातों

0: तरह के थॉट्स उतने ही पावरफुल है?
1: नहीं, ऐसे देखेंगे तो टॉक्सिक थॉट सबसे पावरफुल है नेगेटिव एस्पेक्ट में देखिए, और एलिवेटेड थॉट सबसे पावरफुल है पॉजिटिव इफेक्ट में।
0: एलिवेटेड मतलब हर थॉट का एक एक एग्जांपल हम देते हैं, तो हम शुरू करते हैं टॉक्सिक थॉट से।
1: बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहाँ तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं,
0: डर लग जाता है।
1: ब्रेन
0: अच्छा, जो आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगे
1: वो और नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सचमुच पॉइजन्स है। जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
0: डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूँ ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंग्जायटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है?
1: एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, अपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा कि ठीक से पढ़ नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला। रियल एग्जाम्पल, दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु तो अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण।
0: पर ये एक्शन इट्स सच अ हार्मफुल, हर थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज में जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो इतनी पावरफुल थॉट यू नो गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर? हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे, वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, चार बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था। बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर, मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना वो नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट कर दी।
2: वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि
1: पॉइजन
2: है, पॉइजन है, और वो पॉइजन ही फिर निकलना चाहिए।
0: एंड वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ हो, इट हैज बीन हैपनिंग यू नो बहुत पेंट अप, वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो,
2: किसी और का गुस्सा,
0: किसी और बात से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान है, एंड योर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन इट, ये सिर्फ एक स्टिम्यूलस बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, बट आप वैसे ही बहुत परेशान हैं, और ये फिर आपको आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, यू नो व्हाट वी सेड कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है, एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था। दीज आर सिचुएशन, जब हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस, बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है, दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजोल्व करते जाए, कब कौन सा इशू आपके नेक्स्ट इशू पर
2: हावी हो जाए,
0: दैट इज वेयर बहुत बार आप देखो, अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी, अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके ना, बच्चे ही हैं, करते हैं, इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इशूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी, इट जस्ट कम्स आउट इन दिस। सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया, फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इश्यू को वहां नहीं रिजोल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहां आया। बहुत सारी मदर्स आज कहती है हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है, फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर, वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल अब्यूज, वो हाथ उठा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाए,

0: हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाई, उस पर निकाल दिया. दिस इज वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है. तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है. इट कुड बी जैसे फियर बताया, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन. यू नो, कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं, लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ. कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड. एंड मैं अंदर ही अंदर आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव, तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं, मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फोन सुनने के लिए बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ. कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रही होंगी सारा दिन. एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं. तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रही है, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं, फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा.
1: और एक अगर एग्जाम्पल है ना, तो हेट्रेट का है. हेट्रेट से वहां तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं.
0: सबसे पहले अपने आप को,
1: अपने आप को.
2: यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, टॉक्सिक बाद में ही आता होगा. तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज. अगर हम ये चेन देखते हैं सेवन तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी? चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है?
1: पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट,
2: नेगेटिव थॉट, बेस थॉट या नेगेटिव थॉट.
1: पहले नेगेटिव,
2: नेगेटिव
1: थॉट. वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा.
0: कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं. वो परिस्थितियां एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना, परिस्थिति स्टिम्यूलस है. तो वो परिस्थितियां ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है, एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है. और फिर सडनली मैं थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी. लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स. और फिर घर गए, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमीडिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ, समटाइम्स टॉक्सिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव क्रिएट करते करते मन की कितनी सारी ताकत खत्म हो जाती है. एंड देन अ लिटिल बिगर सिचुएशन एंड आई विल रिएक्ट इन अ बिगर वे. तो वो रिजेंटमेंट, हेट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, एंड देन नॉट नेसेसरी कि आपके प्रति है तो आपके साथ ही वो हमेशा होगी. आपके साथ मैंने नेगेटिव क्रिएट करते करते करते अपने आप को इतना डिप्लीट कर दिया कि फिर इन्होंने अगर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया, आई कैन जस्ट क्रिएट दोज टॉक्सिक थॉट्स. सो इट इज अ कंटिन्यूअस चेकिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट इन एवरी सिचुएशन विद एवरी पर्सन इन एवरी इंटरेक्शन. दैट्स वाई वी सेट कॉन्स्टेंट अवेयरनेस हमें रखनी होगी, क्योंकि बीमारी धीरे धीरे धीरे कब सडनली ज्यादा हो गई पता नहीं चलेगा.
1: और इतने और एक बात जब आपने पूछा तो तब मुझे याद आया कि बहुत सारे केसेस में जिनमें इस प्रकार के बहुत टॉक्सिक थॉट्स हैं, इसका रूट तो जो है वो चाइल्डहुड में होता है. कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ और कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया, तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है, और वो ब्लॉक फिर सदा के लिए डिस्टर्ब करता है, जिसको थॉट डिसऑर्डर भी कहेंगे. इवन सिज़ोफ्रेनिया के जो केसेस है, कईयों में मैंने देखा है कि पता भी नहीं चलता है. घर में तो ये समझते हैं कि इसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति चीट रहा है, परंतु वास्तव में उसमें वो सिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक इमोशंस क्रिएट कर रहा है. और वो रिजॉल्व करे तो टोटल रिजॉल्व हो जाएगा.
0: कईयों के साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए, जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते, तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया. अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा, तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरेक्शन में कैसे होंगे. एवरी इंटरेक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशियस.
1: इवन वन रिलेशनशिप, जैसे किसी में मदर से, जैसे डॉटर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर और भी ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर. या जेंट्स से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है.
2: अच्छा, ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफी दिख जाते हैं. यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी

0: रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक के बाद आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही क्या नेगेटिव है?
1: वो तो एक पहलू है कि दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि भी कुछ हुआ आपको, जैसे अब कहीं जा रहे हैं, भी ठंडी में गए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव है।
0: मतलब ये एंग्जाइटी थोड़ी सी,
1: एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, आपको विचार आया भी एग्जाम में गए कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थॉट है, डाउट, डाउट का एलिमेंट है भले।
0: पर ये तो मतलब अब ये तो हमें रोज रहता है,
1: नहीं तो यही करना है,
0: तो हम तो
1: सारा मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग योर थॉट,
0: बट डॉक्टर पटेल दीज आर द थॉट्स विच वी नेवर थॉट दे आर लाइक दे आर नॉर्मल थॉट्स,
1: दीज आर द स्किल्स
0: कि जो मतलब अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ, मतलब एग्जाम मुश्किल भी आ सकता है, पेपर मुश्किल आ गया तो फेल नहीं तो कम मार्क्स आ सकते हैं, सो दीज आर द डाउट्स विच एक्चुअली आर सो नॉर्मल।
2: अब इसीलिए तो ज्यादातर अगर हम देखें तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं आजकल सारा दिन,
0: मतलब ये तो ये एक डाउट भी अगर नेगेटिव थॉट में आता है तो फिर तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स,
1: इसीलिए नेगेटिव बहुत सारे हैं और हमें सोचना चाहिए कि एक भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि हम थॉट्स को चूज करते हैं, जब
0: हाँ,
1: हम चूज कर रहे हैं
0: कैसे नहीं आएगा, दिस इज समथिंग विच वी हैव लिव्ड विद इट ऑल आवर लाइफ,
1: नो इट इज वन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि भी हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं, तो मुझे सही को चूज करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, तो इससे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में, चलो एक बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं और पांच बार पॉजिटिव करूं तो एक जो नेगेटिव हुआ उसकी इफेक्ट कम हो जाए।
0: अच्छा, तो नेगेटिव में एक रहा डाउट, और क्या क्या नेगेटिव में शामिल? आई थिंक समवेयर हम अवेयर नहीं है,
1: दिस थिंग्स आर उसके पीछे का जो रीजन कहे, अगर नेगेटिव को हमें सोचना हो तो फेलियर के विचार, बीमारी के विचार ना, ये सब नेगेटिव है, लॉस के विचार,
2: इवन इरिटेट होना थोड़ा थोड़ा,
1: हाँ,
2: इरिटेट होना, ट्रैफिक में खड़े हैं इरिटेट हो रहे हैं, कोई गलत तरह से चला रहा है इरिटेट हो रहे हैं, कोई मेरी तरह काम नहीं कर रहा इरिटेट हो रहे हैं,
1: हो रहा है,
2: कोई मेरा कहना नहीं मानता इरिटेट हो रहे हैं, ये भी तो नेगेटिव थॉट्स है।
0: ये मतलब क्यों क्रिएट करते हैं फिर, बिकॉज दीज आर द थॉट्स आई थिंक हमें पता भी नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये थॉट्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन तो रहती ही है,
2: इतना हमने कहा इरिटेशन रहती है, आपने कहा डाउट रहता है, एंग्जायटी रहती है, तभी तो स्ट्रेस अनहैप्पीनेस एंगर हो गया ना, तभी हम कह रहे हैं हैप्पीनेस चाहिए, क्यों? क्योंकि कई चीजों को हम नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल
0: तो
2: कहते
0: रहे, इग्नोर करते जाए, मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम इरिटेट ना हो, हम अपना डिसएग्रीमेंट ना शो करें, हम मतलब फिर देन वही आ जाती है बात कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो एक्सेप्टिंग एवरीथिंग,
1: एक्सेप्ट फर्स्ट तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्किल है, नो टू एक्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव सोचना भी ये स्किल है और ये स्किल मुझे डेवलप करनी है, वैसे नहीं मसल्स को हम डेवलप करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो आप मसल्स को डेवलप करते हो, तो ऐसे इस स्किल को भी मुझे डेवलप करना है, और पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि एक नेगेटिव थॉट की कितनी इफेक्ट होती है, वो वातावरण में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा, वी विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन, तो इसलिए इस स्किल को हमें डेवलप करना है,
0: कोई भी
1: प्रैक्टिस करे तो मुश्किल नहीं है।
2: एक बात देखते हैं, आपने कहा ये नेचुरल है, सपोज कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो डिस्टर्ब होने से फायदा क्या होता है?
0: डिस्टर्ब जब हम होना शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद उसको भी समझ में आने लगती है और वो कुछ कुछ तो करता है,
2: बिना डिस्टर्ब हुए भी बता सकते हैं
0: तब उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे के साथ बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बच्चे को दिखा कि मेरे को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं ये बच्चा फटाफट बात मानना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी तो बात मानी ना उसने,
2: बच्चा बात तो मानता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव एनर्जी भी दी उस प्रोसेस में. सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल विद नेगेटिव एनर्जी. और फिर ये हम कभी कभी नहीं करते, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, पेशेंस तो मेरी वैसे ही कम हुई हुई है. तो अब मुझे पता है कि आपसे जब मैं प्यार से काम कुछ भी बोलूं तो आप नहीं करते, लेकिन मैंने ये देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे करके बात करूं ये तो जल्दी काम करते हैं. टाइम नहीं है, काम जल्दी कराना है, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया, शोर मचाओ हो गया. फिर सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किया, ऑफिस में भी करना शुरू कर दिया. फिर सिर्फ ऑफिस में भी नहीं किया, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के साथ करना शुरू कर दिया कि जब कोई मेरे अनुसार नहीं करता, शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा. काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया, मेरी हालत क्या होती जा रही है. दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है. और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है. सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज कर रहा है. सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज कर रही है, क्योंकि एवरीवन इज इन द सेम बोट, एवरीवन इज यूजिंग द सेम टेक्निक. कैन वी जस्ट लुक एट अ लिटिल चाइल्ड जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, यू नो, जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है. और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये चार पांच लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय,
0: इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं.
2: हम इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीच कर रहे हैं. हम सी ना, एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप पांच लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है, व्हाट इज द एनर्जी कमिंग, कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड. एंड देन वी आर सेइंग, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है. स्टॉप, क्यों हो गई ऐसी, वाई, क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली, वो पर्सनैलिटी कैसे बड़ी हो रही है. अब जब वो पर्सनालिटी
0: वरिड ही रहेगा,
2: वरिड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको पांचों लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी, पांचों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, पांचों में पेशेंस नहीं थी. बच्चे में पेशेंस आ जाएगी, कहां से आएगी, दिया आपने वो खाना खिलाया उसको, आपने वो खाना खिलाया नहीं, और कहते ताकत क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है. वही ताकत डेवलप होगी जो चारों तरफ से आ रही है. अब मैं प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकती, मैं टीचर को नहीं चेंज कर सकती, मैं कम से कम अपने आप को करूं. सिर्फ ये नहीं सोचे काम करवाना जल्दी कैसे हो जाए, मोर इम्पोर्टेंट इज जो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट मेरी स्थिति कैसी हो. लेट्स नॉट बी ओनली वर्क ओरिएंटेड, लेट्स बी फीलिंग ओरिएंटेड, देन वील टेक केयर ऑफ ईच अदर. इट्स वेरी
1: इम्पोर्टेंट. ना सटल बात है बहुत, अगर सुपरफिशियल भी देखो ना, शी इज 100% राइट है. डीप बात को आप समझ लो, अगर कोई इतनी डीप बात न भी समझे तो भी ये समझना चाहिए कि फियर वो टेम्पररी मोटिवेटिंग फैक्टर है. डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको. धीरे धीरे तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी. समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिलाओ उनको आनंद आएगा अंदर. दे विल लर्न दिस. एक बार दो 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी, एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए. तो माँ को गुस्सा आएगा तो मुझे बहुत मजा आता है, माँ को गुस्सा आता है तो बोले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ. नो, लेट अस मेक सम मिस्चीफ. वैसे अल्टीमेटली चिल्ड्रन लर्न दिस.
2: जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है. जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी, बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम
0: कि जो मैंने दिया वो
1: even maybe why I should care for them.
2: They actually, there are children who come and say, उन्होंने मुझे क्या दिया? And they are not in terms of physical, लेकिन इनसे मुझे क्या मिला? मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है. You know, we tell them, आपके parents रो रहे हैं, आपके parents इतने upset हैं. It's very sad, but they get a sadistic pleasure out of it. कि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था, आज मैं करूँगा ऐसे काम जिससे इनको दुख मिले.
0: कितना मैं भी कितना रोया था, कितना डरता था. Oh my God,
2: it really happens. We are meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that, you know, the cycle is getting more and more vicious. More and more both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility.
1: You know, many disturbed children are like this. And I think a school ka ek case mere paas hai. Wahan teachers ne kaha, teacher said ki bhai ye parents

0: फॉल्ट है पूरा। पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने।
1: आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये बिल्कुल नेचुरल है। आज चेक करने की जरूरत है। हमने 7 तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है, लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया था। लेट्स ट्राई टू रियलाइज, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी, फिर हमें रिश्तों में कहां से प्यार मिलेगा। लेकिन जहां हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीखकर न सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति का सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भीमा नायक का जन्म 1815 में हुआ था। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में भीमा का पालन पोषण हुआ था। भीमा नायक के बहनोई खाजा नायक ने लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में भील विप्लव का नेतृत्व किया था। खाजा नायक के अलावा भीमा पर तात्या टोपे का भी विशेष प्रभाव रहा था। भीमा को निमाड़ के जंगल और शस्त्रों का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करने में मदद की थी। तात्या टोपे ने भीमा को रक्त तिलक कर अपनी तलवार सौंपते हुए कहा था कि यदि वे मातृभूमि पर मनचाहा करने में सफल हुए तो भीमा के उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। भीमा के पास 1500 आदमियों की फौज थी, जिनके लिए हथियारों और रसद का प्रबंध राजा महाराजा साहूकार और सामंतों को लूट कर किया जाता था। भीमा ने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किया, गरीब उन्हें देवता की तरह पूजा करते थे। भीमा हमेशा ही अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे। भीमा को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की थी, यहां तक कि उन्होंने भीमा की मां और अंगरक्षक को भी जेल में डाल दिया था। भीमा अंग्रेजों के विरुद्ध 1864 तक छापामार युद्ध करते रहे। अंत में जब वे गिरफ्तार हुए तो उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। सन 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। भील समुदाय में भीमा का आज भी इतना मान है कि हर अवसर हर उत्सव पर उन्हें याद किया जाता है।

0: और छोटू साहब क्या हाल चाल है?
1: अरे यार छोटू चाय पिलवा दे यार।
2: आओ भैया।
0: अरे आज गजबी काका नहीं दिख रहे यार?
2: वो कहीं बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, इधर आओ बेटा छोटू, ये सीडी लो, ये हम काका के लिए लाए थे।
2: इस बार कौन सी सीडी है भैया, मैं देख सकता हूँ?
0: अरे हाँ हाँ छोटू, राजू को भी बुला ले, भीमा नायक की सीडी जारी की थी सरकार ने। अपना राजू भी तो निमाड़ का है ना, वो तो भीमा नायक का नाम भी जानता है।
3: मेरी बात कौन कर रहा था, मेरा नाम क्यों लिया गया भाई?
0: अरे राजू डियर, तुम्हारे गांव के पास का ही तो था ना भीमा नायक।
3: हाँ हाँ, तो क्या हुआ?
1: अरे वो काका के लिए भीमा नायक की सीडी लाए थे, वो छोटू लगा रहा है, जरा देख ले जाकर, लगा पाएगा कि नहीं वो।
3: हाँ देखता हूँ, आप लोगों के लिए क्या लगवाऊँ, चाय कॉफी पकौड़े?
1: आज पकौड़े तो जरूर खाएंगे यार, बहुत जोर से भूख लगी है,
0: गर्मी बढ़ रही है यार। चल अंदर बैठते हैं आराम से।
1: चलो चलो,
0: मैंने भी अभी तक सीडी सुनी नहीं अच्छे से। अरे छोटू जरा वॉल्यूम बढ़ा दिया।
4: बात तब की है जब 19वीं शताब्दी में भील विद्रोह ने जन्म लिया। शुरुआत 1817 में हुई। रणक्षेत्र था पश्चिम का घाट, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री। भील बहुल इलाका, खान देश। स्वतंत्रता प्रिय भीलों ने अंग्रेजों की अधीनता को सिरे से नकार दिया। भीलों का संघर्ष धीरे धीरे 1857 में परवान चढ़ा। उत्तर भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कुचल देने के बाद भी 1861 तक निमाड़ के भीलों ने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया। निमाड़ के इस लोक संघर्ष का नेतृत्व किया क्रांतिकारी भीमा नायक ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में निमाड़ को जगाने वाले इस योद्धा का जन्म लगभग 1815 में निमाड़ के सिलावट गांव के पास हुआ था। मात्र 10 वर्ष की आयु में इस वीर ने तीर, कमान, गोफन कला में महारत हासिल कर ली। पिता रामा ने हथियार बनाना सिखाया तो मां सुरसी बेटे की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रही। अंग्रेजों को चित्तौड़गढ़ के पूर्व सैनिक रामा का हथियार बनाना नागवार गुजरा और एक दिन वो लाव लश्कर के साथ रामा के गांव आ धमके।
5: Hey you, क्या नाम है तेरा?
6: रामा।
7: ये सब क्या है?
6: ये तीर, कमान, तलवार, भाला, बर्छी हमारा हथियार थी सरकार।
5: हथियार यहाँ की

0: रखा। जानता नहीं हथियार रखना सिर्फ हमारा राइट है।
1: सरकारी हथियार हमने रखे नहीं, इनका तो हम बनेगा, मतलब इन्हें बनाते हैं सरकार।
0: बनाता है? व्हाई, क्यों?
1: ये धंधो छे हमरो।
0: बिलो का औरत खत्म हो गया धंधा का लिए?
1: नहीं, बिलो ने कभी धंधा नहीं करवाया औरतों से। हथियार बेच कर सर उठा के गुजारा करते हैं।
0: ब्रिटिश राज में सर ऊंचा करने वाले काम सर उड़ा देगा।
1: राजपूतों की टोली का सिपाही सिर कटने से नहीं डरता सरकार। सिर कटने से नहीं डरत रे।
0: इतना हिम्मत खत्म कर दो इसे।
2: अरे बच्ची मारो मारे परत को। अरे इसे तो बिगाड़ा है। अरे बच्ची मारो ने।
0: खत्म करो। Take away all the things. Achia, take away all.
1: ये हमारी रोजी रोटी छे। इनका मत ले जाओ। इनका मत ले जाओ सरकार।
0: Shut up. Yell it.
2: अरे मत ही मारो रे फोन। मत ही मारो।
0: अब नहीं होतेगा। He will not get it now. Let's go. Move.
2: बापू काई तो बोलो। बीमा के बापू, अरे कोई है? कोई है? सुनो रे, जबान बंद हुई गई इनकी। बीमा के बापू, अरे बीमा के बापू, कुछ तो बोलो।
3: माँ, ये सब किसने किया? माँ बता तो सही, किसने किया ये सब?
2: फिरंगी सिपाही ने, उस बोर्ड ने। क्यों रे बीमा?
3: तू चिंता मत ही करे, हुआ योनी। उस बूंद को देख के ही मेरा माता ठनका था। माँ,
2: वो बूंद ने बहुत मारे हो बेटा,
3: पर काई बात थे?
2: अपना तीर कमान सब ले उड़िया वे।
3: क्यों?
2: बोलो, अंग्रेजी राज में तीर कमान औजार हम नहीं बना सके।
3: क्यों नहीं बना सके?
2: सारे बाबूजी के बंदूक के कुंदा से मारी मारी के बेहाल कर दिया रे वो बोर्ड ने।
3: फिकर मत ही करो माँ, मैं सबको देख लूंगा।
2: अब काई करा भी माँ?
3: माँ, तू तो जड़ी बूटी जानती है।
2: हाँ बेटा।
3: पहले बाबूजी की दवा कर, मैं इन फिरंगियों को बताऊंगा।
2: पर बेटा।
3: माँ, तू दवा ला पहले।
2: आओ बेटा।
3: तुम्हारी आन है बाबूजी, हवा बावड़ी में अंग्रेजों के हाथ पैर तोड़ दूंगा।
2: ले मिल गई दवा।
3: तू जल्दी से दवा पिला, मैं अभी आया।
2: अरे भीमा सुन तो, अभी झगड़ा मत करे। अरे भीमा सुन, चलो गयो, ये लो दवा पी लो।
1: अब नहीं बचूंगा सुरसी, अब नहीं बचूंगा हूँ। तू संभाल जे अपना भीमक।
2: किसी आप सगुनी बात कर आओ।
1: लोहा का कुंदा मारी आतड़ी नमक घुसी गया। अब मुश्किल छे सुरसी, मारो बचाओ। अब मारो बचाओ बहुत मुश्किल छे सुरसी।
2: भीमा को खून खोल गया है, अब नहीं छोड़ेगा वह गोरी चमड़ी वाले को।
0: ओह नो, जाना बावरी से ये सिलावट का रास्ता कितना डर्टी है।
4: Can't understand. How do they survive? ये भी लोग।
0: मिट्टी का लोग, मिट्टी में रहता, मिट्टी में जीता। डर्टी इंडियंस।
3: मेरी मिट्टी को गाली देता है, ये ले।
0: ओह नो, कौन जंगली है?
4: ओह गॉड, ओह गॉड, हेल्प, हेल्प, ही इज हिटिंग अस।
3: ये ले, तू भी ले।
0: ओह गॉड, हेल्प, हेल्प, समबडी हेल्प।
4: ओह नो, ओह नो, समबडी हेल्प, हेल्प।
3: मिट्टी का लेप लगा ले, कौन ठीक हो जाएगा।

0: कौन है झाड़ी में?
1: सामने आ।
2: धरती का बेटा।
0: धरती का बेटा?
1: दौलत सिंह नाम है मेरा, मालवा राज्य में सिपाही था।
0: फिर यहाँ कैसे?
1: फिरंगियों की फौज से भागा हूँ।
0: क्यों?
1: नहीं करने इन कपटियों की चाकरी, मेरे पीछे इनाम भी है।
0: तो फिकर मत ही करे, मेरे यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता थारे को। अच्छा किया जो चाकरी छोड़ दी।
1: नफरत करते हो अंग्रेजों से?
0: मेरा बस चले तो अभी चीर कर रख दूं।
1: अकेले?
0: हाँ अकेले।
1: अकेले नहीं दोस्त,
0: भीमा नाम है मेरा।
1: इतना आसान नहीं है भीमा अंग्रेजों से लड़ना।
0: तो क्या लड़ना छोड़ दे?
1: नहीं, तुम लड़ो भीमा, लेकिन पहले एक टोली बनाओ।
0: यानी साथियों का दल?
1: हाँ, अपने जैसे साथियों का भीमा। तुम तीर कमान तलवारबाजी सिखाओ और मैं बंदूक से निशाना लगाना सिखाऊंगा।
0: ये सही कहा दौलत सिंह, आज से ही काम शुरू करेंगे।
1: पर हम सिखाएंगे कहाँ?
0: वो ढावा बावड़ी के दक्षिण में ऊंची पहाड़ी पे।
1: अच्छा,
0: लो बातों बातों में घर आ गया, पता ही नहीं चला।
3: भीमा ने दौलत सिंह के साथ 1837 में व्यवस्थित सैनिक टुकड़ी बनाई और प्रशिक्षण शुरू किया। मात्र एक वर्ष में 500 साथी प्रशिक्षित हो गए। ढावा बावड़ी में भीमा ने गढ़ी का निर्माण करवाया। गढ़ी में भीमा के भील, भिलाला, मकरानी, अरब सैनिक सुरक्षित रह सकते थे। गढ़ी के तहखाने में धन और हथियार रखे जाते थे। एक दिन भीमा और उसका साथी दौलत सिंह पास के गांव से लौट रहे थे।
0: भीमा, हम पर हमला हो गया है। तू भाग।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: भीमा निकल, मैं घेरा तोड़ लूंगा।
5: पकड़ लिया दौलत सिंह, कहाँ जाएगा? हमारा फौज छोड़कर भील डाकू के साथ मिल गया।
1: वो डाकू नहीं है, भीमा नायक है। भीमा नायक गरीबों का साथी और फिरंगियों का काल।
5: और ठहरा
1: मेरा दोस्त
6: अब नहीं रहेगा, खत्म कर दो इसे।
3: दौलत सिंह की मृत्यु से भीमा को गहरा सदमा लगा। उसने खुद को 6 महीने तक गढ़ी में कैद कर लिया। मां सुरसी चिंतित हुई।
7: भीमा कुछ कर, इनकी मिट्टी की हांडी में राबड़ी कब पकेगी बेटा?
0: अकाल से विपदा आ गई है माँ।
7: जरा दया नहीं है इन बूंद के, खाने को दानों नहीं है, लगान कहाँ से देंगे?
0: अब इनसे दो दो हाथ करना पड़ेगा।
7: अभी तो तू जा बेटा, इनके रोटी पानी का इंतजाम कर। यहाँ से 50 कोस पे अनाज छुपा के रखो साहूकारों ने।
0: मैं लेके आता हूँ माँ।
7: जा बेटा जा, इनकी भूख मिटा।
3: अकाल की घड़ी में अंग्रेजों ने हिंसा, लूटपाट, फांसी और घुसखोरी का तांडव रचा। भीमा की सेना सशक्त हो गई थी। भीमा ने सूदखोर बनियों, सामंत, साहूकारों, सरकारी खजानों को लूटा और लूट का माल गरीबों में बांट दिया। अंजल की कुलदेवी नागरी माता के सामने भीमा ने अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की कसम ली और अभियान में जुट गया। लोगों को पानी के लिए 3 बावड़ियां बनवाई, सुरक्षा के लिए गढ़ी तोपखाने का निर्माण किया। मां सुरसी ने 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। भीमा की ऊष्मा, भीमा के तेवर, भीमा की संगठन क्षमता से गांव के गांव साथ हो लिए और फिर भीमा ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का खुला ऐलान किया। 1 जुलाई 1857 को इंदौर के क्रांतिकारियों ने इंदौर रेजिडेंसी पर आग बरसाई। 2 जुलाई को महू में भी क्रांति का झंडा फहराया गया। गुजरात से आई ब्रिटिश फौज बड़वानी के क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई। तब क्रांतिकारी सेंधवा क्षेत्र की ओर बढ़ गए। खानदेश के मजिस्ट्रेट ने सेंधवा के व्यापारियों से उनका धन ब्रिटिश संरक्षण में डलवाया। व्यापार

0: भीमा के साथ थे, उन्होंने धन का कुछ भाग ही कोष में जमा किया। सैनिक 7 लाख रुपए के कोष को गोपनीय तरीके से सेंधवा से सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तभी भीमा और उनके साथियों ने हमला किया।
1: कैप्टन, मेरे फोर्ट फाटे को मेरे साथियों ने घेर लिया है।
2: यह गुजरात का ब्रिटिश फोर्ट है, समझा?
1: तभी तो घेरे में आ गई है।
2: व्हाट?
1: पैसा हमारे हवाले करो।
3: ये सरकारी पैसा है।
1: सरकारी नहीं, ये हमारा पैसा है। सीधे सीधे दे दे, वरना मार काट करनी पड़ेगी।
3: जुर्म कैप्टन को लूटने की धमकी देता है।
4: लूटने की नहीं, अपना पैसा वापस लेने की।
5: आम तुमको काटुम कर देंगे।
1: हाथ लगा के तो देख,
4: ये लोगों के खून पसीने की कमाई है। तुम अंग्रेजों को नहीं डकारने दूंगा।
1: साथियों, हमला करो।
3: हमको हाथ नहीं लगाना।
1: सब कब्जे में ले लो, सारा पैसा समेट लो।
0: इधर भीमा ने पैसा लूटकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उधर बड़वानी के राजा राणा जसवंत सिंह ने भीमा से मुलाकात की और गुप्त समर्थन देने का आश्वासन दिया। समझौते के तहत तय हुआ कि राणा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, बदले में राणा भीमा को धन भी देगा। भीमा क्रांति की मशाल थामे निमाड़ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, तभी 3 नवंबर 1858 में क्रांति के महान नेता तात्या टोपे निमाड़ आए। क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हुए। तात्या टोपे को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने सिपाहियों का दल भेजा। भीलों ने खुली बगावत की। भीमा नायक के अलावा रेवलिया नायक, खाजिया नायक, खोजेब सिंह, कालू बाबा का सेंधवा घाट से महाराष्ट्र तक दबदबा था। क्रांति सूत्र तात्या टोपे और भीमा नायक की मुलाकात हुई।
6: हमारा भाग्य है कि इतने बड़े क्रांतिकारी से हमारी भेंट हुई।
5: भीमा, तुम्हारे क्रांति कार्य और संगठन क्षमता से हम प्रभावित हुए।
6: हमें इन अंग्रेजों से अपनी धरती वापस लेनी है। बस
5: हम अपने 200 साथी यहीं छोड़े जा रहे हैं। ये सब युद्ध कला में निपुण हैं और तुम्हारे काम आएंगे।
6: निमाड़ की क्रांति में ये आपका सहयोग होगा।
5: आज हम अपने अंगूठे के रक्त से तुम्हारा तिलक करते हैं। तुम्हारी विजय हो भीमा।
6: फिरंगियों को खदेड़ दूंगा।
5: हमें नदी पार करना है भीमा।
6: नर्मदा को पैदल पार करना मुश्किल है। हमने 7 नावों का इंतजाम करवा दिया है।
5: अगर हम इस अभियान में सफल हुए तो इस उपकार का बदला जरूर चुकाएंगे।
6: मेरे माथे पर आपके खून के तिलक ने सब कुछ दे दिया है तात्या टोपे साहब। मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ गई है।
0: ये वो समय था जब अंग्रेजों ने देश भर में क्रांति को लगभग दबा दिया था। अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो गए थे, तब भीमा की मानसिक और सैनिक शक्ति चरम पर थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के तूफान में यहां अंग्रेजों के उखड़े पैर जम नहीं सके। कैप्टन आर एच केटिंग तिलमिला गया। उसने कर्नल वारे से सहायता ली। 4 फरवरी 1859 को केटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज टुकड़ी ने धोली बावड़ी को घेर लिया।
6: अचानक हमला?
1: ए, अपने तीर कमान उठाओ।
7: छोड़ना मत इन बोर्डों को, जिनने हमारी धरती छुड़ाई, घर छुड़ाए।
1: नहीं छोड़ूंगा माँ।
7: ये बापू को मजदूर के कुर्ता से तड़पा तड़पा के मारे रे।

0: यहाँ पर?
1: अरे भीमा भैया आओ आओ बैठो।
0: सादिया सादिया मेरे पीछे पुलिस लगी।
1: क्या? नहीं तू फिक्र मत करो, भीमा भैया मैं हूँ ना, बैठ जा।
0: यहाँ घड़ी में तू हमारी मदद करेगा?
1: अरे नहीं भैया, तूने और मोटली माँ ने अपना जन्म लगा दिया हमारे वास्ते।
0: मोटली माँ?
1: खबर लगी मोटली माँ की?
0: नहीं छोड़ूंगा, अंग्रेजों मका कसम छे नागरी माता की, अंग्रेज कुर्सों मिटा दूंगा।
1: शांत हो जा भीमा भैया, शांत हो जा।
0: शांत होने की बात करे, बोन ने गांव के गांव जला दिया।
1: तेरे साथी तो पकड़ा गया, अब तू
0: साथी पकड़े ही गया तो काय हुई हो? फिर इकट्ठा कर लूंगा।
1: यानी कि तू फिर दल बनाए?
0: हाँ सादिया, फिर हमारी फौज खड़ी होगी और हम इन अंग्रेजों से बदला लेंगे। नागरी माता का आशीर्वाद छे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगो।
1: अच्छा अच्छा भीमा भैया तू तो आराम कर, मैं अभी आता हूँ।

0: ये शोर
1: टीम अभी तुम गिर चुका है।
2: सरकार सादिया इस आपसे कलंक लगा दी हो तूने। हाँ सही लगाना।
3: चल हमारा साथ वोट लूटा वोट लूट पर मचाया डाकू बीमा हम तुमको काला पानी में मारेगा सर फाके।
0: मारने के सिवा कर ही क्या सकते हो कंपनियों? क्या धरती के वीर को सामने से पकड़ने की हिम्मत है तुम में?
3: तुम खत्म हो गया बीमा। मरने को तैयार हो जाओ।
0: बीमा को मारोगे मार डालो पर बीमा की आत्मा निमाड़ में है वो तो यही रहेगी अपनी धरती में। जब तक ये धरती हमारी नहीं हो जाती भीमा को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं कोई नहीं।
4: अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचारों से मुक्ति के लिए संकल्पित भीमा को भले ही छलबल से पकड़ लिया गया पर निमाण की आत्मा में रचा बसा भीमा शहादत के बाद भी कहीं नहीं गया। वो निमाण के लोकगीतों में मिथकों में परंपराओं में आज भी जिंदा है और लोगों को प्रेरित करता है।
5: अरे अब निकलना पड़ेगा घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी बहुत देर भी हो गई है। अरे चल चल यार जल्दी उठ जल्दी चल।
6: हाँ चल चल मैं आता हूँ। हम लोग निकल रहे हैं छोटू ये सीधी याद से काका को दे देना।
5: हाँ भैया।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी?

0: मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

एक बहुत प्यारा इंसान दलप महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

0: Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you.
0: हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक वे ऑफ लाइफ बना लें से कैसे, मतलब जैसे मूवी देखते हैं तो डिटैच होकर, या क्रिकेट मैच देखते हैं तो डिटैच होकर, इसी तरह मतलब दुनिया की परिस्थितियों को और लोगों की बातों को, उसको हम डिटैच होकर कैसे देखें। जब मैं डिटैच होने जाता हूं तो मैं मतलब केयरलेस एटीट्यूड है, मरने दो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या।
1: डिटैच होकर देखना मतलब परिस्थिति की जो क्वालिटी है या जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी ना बन जाए। सपोज इट्स अ सिंपल थिंग लाइक आई सी टू पीपल फाइटिंग।
0: सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी ने मुझे कह दिया या कोई कुछ गलत कर रहा है।
1: इससे भी पहले नहीं, इससे पहले एक स्टेज पहले जाते हैं, किसी ने मुझे कुछ कहा वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, वो सेकंड स्टेज में लेते हैं। सपोज हम सिर्फ दो लोगों को ही लड़ते हुए देख लें,
0: ठीक,
1: या जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी ने किसी पर अत्याचार किया वो देखकर हमें तकलीफ हो रही है, राइट, कोई किसी और पर अत्याचार कर रहा है, तो वो सिचुएशन की एनर्जी या उन दो लोगों की एनर्जी जो सीन में है, वो बात में है, वो नेगेटिव है, लेकिन वो परिस्थिति की एनर्जी मेरी एनर्जी बन जाती है, मेरी थिंकिंग बन जाती है, तब मैं डिटैच नहीं हुई उस परिस्थिति से, मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गई। अभी वो परिस्थिति मेरे से कनेक्टेड नहीं थी, इट वॉज जस्ट आउटसाइड। और जैसे कोई कहेगा जब मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दर्द है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो ये क्या हुआ, अभी मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ दुनिया में दर्द है। अब इसको हम कह देंगे ओ पर ये तो कंपैशन है ना, ये कंपैशन नहीं है, इसमें क्या हुआ, दर्द तो है लेकिन दर्द में हमने भी दर्द क्रिएट कर लिया, तो वी आर एडिंग पेन टू पेन। कंपैशन होता कि दर्द है तो आप उस दर्द के लिए क्या कर सकते हैं वो करिए।
0: अगर हम भी दर्द में वो भी दर्द में तो दोनों बीमार,
1: yes,
0: कौन किसको रास्ता दिखाएगा।
1: एग्जैक्टली, तो दुनिया में दर्द है इज अ सिचुएशन, व्हाई वाइब्रेशन फैल जाती है, क्योंकि हम सब वही वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं जो सिचुएशन की वाइब्रेशन है। सो अगर यस, दुनिया में हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, हमें पॉवर्टी दिखाई दे रही है, हमें बीमारी दिखाई दे रही है, हमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा है, वो सब देखते हुए सिचुएशन की एनर्जी मेरी एनर्जी नहीं बननी चाहिए, दिस इज डिटैचमेंट। एंड जहां ये डिटैचमेंट होगी वहां कंपैशन आएगी।
0: इनडिफरेंस और डिटैचमेंट,
1: इनडिफरेंस जब होगा तो मतलब मैं अंदर, मुझ पर इफेक्ट आता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं तो मैं अलग हो जाता हूं आपसे, आई एम सेपरेट, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। लेट्स टेक इट एज अ सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आपको चोट लगी फिजिकली, यहाँ पर आप हैं, आपको चोट लगी, एक है आपको दर्द में देखकर मैं भी दुखी हो गई, तो ये हुआ परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव। दूसरी स्थिति जो आपने कहा इनडिफरेंस, आपको चोट लगी तो लगी, मैं क्या करूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इनडिफरेंस। लेकिन कंपैशन, डिटैचमेंट, आपको चोट लगी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन आपको चोट लगी और बोलने में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर दुखी दर्द, तो मैंने भी दर्द क्रिएट किया, आप भी दर्द में थे। जो हम फिजिकल करेंगे वो तो वही होगा कि हीलिंग करेंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन दर्द में रह कर देंगे तो हमने भी वही वाइब्रेशन क्रिएट की। तो डिटैचमेंट मीन्स सिचुएशन की वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन न बने, आई चूज माई वाइब्रेशन कि यहाँ दुख है बट आई एम रिमेनिंग स्ट्रांग, यहाँ हेट्रेड है, एंगर है बट आई एम रिमेनिंग पीसफुल। तो ये डिटैचमेंट होने से मेरी स्थिति फिर परिस्थिति पर प्रभाव डालेगी। अगर हमारे सामने किसी का मूड ठीक नहीं है और हम ठीक रह गए तो हम धीरे धीरे उनका मूड ठीक कर देंगे, मेरी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर। लेकिन अगर हम परिस्थिति में फंस गए तो उनके साथ हमारा भी मूड खराब हो गया, तो परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर, ये डिटैचमेंट है। तो ये हमें सारा दिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो आपने कहा कि हमें इसको लाइफस्टाइल में डालना है, इन्फॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय

0: पर ये पूरा हुआ 7:30-8 बजे। उसके बाद पूरा दिन बाहर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग। लेकिन फाउंडेशन सुबह वो लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन की सेट कर दी। कहां तो उस समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और कहां उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हैं। परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज वो सुबह सुबह भर लिया तो इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट चेंज हो जाती है। थॉट चेंज हुई, धीरे धीरे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दी है। अगर हम सब आज इतने दिन से ये सुनने के बाद अगर ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो लेट्स डू दिस वन थिंग कि सुबह के समय न्यूज तो आउट, लेकिन नाउ समथिंग एल्स। गलत भोजन नहीं खाएंगे, पर सही भोजन तो खाएंगे ना। फिर कोई भी चीज चूज करें, व्हाट एवर यू लाइक, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा कैसेट, एनीथिंग वी हैव टू चूज। कोई सत्संग, कोई प्रवचन,
1: कुछ पेजेस में आता है ना स्पिरिचुअल।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन वो कब पढ़ते हैं हम? हमारा फर्स्ट फोकस तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसी पे चला जाता है। तो फर्स्ट सुबह वो पढ़ लें, एक महीने के लिए इसको कर लें सिर्फ। सी द डिफरेंस, सी हाउ वो थॉट्स विल बी अ पार्ट ऑफ यू थ्रू आउट द डे। एक सिंपल चेकिंग है, अगर आज हमारे घर हमारा बच्चा शाम को टाइम पर नहीं पहुंचता है स्कूल से या कॉलेज से, और फोन भी नॉट रीचेबल है, हमें 2 घंटा सब जगह ट्राई कर लिया, वो कहाँ है कहाँ है सबको पूछ लिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आने शुरू होते हैं?
1: नेगेटिव।
0: क्या आएगा? व्हाट विल वी थिंक?
1: पता नहीं क्या हो गया होगा।
0: हाँ।
1: कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है।
0: क्यों ऐसी थॉट आई? क्योंकि यही क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हम सारा दिन देख रहे हैं ना। एक्सीडेंट होते हैं आजकल, बॉम्ब अटैक भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं आज, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी है। तो जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आई, वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होगी, वो थॉट आएगी। अब इसकी जगह अगर हम एक महीने से कोई बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं अपने अंदर, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हर चीज जो हो रही है एक्यूरेट है,
1: कल्याणकारी
0: है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा फल अच्छा ही मुझे मिलने वाला है, सब कुछ सही सही, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेट। अब देखो अगर रात को ऐसी परिस्थिति आई तो क्या होगा? वो थॉट ही नहीं आएगी। ये नहीं कि वो आएगी और उसको चेंज करना, वो थॉट ही नहीं क्रिएट होगी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। यही थॉट आएगी, आप अपनी फैमिली को बोलेंगे डोंट वरी, सब ठीक है, आ जाएगा, लेट्स वेट। वेटिंग पीरियड ही तो क्रिटिकल है, वो वेटिंग पीरियड ही क्रिटिकल है जो परिस्थिति में, इन्फॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर थॉट्स के ऊपर, अगर आपको थॉट्स को चेंज करना है। जो सेकंड फैक्टर है थॉट्स के ऊपर, वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस।
1: कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन is the last impression.
0: Not true.
1: हाँ, it is not true.
0: If we want to make it like that.
1: 20 साल पहले जो सुरेश ओबेरॉय से मिला हो और आज मिले, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन देखते ही वो याद आता ना, अरे ये तो वही बंदा है जो मुझसे झगड़ा किया था, तो वही बंदा है जो बड़े अकड़ के बात करता था।
0: एंड रियालिटी इज हर एक चेंज हो रहा है।
1: मैं जब तक चेंज नहीं हो रहा हूँ सिस्टर, मुझे ये एहसास नहीं होता कि दूसरा भी हो रहा है,
0: चेंज हो रहा है। हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती है, प्रैक्टिस, ये भी अटेंशन, कि बीती हुई बात को चित पर ना रखे, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। एंड ये एक अभ्यास करें कि अगर हम किसी के प्रति, जैसे ऐसे है कि कुछ पकड़ कर रखा है, एक अभ्यास करें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले, Let's meet with a clean slate. Let's take a new impression. We don't know कि second impression जो अभी मिलेगा वो हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा, we don't know. अभी हमें नहीं मालूम कि हमारी second meeting कैसे होने वाली है, लेकिन एक practice कि हम अपनी second meeting को, अगर first meeting pleasant नहीं थी, तो अपनी second meeting को first meeting के impression से ना start करें।
1: किसी के घर में जाता हूँ sister, और मैं देखता हूँ कि इसका कुत्ता बड़ा खतरनाक है, सीधा ही अटैक करता है, तो क्या मैं सेकेंड टाइम भी जब जाऊंगा तो उससे डर के ही रहूंगा ना।
0: हाँ।
1: जैसे मैं सांप को देख लिया या इलेक्ट्रिसिटी की जगह हाथ लगा लिया, शॉक पड़ी,

0: Every time I can't change that impression. No?
1: The thing is, jo manushya atma hai, wo constantly change ho rahi hai. Jaise aapne apna kaha. Electricity jad cheez hai. Aap jitni baar bhi us par haath lagayenge, us jagah par, wo shock lagega is okay. Ye bhi ho sakta hai ki wo theek ho gaya, wo alag baat hai. Lekin phir bhi, lekin manushya atma, a human being, हर पल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू चेंज चेंज कुड बी दिस वे और दैट वे वी डोंट नो वी आर नॉट सेइंग क्योंकि अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वी डोंट नो दैट्स नॉट द पॉइंट
0: बीमारी बढ़ सकती है आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे
1: ईदर वेज वी डोंट नो इम्पोर्टेंट इज आज जो हम मिल रहे हैं और अगले महीने या अगले साल फिर मिलेंगे तब तक हम में बहुत चेंज आया है क्योंकि वी आर अ बंडल ऑफ थॉट्स हम जिनसे मिलते
0: आई हैव टू डिसएग्री अ लिटिल बिट हियर देखिए मैं अपनी बात करता हूँ जब मेरे भाई की डेथ हो गई मेरे हाथों में उनको देखा मैंने आखिरी सांस लेते हुए तो जो मैं सुरेश ओबेरॉय 85 से पहले था 80s में टोटली डिफरेंट मैन लोगों को दान देना लोगों से प्यार से बात करना दुनिया फिलोसॉफिकल क्या है पैसा क्या चीज है जेवर क्या है दुनिया क्या है लाइफ क्या है और लोग मेरा एटीट्यूड अलग था धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते साल छह महीने दो साल में वो सुरेश ओबेरॉय बैक टू व्हाट ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट मैं वैसे ही बन गया और खराब वही गुस्सा वही नेचर वही चिड़चिड़ापन तो मैं चेंज हुआ था टेम्परेरी हुआ था
1: चेंज हुए थे ना लेकिन
0: वो क्या था एक झटका लगा
1: नेवर माइंड
0: दो दिन के लिए हुआ
1: इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट इज फॉर मी व्हेन आई एम मीटिंग यू
0: हाँ तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इंसान जो आप कह रहे हैं शायद चेंज भी हो जाए तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ हुआ भी तो कितना हुआ दो दिन के लिए हुआ
1: अच्छा
0: जब आदमी डेथ जब हॉस्पिटल जाता है हाँ एक बार वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हो जाता है बाहर आके अजीब सके फिर वापस वही धंधे पे लग जाता है वापस
1: वो तो अगर हम एक फ्यूनरल पर भी जाते हैं
0: वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ
1: राइट तो चेंज हुए थोड़ा नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी फिर अच्छा सपोज मैं आपको 85 से पहले मिलती तो आप डिफरेंट थे ठीक है फिर आपके साथ ये इंसिडेंट
0: अच्छा हुआ
1: इसने आपको थोड़ा सा शेक कर दिया आप चेंज हो गए फिर अगर उसके दो साल बाद आपको मिला तो आपने कहा वो मेरा पुराना वाला वापस आ गया वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है वी आर नॉट हियर टू एनालाइज पीपल इम्पोर्टेंट है पीपल आर चेंजिंग सो व्हेन वी मीट देम लेट्स मीट देम क्लीन ताकि हमें वो सही तरह दिखाई दे अगर आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है पिछले दो तीन साल में बहुत मेहनत की अपने संस्कारों पर गुस्से पर मैं आपको पुराना जो जानती हूँ उसी दृष्टिकोण से अभी देखूं तो मुझे आपका नया चेंज दिखाई भी नहीं देगा
0: उसी दृष्टिकोण की बात सही है लेकिन आपकी मैं एक टीवी पे मैंने आपका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी लाइन बहुत सुंदर लगी मुझे कि मीट अ पर्सन एज इफ यू मीटिंग द पर्सन एज द फर्स्ट टाइम
1: दैट इज व्हाट
0: आई ट्राई किया कि पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ आठ बार दिन में मिलो तब हमेशा ही ये देखो कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ वो भी मुझसे नहीं हुआ
1: सी वी डोंट हैव टू डू दिस विद एवरीबॉडी
0: मुझे जो इम्प्रेशन है ना दूसरे का एक बार जो पड़ जाता है ना लाख कोशिश करो मुझे वो याद आता रहता है बात करता रहता हूँ वो याद आता रहता है
1: ये डैमेजिंग है हमारे लिए क्योंकि एक हम दूसरे को अगर वो चेंज हुआ है तो वो परसीव ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरा जब हम ये कहते हैं कि अपनी स्लेट को क्लीन कर लो मतलब अपने मन को क्लीन कर लो सपोज लास्ट टाइम मेरा आपका साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ कुछ अनप्लेजेंट बात हो गई या आपने गुस्सा कर दिया मुझे बुरा लगा ये सब हो गया मैंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया ये तो ऐसे ही है नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक अगेन एंड आपसे मिले और वो इम्प्रेशन के थ्रू मिले तो पहले मेरी स्थिति क्या है आपसे मिलने के पहले आप चेंज हुए या नहीं चेंज हुए इन मटेरियल सपोज आप चेंज ही नहीं हुए जैसे उस दिन थे बिल्कुल वैसे ही इस दिन है लेकिन मैं तो चेंज हो गई हूँ क्योंकि उस दिन मैं क्लीन मिली थी और आज मैं एक फिल्टर लगा के मिल रही हूँ ये फिल्टर क्या है ये फिल्टर है मेरी पिछली बार की मीटिंग से क्रिएट किया हुआ इम्प्रेशन अब ये मेरा फिल्टर है तो अब इस फिल्टर के थ्रू जो मीटिंग होगी आपके साथ वो मीटिंग की क्वालिटी बदल जाएगी ये ही आप चेंज हो या नहीं?

0: चेंज हो, लेकिन अगर मैं पास्ट को इरेज करके आपसे मिलूं, ठीक है उस दिन वो हुआ, अब मिलो आपसे फिर से क्लीन स्लेट के साथ, तो विल दैट मीटिंग नॉट बी अ बेटर मीटिंग फॉर मी?
1: हाँ, मैं चेंज हो जाऊं और
0: मैं चेंज मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है अपने को, सिर्फ जो पिछली बार की मीटिंग का इम्प्रेशन क्रिएट किया था आपके बारे में
1: उसको हटा के
0: ये ऐसे हैं, ये एक इम्प्रेशन है ना, एक
1: ये ऐसे हैं के बदले में उस दिन इनसे ऐसा हो गया, शायद ये ऐसे हैं या नहीं है मालूम नहीं है, कोई मजबूरी होगी होगी।
0: लेट्स हैव अ फ्रेश मीटिंग, लेट्स डू दिस एवरी टाइम। ये करने से सामने वाला नहीं हमें मालूम कि किस स्थिति में है अभी, लेकिन हम अपने को तो एक अच्छी स्थिति में मीटिंग के लिए लेकर आ रहे हैं ना। स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, ये इक्वेशन सारा दिन याद रखनी है।
1: स्थिति का
0: परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना है,
1: यानी कि मेरा इम्प्रेशन सिचुएशन पे पड़ जाए।
0: मैं सेकंड मीटिंग में अगर क्लीन करके आऊं चित्त को, तो मैंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, क्लीन कर लिया ना। प्री कंसीव्ड नोशन जिसको कहते हैं, प्री कंसीव्ड, उसको हटा दिया, फिल्टर हटाकर आपसे मिलने आओ, तो स्थिति को क्या कर दिया,
1: क्लीन कर दिया।
0: जैसी स्थिति होगी अब वैसी मीटिंग होगी।
1: अच्छा, जैसे मेरी स्थिति है मन की, वैसे मैं वाइब्रेशंस पे तो दूंगा,
0: वैसे ही मेरा व्यवहार, वैसे ही मेरी बोलचाल।
1: अच्छा,
0: अब मैं अगर क्लीन होकर आऊं, इट विल बी अ मोर ओपन मीटिंग। लेकिन अगर मैं वो फिल्टर लेकर आऊं कि ये गुस्से वाले हैं, सपोज इतना ही फिल्टर ले आऊं, ये गुस्से वाले हैं, अब अगर आपने एक वर्ड भी बोला ना ऐसा इधर से इधर, मेरा फिल्टर बोलेगा ये गुस्से वाले हैं, ये अभी गुस्सा करने वाले हैं, ये तो अभी ऐसे, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, मीटिंग बदल जाएगी। हर जो बात है वो हमें बेनिफिट करती है पहले। पीपल आर चेंजिंग, Even if they have not changed, let me not meet with the previous impression. क्योंकि previous impression carry करने से I have changed and not changed for the very good. रिश्ते में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे अब मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता।
1: अरे, मैं पढ़े लिखे लोगों से सुनाऊं, ये हैदराबाद के लोग ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये अमेरिकन तो कैसे, मतलब एक से हुआ झटका सारी दुनिया से।
0: बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, फिल्म एक्टर्स ऐसे होते हैं,
1: ये आपकी फिल्मी दुनिया वाले,
0: मीडिया के लोग ऐसे होते हैं, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर है। अब हम जैसे
1: कुमारी जैसे
0: ऐसे होते हैं, यस ऑफ कोर्स, ये फिल्टर्स हैं। तो फिल्टर लगाकर अगर किसी से मिलेंगे तो वी आर नॉट मीटिंग द पर्सन ओनली, एंड इसमें नुकसान हमारा ही होगा। एंड देखो, कई बार ये भी जनरलाइज्ड हो गया, लेकिन सपोज बिजनेस में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे नाउ आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। देयर आर सो मेनी पीपल हु राइट टू अस, नाउ आई कांट ट्रस्ट पीपल। क्यों? एक ने धोखा दिया ना, एक ने कुछ नुकसान किया, अच्छा दो ने किया, अच्छा नहीं तीन ने भी किया, कोई बात नहीं, उसको इतना परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं बना लेना है कि जिससे पास्ट का एक्सपीरियंस मेरे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा इतना ज्यादा।
1: ये कोइंसिडेंस हो सकता है
0: क्या चीज के, एक या दो या तीन ने किया?
1: हाँ, जैसे एक घर में जो गया उसका बिजनेस फेल हो गया, तीसरा गया, चार आदमी, लोग खरीदना ही बंद कर देते, बोले यार यहाँ जो जाते बर्बाद हो जाता है,
0: तीन के साथ बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, अब जो चौथा जाता है अगर वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर फिर जाता है और सबकॉन्शियस में उसकी वो इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है, तो वो रियलिटी चौथे के लिए भी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स, इसीलिए ये जो प्रेडिक्शंस है ना सारे,
1: थॉट्स
0: बिकम रियलिटी, डेस्टिनी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी कि इस मकान में जो बिजनेस करता है, जैसे नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में भी होता है, अगर आप इस जगह पर जाके मन्नत मांगेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भरी, वहां गए, मन्नत मांगी, इन्फॉर्मेशन थी कि जो यहाँ करेगा उसका काम पूरा हो जाएगा, थॉट क्रिएट होती है अब तो काम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इज वेरी वेरी हाई। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है इसको भी हमें क्या, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स पर

0: बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी धीरे धीरे रिजॉल्व करके आंसर करना, क्योंकि हमें क्या करना है, थॉट्स को चेंज करना है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर, जो तीन फैक्टर्स हैं, उन तीनों के साथ काम करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन हमने देखा कैसे काम करेंगे, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस। अब इन्फॉर्मेशन तो प्रेजेंट में है सो इट्स ईजी टू वर्क, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस तो वो है जो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब उसको धीरे धीरे, अगेन वेर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस, तो पास्ट का चिंतन नहीं करना।
1: और तीसरा?
0: तीसरा बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा बेसिक बिलीफ सिस्टम क्या है हर चीज के लिए जीवन में। और ये बिलीफ सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है तीनों में से भी। बिलीफ सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द थ्री ऑर्डर।
1: बिलीफ सिस्टम वहम है या वाकई बिलीफ?
0: ना ना ना, बिलीफ सिस्टम वहम नहीं है। बिलीफ सिस्टम मीन्स आपकी मान्यता, आपकी क्या बिलीफ है। कि जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा, जब आपने कहा ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ है, कन्विंस्ड कम्प्लीटली, ये मेरा बिलीफ है। अब बिलीफ मतलब जो कोर में होगा और इससे हर सोच निकलेगी। अगर मेरा बिलीफ है कि ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मुझ पर पड़ता है, अब सारा दिन में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो उस बिलीफ सिस्टम के थ्रू क्रिएट होंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, ये बिलीफ सिस्टम है। आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, ये बिलीफ सिस्टम है।
1: ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए,
0: परफेक्ट
1: चढ़ जाता है।
0: परफेक्ट, ये बिलीफ, मतलब इतने सारे बिलीफ सिस्टम है हमारे।
1: करनी भी है तो मुंह पे मत करो।
0: मोटिवेशन करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ता है, अगर लोगों का बेस्ट निकालना है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखना पड़ता है।
1: बिना टेंशन के आपका जो है टैलेंट बाहर नहीं आता,
0: बिलीफ सिस्टम है।
1: मेरा बिलीफ सिस्टम था कि बिना दो ड्रिंक पिए मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता, स्टेज शो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो दो तीन ड्रिंक पी के मैं खड़ा होता था कॉन्फिडेंस के लिए।
0: आज आप सारा दिन में इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं, क्या हुआ उस बिलीफ सिस्टम को? चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। हमारे पास सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत, मतलब अगर हम चेक करने बैठेंगे ना और एक लिस्ट बनाएंगे, एवरी डे वील फाइंड एटलीस्ट 20 to 30 बिलीफ सिस्टम्स जिनके थ्रू हम अपने जीवन को जी रहे हैं। टेंशन नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, ये तो होता ही है, ये सब बिलीफ सिस्टम है। अब रिस्की ये हो जाता है कि क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये डीप होता है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस में है। इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर थॉट क्रिएट होती है। हम अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम उनको भी वही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अब क्या करना है, चेक करना है कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है। इवन जो हमने देखा, मैं कौन, हु एम आई, तो हमने सोचा दिस इज मी, आई एम दिस बॉडी, नेम, फेम, प्रोफेशन, तो ये बिलीफ था, तो थॉट अलग होगी। एंड बिलीफ चेंज किया, आई एम अ सोल, थॉट चेंज हो जाएगी। खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, खुशी मेरी अपनी क्वालिटी है। शांति मुझे खोजनी नहीं है, शांति मेरी अपनी नेचर है। इफ आई बिलीव, अभी ये बिलीव है, अभी ये ट्रूथ नहीं बना है, बिलीफ है। आई एम अ बॉडी और आई एम अ सोल, दोनों बिलीफ्स है। बिलीफ, अब बिलीफ को लेना है, थॉट क्रिएट होती है उससे, फिर उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखना है। जो जो रिजल्ट कंफर्टेबल होगा, आपने कहा ये मेरा बिलीफ था कि दो ड्रिंक लेकर स्टेज पर परफॉर्म करना है, आज एक और बिलीफ क्रिएट किया है कि नहीं, कंप्लीटली उसके बिना। और आज तो क्या किया, मेडिटेशन करके आज का दिन शुरू करना है, मेडिटेशन 10 मिनट करके फिर ये प्रोग्राम की शूटिंग पर आना है। अब दो बिलीफ्स हैं, एक है अल्कोहल से काम अच्छा होगा, और आज एक है कि मेडिटेशन करके आई विल परफॉर्म बेटर और आई विल प्ले माय रोल बेटर। अब दोनों का कंफर्ट लेवल देखना है इन द रिजल्ट। काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा था जीवन के हर पहलू पे, और आज मेडिटेशन क्या ला रहा है, वो चेक करके अब दोनों में से कौन सा एक बिलीफ सिस्टम चूज करना है और उसको अपने जीवन की सत्यता बनाना है।
1: तो सिस्टर आज

0: करने के लिए. यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी. नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप. इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है. मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे. एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: मैं तो एक पागल

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वतंत्रता, लेखिका सुधा पुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, वेदांत, पंकज, उन्नति, आकाश, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
3: बस स्टॉप।
4: अरे भाई, तुम लोग कभी भी मस्ती करना नहीं छोड़ोगे?
5: कभी नहीं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
4: हाँ, क्या स्वतंत्रता के मूड में आए हो तुम सब?
6: क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से ही उस दिन का मूड सेट हो जाता है।
3: हाँ, और जानते हो जो तुमने कहा है वो सबसे पहले किसने कहा था?
7: हाँ, मैं जानता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने, पर स्वराज्य के लिए।
2: तो जरा बताओ तो सही, इनका आदर से क्या नाम लिया जाता है?
5: लोकमान्य।
4: बहुत जानकारी रखते हो तुम सब। ये हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
8: दीदी, कहते हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे।
4: हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इनका यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने आदर्श से लोकमान्य कहा जाता है।
9: मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्हें हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है।
8: पर दीदी, लोकमान्य का अर्थ क्या होगा?
4: पूरे संसार के लोगों द्वारा सम्मानित।
6: क्या वाकई ये लोगों को इतने अच्छे लगते थे?
4: जो भी व्यक्ति अपने देश की तरक्की के लिए काम करे वह सभी जगह सम्मानित होता है। सबसे पहले अपने देश को प्यार करोगे तभी तो संसार में किसी और को प्यार कर पाओगे।
3: समझ गए, वही प्रार्थना जो हम हमेशा स्कूल शुरू होने से पहले गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
4: मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। चलो एक बार गाते हैं। ये तुम्हारी विशेष प्रार्थना सभा में भी तो है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो।
7: हाँ, स्वतंत्रता दिवस की प्रार्थना सभा।

0: दीदी मुझे उस दिन एक स्पीच देनी है जिसमें किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ बताना है।
1: तो ठीक है ना, तुम लोकमान्य तिलक के विषय में कुछ लिख लो।
2: हाँ, इनसे अच्छा और कौन होगा, इन्होंने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए।
0: अच्छा बताओ ना दीदी, क्या क्या?
2: वे बाल विवाह के विरुद्ध थे, उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ की।
3: हाँ, वो इसलिए भी किया था ताकि लोगों तक स्वराज का संदेश पहुँचे, उस संदेश के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके।
2: बिल्कुल ठीक, भारतीय संस्कृति परंपरा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई।
4: दीदी हम चारों को मिलकर एक देशभक्ति गीत गाना, कौन सा गाए कि सब में देश के लिए गर्व की भावना जाग जाए?
2: सोचने दो। अरे सोचना क्या है, सारे जहाँ से अच्छा गाना तो गाओ।
5: हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो सब मिलकर गाते हैं।

0: आहा, कितना मजा आया गाने में इसे।
1: इसे किसने लिखा है?
0: सारे जहाँ से अच्छा या तराना है हिंदी, उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी थी।
2: वाह, क्या बात है।
3: आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में कितने प्यार से इसे हमारे देश भारत में गाया जाता है।
1: इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है।
0: इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। इस इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। एक मजेदार किस्सा मशहूर है।
4: क्या बताना।
0: उस समय इकबाल लाहौर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। इकबाल ने भाषण देने के बजाय यह गजल पूरी उमंग से गाकर सुनाई। यह गजल हिंदुस्तान की तारीख में लिखी गई है और अलग अलग संप्रदायों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। सितार वादक पंडित रवि शंकर ने इसे सुरबद्ध किया था। जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शर्मा ने इसे गीत की पहली पंक्ति कही।
2: चलो अब सब एक बार प्रार्थना सभा की तैयारी भी तो कर लो।
3: मुझे तो उस दिन बापू बन के जाना है और उनके कही हुई बातों को उनके ही स्टाइल में कहना है।
0: बापू के लिए तो कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी।
3: मेरे पास उनके कोट्स या कथनों की एक लिस्ट है। चलो सब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर ये कार्यक्रम भी हम एक साथ ही प्रस्तुत कर देंगे, अच्छा लगेगा।
1: पर बापू कौन बनेगा?
0: सब बन जाना, मैं तो कहती हूँ अच्छा हो कि सारा देश ही बन जाए, पहनावे में, सोच में, आचरण में।
1: हाँ तो प्रैक्टिस कौन करेगा?
3: ये देखो लिस्ट, चलो शुरू करते हैं।
1: विश्वास, विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है।
2: प्रयोजन में दृढ़ विश्वास, अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है।
3: शांति, शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है।
1: बदला, आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।
5: समय की बचत, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है।
6: प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर पड़ती हैं।
7: विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना, विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
0: बापू ने शत्रुओं की आदत पर क्या कमाल की बात कही है।
6: क्या?
0: पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
1: उनके वस्त्र कितने साधारण हुआ करते थे ना?
0: हाँ, और विचार ऊंचे, बल्कि चरित्र के बारे में उन्होंने कहा है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है।
2: आजकल प्रसन्न रहने के लिए कितनी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, पर खुशी पाने के लिए बापू की यह बात सबसे अच्छी लगती है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो।
0: चलो आज काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ सोच लिया है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के लिए अब जरा सब खड़े होकर अच्छी तरह से राष्ट्रगान तो गाओ।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फरमान इश्क है यानी हदीस इश्क है कुरान इश्क है गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है इश्क मूसा इश्क को है तूर है काक को बुत और बुत को देवता का

0: उसने कसाया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: वाह वाह मेरे शागिर्द, थैंक यू।

Radhika na chere sa sa sa ni da ba ma ba da ba.

दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठीक और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं। मगर मगर

जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो टाले हो टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा।

नया नया ये आशिकी का राज है मेरा काली हो काली हो काली हो। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबाटा।

दान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ

इंद्र आरती को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।

दौलत के सब बन्दे हैं, मनमानी करते हैं जालिम आंखें रख कर अंधे हैं। मनमानी करते हैं जालिम आंखें रख कर

जो वो होगा होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो आने वाला आएगा चलने वाला जाएगा तुम ना